0: वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य

मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आज रविवार है। शक संबत 1948 के वैशाख मास की 20वीं तिथि तदनुसार 10 मई सन 2026 इस समय प्रातः के 5:59 हो रहे हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

मीडियम वेव और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। समाचार अब हम कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं।

0: गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, 6 बजने वाले हैं, कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडीबेल्लूर से महबूब नगर तक 4 लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आरएन रवि ने कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और 5 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। वीसीके और आईयूएमएल पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के 2-2 विधायक हैं। राज्यपाल ने श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वासमत हासिल करने को भी कहा है। केरल में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर हुई बैठक में श्री राहुल गांधी, केरलम प्रभारी महासचिव दीपा दासमुंशी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राज्य के वरिष्ठ नेता रमेश चिन्नीथला और वीडी सतीशन शामिल थे। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री

0: मंत्री पद की शपथ लेंगे। वे पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इसमें समय पर वेतन और सामाजिक अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का भी प्रावधान है। परामर्शदाताओं के लिए शिक्षा के माध्यम से मस्तिष्क की सक्रियता परियोजना पर आज नई दिल्ली में एक सम्मेलन होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सहयोग से इसका आयोजन किया है। इस पहल का उद्देश्य माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में शैक्षणिक विकास के साथ साथ भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आरोग्य को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल ट्रिनिडाड और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप में भारत से गिरमिटिया श्रमिक पहली बार ट्रिनिडाड और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही ये परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

अभी आप सुन रहे थे हरिहरन की आवाज में ये भजन। आइए अब सुनते हैं एच डी वर्मन की आवाज में ये भजन पीतम बड़ो।

अभी आप सुन रहे थे एसडी वर्मन की आवाज में ये भजन। आइए अब सुनते हैं बाणी जयराम की आवाज में ये भजन।

अभी आप सुन रहे थे बाणी जयराम की आवाज में ये भजन। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं महेंद्र कपूर की आवाज में ये आरती।

महेंद्र कपूर की गाये इसी आरती के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:20 पर आप सुनेंगे हिंदी महक के अंतर्गत भेंटवार्ता, हड्डी और जोड़ों का दर्द। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर राजेंद्र धमनिया। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए प्रातः 7:30 पर, शाम 5:30 पर और रात्रि 8:30 पर। प्रातः 8:30 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे धारावाहिक गीत गीता का भाग एक। इसमें आप सुनेंगे गीता वंदना और अर्जुन विषाद योग। लोकरंग कार्यक्रम का आनंद लीजिए 9:00। इसमें आज कलाकार होंगे भरतलाल विश्वकर्मा और ढोलक पर होंगे नितेश और बैंजो पर राजा राम विश्वकर्मा। फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश हम आपके लिए लेकर आएंगे 9:30 पर। प्रस्तुति होगी रविंद्र कुमार प्रजापति की। 10:30 पर आप सुनिएगा पत्रोत्तर का साप्ताहिक कार्यक्रम भवदीय। सहयोग होगा राजेंद्र कुमार अहिरवार का और प्रस्तुति होगी रविंद्र कुमार प्रजापति की।

हमारे आकाशवाणी भोपाल केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में आज आप सुनेंगे 11 बजे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, 12 बजे कार्यक्रम आपकी फरमाइश, 12:30 पर संग्रहालय से, 1 बजे महिला कार्यक्रम महिला सभा, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत, 2 बजे फिल्म संगीत, 2:30 पर बच्चों का कार्यक्रम बाल सभा, 5:02 पर युवा साथी सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी आकाशवाणी भोपाल से। भजन संध्या का आनंद लीजिए 6:00, इसमें आज आप सुनेंगे उदित नारायण के भजन।

बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा का प्रसारण समय रहेगा शाम 6:30 पर। ग्रामीण भाइयों के लिए ग्राम सभा हम लेकर आएंगे शाम 7:20 पर। इसमें आज आप सुनेंगे धारावाहिक अटकन चटकन, साथ ही होगी आज की सीख छाती फटत। भोपाल

काल केंद्र से आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे सुर्खियों में और रात्रि 8:15 पर भारत सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं पर आधारित कार्यक्रम डगर विकास की। दिल्ली केंद्र से प्रसारित कार्यक्रमों में रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम स्पॉटलाइट, रात्रि 9:30 पर नेशनल प्रोग्रामिंग ऑफ फीचर्स, रात्रि 10 बजे अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा।

0: ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। मीडियम वेव और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है किसान भाइयों के लिए खेती किसानी।
1: हाँ पंच भैया, आज हम अपन का जानकारी दे रहे हैं फसलन में सल्फर को का महत्व है। भैया देखो, जैसो कि अपन जानते ही हो कि अपनी जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़त चली जा रही है, तो ईके लाने अपने जो खाद्यान्न है, जब तक अपन इनको उत्पादन दोगुना ना करें तब तक अपने देश की जनसंख्या को भरण पोषण नहीं हो सकता है। ईके लाने अपने किसान भैया अधिकांशता धान है, गेहूं है, दलहन है, इनमें उत्पादन लेके ज्यादा से ज्यादा उनको लक्ष्य सरकार द्वारा निर्धारित करवो है। ई लक्ष्य का पावे के लाने हमारे किसान पंच नत्रजन, स्फोर और पोटास को प्रयोग ज्यादातर करते हैं। जब ये तीन तत्व हैं, ई के अलावा भी कुछ और तत्व भी हैं जिनको प्रयोग भी अपन खा अपने खाद के रूप में देखें बढ़ाने पर है। जी में वो तत्व है सल्फर, और भैया जो सबसे महत्वपूर्ण है, खासतौर से तिलहन की फसल में सल्फर को अवशोषण सबसे ज्यादा अच्छा मानो वो है। ई के बाद दलहन और खाद्यान्न फसलें जो है उनमें भी जो अपनो महत्वपूर्ण भूमिका निभाऊ थे। 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से सल्फर को प्रयोग करवे से धान, मक्का और सोयाबीन में अच्छी पैदावार मिला थे। ई के लाने भैया अपन का कन्ने हैं कि धान में 25%, मक्का में 33% और सोयाबीन में 28% तक की वृद्धि ई सल्फर तत्व के दय से हो जाते हैं। पौधन के संपूर्ण जीवन काल में वृद्धि के लाने अकेले 2-3 नहीं 16 पोषक तत्व ऐसे हैं जिनकी जरूरत अपने किसान पंचन का पौधा के लाने परत है। तो जो द्वितीय पोषक तत्व सल्फर है, जो पौधन के पोषक तत्व के रूप में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ई को उपयोग अपन का जरूर करने हैं। इसे भैया का फायदा होते है कि जो पंच ई को उपयोग कर रहे हैं उसे उनकी फसल अच्छी होते है, पैदावार अच्छी होते है। अकेले सल्फर जो पौधन में अपन दे रहे हैं उनके जो प्रमुख कार्य हैं बेसो ही हम अपन का बता दें। सल्फर भी यह करत के पौधन में अमीनो जो अम्ल होते हैं उनको निर्माण कर देते हैं, जिसे दलहन फसल में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा बढ़ जाते है। सल्फर नाइट्रोजिनेन को जो भाग है जो उनके दलहन फसल की जड़न में गांठन को निर्माण करत, और जो नाइट्रोजन की मात्रा है ना ऊखा में भैया स्थिरीकरण में सहायक हो जाते है। सल्फर थायमीन और बायोटिन नामक विटामिन के निर्माण में जो है अपनो सहायक होते है। फसलन की जो जड़ें हैं उनमें वृद्धि और विकास हो जाते है। उके अलावा सल्फर पौधन में रोग प्रतिरोधात्मक जो क्षमता होते है उखा बढ़ा देते है, जिसे कि अपनो पौधा रोगी नहीं बन पाऊ। प्याज और लहसुन की पैदावार सबसे ज्यादा होते है। तिलहनी फसलन में तेल की मात्रा बढ़ावे में जो सहायक है, और दलहनी जो फसलें हैं उनकी जो जड़न की ग्रंथियां हैं उखा भी पूर्ण तो विकास में कर देते हैं। तो इस प्रकार से अपन का सल्फर के महत्व के बारे में जानकारी भाई। बे पौधा जिनमें सल्फर की कमी है उनके कछु लक्षण सोई हम अपन का बता दें। सल्फर की कमी से पौधन की ऊपरी नई पत्तियों में जो सराएं होती हैं उनके बीच के भाग हरे पीले रंग के हो जाते हैं, पौधन की वृद्धि रुक जात, और जो अपने पौधा को तना है ना भैया वो कड़ो हो जात, सख्त हो जात बिल्कुल। कपास और टमाटर जिन पंजन के लगे हैं उनके तना लाल रंग के हो जात, तो जो जान लो कि इनमें सल्फर की कमी है। यही प्रकार से आलू है, सरसों है, इनकी पत्तियां

0: या सिकुड़ सी जाती हैं और बिल्कुल तस्तरी प्याले नुमा हो जाती है। सल्फर की कमी से तिलहनी जो फसलें हैं उनमें तेल की मात्रा कम रह जाती है और जो अपनी दलहनी फसलें हैं उनकी जड़न की जो ग्रंथि है उनको विकास सही ढंग से नहीं हो पाता है। खासतौर से सोयाबीन की लाने जो सोयाबीन के पौधा की ऊपर की पत्ती है वे जो है धीरे धीरे करके पीली पड़ के इतने तक की पूरा पौधा तक उनको जो है पीलो पड़ जाते हैं। तो उनमें अगर अपन सल्फर को छिड़काव जरूर करें। धान फसलन के पकवे में भैया जो है देरी होने लगत, प्याज और लहसुन की जो सुगंध हो उनमें तीखापन नहीं आता है, तो अपन का जो है सल्फर को प्रयोग जरूर करने हैं। ई बेरा खड़ी फसलन में सल्फर की कमी के लक्षण अगर दिखें तो अमोनियम सल्फेट के घोल को पर्णी छिड़काव अपन का जरूर कर देने हैं, इसे अपनी फसलन का जरूर लाभ होगा।
1: अभी किसान भाइयों के लिए खेती किसानी का प्रसारण किया जा रहा था। मीडियम वेव और प्रसार भारती के ऑफिशियल एप न्यूज ऑन EIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान।

शिव मंदिर में गुरु की अनदेखी करके अपमान करने के कारण उस जन्म में शूद्र शरीरधारी काकभुशुंडी को भगवान ने सर्प हो जाने का श्राप दिया तो कृपालु गुरु हाहाकार कर उठे। स्तुति करके उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया। आशुतोष ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण से वर मांगने को कहा। विप्र ने दो वर मांगे, एक अपने लिए शिव चरणों में भक्ति और दूसरा शिष्य की शाप मुक्ति।

0: अभी श्री रामचरित मानस गान का प्रसारण किया जा रहा था। मीडियम वेव और प्रसार भारती के ऑफिशियल एप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: एक दिन मेरे घर में शक्कर की बोरी में चींटियां लग गई। चींटियों को निकालने में काटने का डर था, अतः मैंने उस बोरी को पानी में डुबो दिया। थोड़े समय के बाद ये सोचकर कि चींटियां निकल गई होंगी, मैं वहां गई, लेकिन वहां जाकर देखती हूं कि चींटियां अभी भी अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रही हैं। यह है जिंदगी जीने का जज्बा, विषमतम परिस्थितियों में भी बाहर निकलने का जोश और जुनून। जम्मू कश्मीर में पूरे साल बर्फ जमी रहती है। ठंड के दिनों में जब बर्फ की चट्टानें चारों ओर होती हैं, तो भी वहां के बच्चे एक दिन भी अपने स्कूल की छुट्टी नहीं करते। 100% उपस्थिति के साथ वे पहाड़ के बच्चे पहाड़ जैसा सीना लेकर पहाड़ सी मुसीबतों को हंसते हंसते पार कर जाते हैं। उनका रास्ता प्रतिदिन खोता है, लेकिन वे प्रतिदिन नया रास्ता बनाकर हाथ में हाथ थाम विद्यालय जाते हैं। हम हमारे वीर जांबाज सैनिकों के जज्बे को क्या कभी भूल सकते हैं? पहाड़ की खड़ी चढ़ाई हो, लेह की भीषण ठंड या राजस्थान की तपती रेत, हमारे देश के ये सपूत दिन रात हमारे देश की सीमाओं की चौकसी करते हैं ताकि हम सुरक्षित रहें, हमारा देश सुरक्षित रहे। लेकिन इसके विपरीत हम क्या करते हैं? ठंड बढ़ी नहीं कि हम स्वयं और बच्चों को भी घरों में दुबका लेते हैं। कार्यालयों की आरामदायक परिस्थितियों में भी हम अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से नहीं करते। क्या हमें अपने बच्चों से या सैनिकों से सीख लेने की

0: आवश्यकता नहीं है? क्या देश का गौरव बढ़ाने की जिम्मेदारी मात्र सैनिकों या गिने चुने लोगों की ही है? अनेक सुविधाओं के बावजूद हम कुछ नहीं कर पाते और ये अनेक विषमताओं में भी अपनी राह बना लेते हैं। परीक्षा के दिनों में हमारे बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं और पूरे जोश के साथ परीक्षा देते हैं, लेकिन परीक्षा के परिणाम पर उनका सदैव वश नहीं होता। ऐसे में परीक्षा परिणाम विपरीत भी आए तो हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें इस बात का एहसास कराएं कि कोई भी परीक्षा जीवन की अंतिम परीक्षा नहीं है। एक बार की असफलता से जीवन समाप्त नहीं होता। एक असफलता उनके लिए अनेक सफलताओं के द्वार खोलती है। उन्हें निराशा के समय मार्गदर्शन देना अनिवार्य है, अन्यथा वे कोई गलत कदम उठा सकते हैं। अस्पतालों में लाइलाज बीमारी से लड़कर कई रोगी जीवन की जंग जीत जाते हैं। बीमारी उन्हें नहीं वरन वे बीमारी को हरा देते हैं और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और जोश के दम पर अपने जीवन की राह पर आगे निकल जाते हैं। घर और परिवार में स्त्रियों पर अनेक बंधन होते हैं। उन बंधनों को तोड़कर अपना लक्ष्य प्राप्त करना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी समाज के उच्च पदों पर स्त्रियां सुशोभित होती हैं। हमें उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। समाज के किसी भी व्यक्ति पर, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, उस पर अत्याचार हो रहा है तो देश के नागरिक होने के नाते हमें उनके लिए आवाज उठानी होगी। पीड़ित का साथ देना होगा, उसे न्याय दिलाना होगा। मैं और मेरा परिवार की अवधारणा से निकलकर मैं और मेरे देशवासी की अवधारणा की ओर कदम बढ़ाने की जरूरत है। आसमान से ऊंचे हौसले एवं चट्टानों से मजबूत इरादों के साथ हमारी महिला पुलिस अधिकारी काम करती है। स्त्रियां हर क्षेत्र में पुरुषों से कंधा मिलाकर काम करती हैं और कई बार तो उस काम को अंजाम दे देती हैं जहां पुरुष भी सफल नहीं होते। हमारे देश की शौर्य से भरी शातिर जांबाज कमांडो बुलंद हौसलों और बेमिसाल ताकत से नक्सलियों से लड़ती हैं। ये कोई और नहीं, हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर की मर्दानी टीम है। जीवन में अनेक विषमताओं के बावजूद छोटे छोटे घरों में रहकर भी महिलाएं शूटर, पहलवान और उत्कृष्ट खिलाड़ी बनकर उभरती हैं। क्या ये उन्हें सब कुछ सहज में प्राप्त हुआ है? नहीं, जीवन की कठिनतम परिस्थितियों में भी उन्होंने अपना जोश, जुनून और जीत का जज्बा नहीं छोड़ा, जिस कारण वे आज इस मुकाम पर पहुंची हैं। विकट सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां हो या शारीरिक रूप विकलांग हो, उनका जीत का जुनून ही उन्हें सामान्य से सर्वोत्तम बनाता है। तो फिर हम अपनी तमाम असफलताओं और कमियों को दरकिनार करते हुए क्यों नहीं उठ खड़े होते? स्वामी विवेकानंद जी को भी एक दिन में सफलता नहीं मिली थी। अनेक बार लोगों द्वारा अपमानित होने के बाद भी वे हंसते हुए अपनी राह पर पूरे जोश और जुनून से बढ़ते रहे और विश्व गुरु बनी। हमें उनके शब्दों का सदैव मनन करना होगा। तो आइए हम भी पूरे जोश, जुनून और सच्चे जज्बे के साथ अपने कार्य पर जुट जाएं और देश की सामाजिक आर्थिक विषमताओं को दूर करते हुए देश का स्वर्णिम भविष्य बनाएं।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन। मीडिया मैप और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन EIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। समाचार अब हम कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नवसहस्रकोटिरूप्यकाणाम् अनेकासाम् विकासपरियोजनानाम् शिलान्यासम् लोकार्पणम् च करिष्यति। श्रीमोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक वीथिकायाम् सप्तषष्ट्यधिक शत संख्याके राष्ट्रिय राजमार्गे चतुर्भागपरक मार्ग निर्माणस्य आधारशिलाम् अपि स्थापयिष्यति। प्रधानमन्त्री वारंगले पीएम मित्रा पार्क इत्येतत् उद्यानम् अपि उद्घाटयिष्यति। अपि च सः हैदराबादे अत्याधुनिकं कर्करोगपरम् एकं चिकित्सालयम् अपि लोकाय अर्पयिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी कर्णाटक तेलंगानयोः यात्रानन्तरम् अद्य गुजरातम् अपि गमिष्यति। द्विदिवसीय यात्रायाः प्रथमे दिने अद्य सः जामनगरं प्राप्नोति। तदनन्तरं द्वितीये दिने अर्थात् श्वः सः सोमनाथ मन्दिरस्य जीर्णोद्धारस्य पञ्चसप्तति वर्षपूर्त्यवसरे आयोजिते सोमनाथामृत महोत्सवे सहभागं करिष्यति। प्रधानमन्त्री अनेकेषु धार्मिकेषु सांस्कृतिकेषु च कार्यक्रमेषु सहभागं करिष्यति। सुवेन्दुः अधिकारी ह्यः पश्चिम बंगालस्य नूतन मुख्यमन्त्रित्वेन शपथं गृहीतवान्। इत्थं पश्चिम बंगाले भाजपेति दलस्य प्रथमं प्रशासनं संघटितम्। कोलकातायां ब्रिगेड परेड ग्राउंड इति स्थले आयोजिते भव्ये समारोहे राज्यपालेन आर एन रविणा श्री सुवेन्दुः अधिकारी पदगोपनीयतायै प्रतिश्रावितः। तेन सह अन्ये पञ्चमन्त्रिणः अपि पदगोपनीयतायै शपथं गृहीतवन्तः। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री केन्द्रीय गृहमन्त्री रक्षामन्त्री भाजपादलाध्यक्षः अनेके मुख्यमन्त्रिणः मन्त्रिणः वरिष्ठाधिकारिणश्च उपस्थिताः आसन्। टीवीके दलप्रमुखः सी जोसेफ विजयः तमिलनाडुराज्यस्य नूतन मुख्यमन्त्रित्वेन अद्य प्रातः दशवादने शपथं ग्रहीष्यति। तेन सह अन्ये नवमन्त्रिणः अपि पदगोपनीयतायै शपथं ग्रहीष्यन्ति। तत्रान्तरे ह्यः नूतन सर्वकार रचनायै टीवीके दलेन प्रमाणितं यत् तत्पार्श्वे विंशत्युत्तर शत विधायकानां समर्थनं वर्तते। प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजनायाः पञ्चविंशतितमीं वर्षपूर्तिम् उपलक्ष्य मध्यप्रदेशे सीहोर जनपदस्य भैरुन्ता स्थले अद्य रजत जयन्ती समारोहः आयोजयिष्यते। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मन्त्री शिवराज सिंह चौहानः अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षतां करिष्यति। भारतीय अर्थ विभागेन आगामिषु द्वित्रेष् दिवसेष् केरल लक्षद्वीप दक्षिण कर्णाटक तमिलनाडु पुदुच्चेरी कराईक्कलेष् प्रचण्ड वृष्टेः संभावना प्रकाशिता। प्रिया श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः एफएम गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने सार्धैकवादनतः भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। अन्ते क्रीडा वार्तासु, इण्डियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रौ जयपुरे आयोजिते द्वन्द्वे गुजरात टाइटन्स दलेन राजस्थान रॉयल्स दलं सप्तसप्तति धावनांकैः पराजितम्। आदोपणं विजित्य राजस्थान रॉयल्स दलं क्षेत्ररक्षणं कर्तुं निर्णीतवत्। ततः गुजरात टाइटन्स दलेन त्रिंशदधिक द्विशत धावनांकानां विजय लक्ष्यं स्थापितम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के 45वें वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रूपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेलूर से महबूबनगर तक 4 लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दो दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार के 75

0: वी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। तमिलनाडु में तमिल गवित्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। वीसीके और आईयूएमएल पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के दो दो विधायक हैं। राज्यपाल ने श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को भी कहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केरलम में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आरएन रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और 5 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने हैदराबाद में स्क्रैमजेट कमस्टर का सफल परीक्षण किया है। परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। यह रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। इस सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ उद्योग भागीदारों और शिक्षाविदों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए ठोस नींव बताया है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इससे समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का प्रावधान है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल त्रिनिदाद और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप में भारत के गिरमिचिया श्रमिक पहली बार त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही यह परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हराया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेप बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi will visit Karnataka and Telangana today. At around 11 a.m., the Prime Minister will participate in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru and also inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Mr. Modi will also address the gathering during the programme. Thereafter, Prime Minister Narendra Modi will travel to Hyderabad at around 3 p.m. He will lay the foundation stone and inaugurate the multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Hyderabad. The sacred Somnath Temple is celebrating 75 years of the modern journey evolving into a global center of spirituality and sustainable tourism. With Prime Minister Narendra Modi set to grace the Somnath Amrit Parv, the temple has entered a golden era under his leadership.

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से दो दिन के गुजरात दौरे पर, कल सोमनाथ अमृत महोत्सव में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज गुना जिले में 1189 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। सीहोर जिले के भिरंगना में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पीएम जनधन योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आज होगा शुभारंभ। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में आज और कल बारिश होने की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से दो दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक शुभारंभ दो दिन पहले हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक कहलाता है। पेश है हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1: में आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1.25 लाख आहुतियाँ अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार।
0: प्रधानमंत्री इस अवसर पर सोमनाथ की समृद्ध विरासत और आध्यात्मिक महत्व पर स्मारक डाक टिकट और सिक्के भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर भी होंगे। वे लगभग दिन के 11 बजे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के 45वें वर्षगांठ समारोह में भाग लेंगे और आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान वे उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद जाएंगे और वहां विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रूपये की है। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर गुड बेल्लूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 को फोर लेन बनाए जाने के कार्य का भी शिलान्यास करेंगे। वे इसी दौरान वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम मित्र योजना के अंतर्गत विकसित इस पार्क को काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क भी कहा जाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज गुना जिले में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। डॉक्टर यादव यहां 1059 करोड़ रुपए से स्थापित होने वाले अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री का शिलान्यास करेंगे। साथ ही लगभग 130 करोड़ रुपए की लागत के 144 अलग अलग विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी मुख्यमंत्री करेंगे। इन विकास कार्यों से जिले में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा तथा आमजन को बेहतर सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। इसका उद्देश्य गुना जिले में औद्योगिक विकास, अधोसंरचनात्मक सुदृढ़ीकरण और रोजगार सृजन को नई गति देना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कल 24 आम उत्पादक किसानों को 11,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। कल इंदौर के ग्रामीण हाट बाजार परिसर में मराठी सोशल ग्रुप द्वारा आयोजित 3 दिवसीय मैंगो जत्रा में शामिल हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन किसानों को सीधे उपभोक्ताओं से जोड़ने का सशक्त माध्यम बन रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री मालवा उत्सव में भी शामिल हुए।
2: मेला मेल मिलाप की जगह होती है, परस्पर आत्मीयता बढ़ाने की जगह होती है कि हमारे अलग अलग प्रांतों के अलग अलग कलाकार इस मालवा उत्सव में अपनी प्रस्तुति देते हुए आत्मीयता बढ़ाने के लिए आते हैं। इसलिए रजत जयंती वर्ष में धूमधाम के साथ ये आयोजन हो रहा है और 125वीं जयंती में हम सब मिले इस कामना के साथ मैं अपनी ओर से 5 लाख रुपया हमारे इस आयोजन के लिए संस्था को देने की घोषणा भी करते हैं।
0: केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि इन सुधारों के जरिए समय पर वेतन भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इन उपायों से संविदा कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी और वैधानिक देय राशियों के भुगतान में चूक भी कम हो सकेगी। इसमें समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार।

0: के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का प्रावधान है। अब समाचारों वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। सीहोर जिले के बरुंदा में आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं पीएम जनमन योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के अंतर्गत प्रदेश में 1763 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 2117 किलोमीटर लंबी 963 सड़कों का निर्माण होगा। योजना में सीहोर जिले में 165 करोड़ रुपए की लागत से 209 किलोमीटर लंबी 81 सड़कों का निर्माण होना है। इन सड़कों से जिले की 84 बसाहटें सीधे लाभान्वित होंगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हैदराबाद में स्कैमजेट कम्बस्टर का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ है। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से कहीं अधिक है। इस सफल परीक्षण से भारत उन्नत एयरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर पहुंच गया है। इस परीक्षण से भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। प्रदेश में अब तक 9,78,000 किसानों से 60,70,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कल बताया कि तौल पर्ची बनाने का समय शाम 6 बजे से बढ़ाकर रात 10 बजे तक तथा देयक जारी करने का समय रात 12 बजे तक कर दिया गया है। किसानों के हित में गेहूं उपार्जन की अवधि 9 मई से बढ़ाकर 23 मई कर दी गई है। बात मौसम की करते हैं। प्रदेश में सक्रिय चक्रवात के कारण कल राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में आंधी और बारिश देखने को मिली। इससे तेज गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश जिलों में आज और कल बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुणा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, सीधी और सिंगरौली जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में कल खेले गए मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रनों से हरा दिया। 230 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान रॉयल्स 152 रनों पर सिमट गई। आज के मुकाबले में चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे से लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मैच होगा। वहीं रायपुर के शहीद वीर सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस से शाम 7:30 बजे से होगा। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर 25 और 26 मई को 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। बैतूल कलेक्टर के निर्देशानुसार अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने कल समीक्षा बैठक की। इसमें जल संचय, जन भागीदारी और जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा की गई। डिंडोरी जिले में कल पोषण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पोषण ट्रैकर के विभिन्न इंडिकेटर्स की विस्तृत समीक्षा की गई। जयपुर जिले में बढ़ते तापमान और लू की स्थिति को देखते हुए जिला कलेक्टर ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पताल, CHC और PHC में हीट स्ट्रोक से बचाव की तैयारियों की समीक्षा की। और खंडवा जिले के ओंकारेश्वर स्थित नर्मदा घाटों पर श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने विशेष निर्देश जारी किया है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। आगे दीजिए। नमस्कार।

0: मीडियम वेव और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम हिंदी महक के अंतर्गत भेंट वार्ता, हड्डी और जोड़ों का दर्द। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राजेंद्र धमनिया।
1: श्रोताओं, स्वास्थ्य के आयाम इस क्रम में हम आपको स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न

0: विषयों पर भेंटवार्ताओं के माध्यम से नई नई जानकारियां देने का प्रयास करते हैं और इसी क्रम में आज हम विषय लेकर आए हैं हड्डी और जोड़ों का दर्द। और इस विषय पर हमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र धमनिया जी, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल छतरपुर में MS ऑर्थोपेडिक सर्जन के रूप में पदस्थ हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज के समय में हड्डी और जोड़ों का दर्द ये एक बड़ी सामान्य समस्या बन गई है। हर घर में देखने को मिलते हैं इससे पीड़ित मरीज। कहा जाए कि ये ऐसी सामान्य समस्या है जो गंभीर रूप भी ले लेती है।
1: जी जी, बिल्कुल।
0: इस बात के लिए हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इसके होने के कौन कौन से कारण हैं।
1: जो जोड़ों से संबंधित रोग हैं, मुख्यतः वो आर्थराइटिस से संबंधित रहता है। आर्थराइटिस, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, वो मुख्यतः घुटनों में, कूल्हों में और जो टखनों के जोड़ हैं, इसके अलावा जो रीढ़ की हड्डी है उसमें भी होने के चांसेस रहते हैं। मुख्यतः जो घुटने हैं वो ज्यादातर अफेक्टेड होते हैं इससे। दर्द और सूजन है, हो जाता है। इसके अलावा जोड़ों का ना खुलना पूरी तरह से सुबह के समय जोड़ों की जकड़न
0: जी,
1: तो ये सब बातें रहती हैं इस बीमारी के अंतर्गत।
0: आपने बात की आर्थराइटिस की
1: जी।
0: आर्थराइटिस के कितने प्रकार हैं, उन प्रकारों के बारे में थोड़ा
1: जी, बिल्कुल। इसमें जो मुख्य प्रकार है आर्थराइटिस के, वो सबसे जो मुख्य है, पहला तो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, और उसके अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस रहता है और गाउट रहता है। ये मुख्यतः आर्थराइटिस हैं जो जोड़ों में दर्द और सूजन पैदा करते हैं,
0: गठियावाद के प्रकार।
1: हाँ जी,
0: इनको।
1: जी जी।
0: ऑस्टियोआर्थराइटिस की आपने बात की है, इसके बारे में थोड़ा सा हमको जानकारी।
1: जी जी। ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसमें क्या होता है कि उम्र से, जैसा अधिक उम्र है, 40 साल 45 साल के बाद ये मुख्यतः बीमारी डेवलप होती है। और इसमें जो जॉइंट का स्पेस है, जो घुटने का, जो जोड़ का स्पेस है, वो कम होने लगता है। इसके अलावा उसके अंदर जो एक साइनोवियल फ्लूइड रहता है, जो लुब्रिकेट का काम करता है
0: जी। जो मूवमेंट है, घुटना जब मुड़ते हैं आपस में, जॉइंट्स पे मुड़ता है
1: जी,
0: तो उसको लुब्रिकेशन देता है।
1: उसको लुब्रिकेशन देता है, तो जॉइंट का जो स्पेस है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, और ये जो साइनोवियल फ्लूइड है इसकी मात्रा में भी कमी आती है। तो इस वजह से धीरे धीरे चलने में घुटना आपस में टकराते हैं, ऊपर नीचे की हड्डियां, और दर्द और सूजन पैदा होना लाजमी है इसमें। इसके बाद और अन्य प्रकार का जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, वो मुख्यतः यंग एज में भी मिलता है और मिडिल एज भी मिलता है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है
0: जी। जैसे आपने बताया कि ऑस्टियो आर्थराइटिस है, ये बुजुर्ग है उनमें ज्यादा पाया जाता है
1: जी, जी।
0: और रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये यंग में ज्यादातर होने की संभावना है, बुजुर्गों के पास
1: दोनों में हो सकता है
0: जी। इसके क्या लक्षण है रूमेटॉइड आर्थराइटिस?
1: रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी जो डिस्टल जॉइंट्स हैं, मतलब हाथों की जो उंगलियां हैं, कलाई की हड्डी हुई, इसमें दर्द और सूजन पैदा होती है, वो काफी पेनफुल रहती है,
0: सीवियर कंडीशन।
1: इसमें धीरे धीरे जॉइंट का जो स्पेस है वो भी कम होने लगता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। उसमें टेढ़ापन भी आ जाता है, अगर ज्यादा एडवांस डिजीज हो जाए तो रूमेटॉइड में उंगलियों में टेढ़ापन आ जाता है।
0: आपने गाउट की बात की थी
1: जी जी,
0: जो आर्थराइटिस का एक और प्रकार है।
1: गाउट में जो डिस्टल जॉइंट है, मोस्टली पैर का जो पंजा है, उसका जो पहला जो अंगूठे वाला जो हड्डी है, उसके ऊपर वाला जो जॉइंट रहता है
0: जी,
1: तो उसमें यूरिक एसिड के क्रिस्टल डिपॉजिट हो जाते हैं
0: जी।
1: यूरिक एसिड इस बीमारी में पूरी तरह से नहीं निकलता पेशाब के थ्रू, और ये डिस्टल जॉइंट्स में जमा होने लगता है
0: जी,
1: जो दर्द और सूजन पैदा करता है
0: जी। यानी जो हमारे शरीर में यूरिक एसिड है, किडनी के जो फंक्शंस हैं वो प्रॉपर काम नहीं करने के कारण
1: जी, जी।
0: वो यूरिक एसिड जॉइंट्स में आ जाता है और जिससे हमको परेशानी होती है
1: जी।
0: इन बातों के लिए जो आर्थराइटिस के आपने विभिन्न प्रकार बताए हैं, मुख्य कारण क्या जिम्मेदार आप समझते हैं, क्या बातें रहती है? आपने एज फैक्टर बताया है, उम्र के साथ साथ भी होते हैं, और उसके अलावा क्या बातें जिम्मेदार?
1: इसके अलावा गलत ढंग से उठना बैठना, चलना, मुख्यतः एक्सरसाइज नहीं करना, प्रॉपर जो एक्सरसाइज है या काम प्रॉपर नहीं करना, ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो मैंने बताया है आपको, ये 1:3 मतलब जो महिलाएं हैं उनमें पुरुषों की तुलना में ज्यादा रहता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं, आप अपना जो दिनचर्या का काम नहीं कर रहे हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक हुआ और जो एक्सरसाइज हुई वो नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे घुटनों पे वेट बढ़ने से, वजन बढ़ने से घुटनों पे दबाव आएगा, और घुटनों पे दबाव आने की वजह से फिर वो ये बीमारी धीरे धीरे बनना चालू हो जाती है, और सामान्य व्यक्तियों की तुलना में जो मोटे व्यक्ति रहते हैं उनको ये बीमारी ज्यादा होने के चांस रहते हैं।
0: और ये बीमारी, और बल्कि कहा जाए कि उनको सारे प्रकार के रोग होने की संभावना ज्यादा रहती है। शारीरिक व्यायाम मतलब बहुत जरूरी है
1: जी जी,
0: अगर हमें इस बात से बचना है तो। उसके अलावा कुछ खाने पीने की भी बातें आती है सामने, कुछ पोषण की कमी वगैरह।
1: हाँ, लहसुन जो लोग नहीं खाते हैं
0: जी,
1: उनको थोड़ा सा

0: परेशानी बनी रहती है जोड़ों के दर्द का। लहसुन मुख्यतः ये काम करता है कि जो साइनोवियल फ्लूड है जैसे घुटने हुए और भी जगह जितने जोड़ रहते हैं उसके साइनोवियल फ्लूड रहता है जो लुब्रिकेशन का काम करता है उसकी मात्रा को बढ़ाता है। तो कुछ चीजें हैं अगर वो प्रॉपर नहीं ले रहे हैं तो निश्चित तौर पर परेशानी बनने के चांस रहते हैं
1: जी। अगर हम भोजन की बात करें अपने खानपान की बात करें आज के समय में तो फास्ट फूड का प्रचलन बहुत ज्यादा हो गया है, तो ऐसी स्थिति में हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे हड्डियां मजबूत रहे, हमारी हमारे जो ज्वाइंट्स हैं जो मसल्स हैं जो उसको थमे हुए हैं वो अच्छी तरह से कार्य करें।
0: देखिए ऑस्टियोआर्थराइटिस तो एज रिलेटेड है, एज जैसा आपका बढ़ेगा उसके बाद जो न्यूट्रिशनल चीजें हैं वो बॉडी प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं कर पाती खाने के साथ में। आपको चाहिए कि बीमारी को पहले आप रोकें, उसके लिए आप दूध की मात्रा जरूर लें, आप खाने में रात में सोते समय दूध लें। इसके अलावा जो मैंने लहसुन बताया, गाउट में कुछ चीजों की मनाही है, खासतौर से जो प्रोटीन रिच डाइट है जैसे दालें हुई, अरहर की दाल हुई, चना हुआ, सोयाबीन हुआ, ये चीजें अगर ये बीमारी अगर रहती है आपको तो इन चीजों का सेवन ना करें, नहीं तो ये
1: कम करें,
0: कम करें।
1: ये भी कहते हैं कि ठंडी खट्टी चीजों से भी परहेज करना चाहिए, ये कहां तक सही?
0: हाँ, खट्टी चीजों से भी दर्द है और सूजन है वो कुछ हद तक बढ़ सकती है
1: जी, तो जहां तक हो सके इनसे परहेज करना चाहिए। जैसे कि एक सामान्य लोगों का नजरिया है कि हड्डियों की मजबूती है वो मजबूती का कारण कैल्शियम होता है, और कुछ लोग कैल्शियम की डोज, कैल्शियम की टेबलेट्स हैं सामान्य रूप से भी खाते रहते हैं, तो क्या कैल्शियम की एक्सेस भी हो सकती है, उससे भी कोई परेशानी होती है?
0: हाँ, अगर कैल्शियम अगर प्रॉपर आपके शरीर में उसकी मात्रा सही है
1: जी,
0: उसके बाद आपको लगता है कि नहीं मेरे को तो और कैल्शियम लेना है
1: जी जी,
0: तो वो चीज आपको नुकसान पहुंचा सकती है, आपको स्टोन बना सकती है, पथरी जिसको कहते हैं हिंदी में
1: जी।
0: इसके अलावा अगर एक्सेस, ज्यादा एक्सेस मात्रा में कैल्शियम लिया गया तो जो गुर्दे हैं, किडनी है, उस पर निश्चित तौर पर नुकसान होता है।
1: एक और बात आती है हड्डियों के बारे में जब हम बात करते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस की, हड्डियां कुछ कमजोर हो जाती है।
0: पुरुषों की तुलना में जो महिलाएं रहती हैं मुख्यतः 45 एज रहती है, उनका मेंसेस बंद होने के बाद जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, तो महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियों में कैल्शियम की कमी
1: जी,
0: तो ये मुख्यतः महिलाओं में बहुत तेजी से डेवलप होती है आफ्टर मेनोपॉज
1: जी।
0: और जो पुरुष है पुरुषों में भी होती है अगर डाइट अगर प्रॉपर नहीं लेते हैं वो 50 साल के बाद, अगर प्रॉपर कैल्शियम की मात्रा नहीं है उनके खाने में तो निश्चित तौर पर ऑस्टियोपोरोसिस उनको भी होने के चांसेस रहेंगे
1: जी। एक भ्रांति भी है सामान्य रूप से कि जिनको हड्डियों और जोड़ों का दर्द होता है एक्सरसाइज करने से बचते हैं वो, क्या हर तरह की एक्सरसाइज की जा सकती है इसमें या कोई विशिष्ट पैटर्न होता है एक्सरसाइज का?
0: कुछ विशेष कसरतें, कुछ एक्सरसाइज होती हैं जैसे आपको घुटने संबंधित बीमारी है जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जो जोड़ का जो जगह है, स्पेस है कम होने की वजह से जो होती है, उसमें एक जो नी की एक्सरसाइज है जो स्ट्रेंथनिंग मसल्स स्ट्रेंथनिंग कहते हैं उसको, नी की एक्सरसाइज, और इससे एक्सरसाइज से होता क्या है कि जो घुटने की मांसपेशियां हैं, घुटने के ऊपर वाली जो जांग की मांसपेशियां हैं और नीचे जो पैर के नीचे की पैर वाली जो मांसपेशियां हैं वो एक्सरसाइज करने से इतना मजबूत हो जाती हैं कि जब आदमी चलता है तो घुटने पे पूरा वजन ना पड़के ये मसल्स अपने ऊपर कुछ वजन ले लेती हैं, जिससे घुटना पे उतना स्ट्रेस दबाव नहीं पड़ता है, इससे दर्द और सूजन निश्चित तौर पे कमी आती है एक्सरसाइज करने से
1: जी। तो ये है कि ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे कि जो हमें रखने वाली मसल्स हैं वो मजबूत हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: डॉक्टर साहब, चलते चलते में हम ये भी जानना चाहेंगे कि इसका जो मेडिकेशन है, अगर किसी व्यक्ति में ऐसा उसको लगता है कि मुझे ये परेशानी है तो इसके लिए उपचार के रूप में हम क्या कर सकते हैं?
0: उपचार तो जो संबंधित रोग का डॉक्टर है उसको आप दिखाएं
1: जी।
0: इसके अलावा जो फिजियोथेरेपी है
1: जी,
0: फिजियोथेरेपी एक मुख्य रोल अदा करती है इस बीमारी को वहीं रोके रखने, इससे आगे ना बढ़े
1: जी।
0: ये चूंकि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है और रिमिटेड है, ये परमानेंट बीमारी है, अगर एक बार हो जाए तो ये इनको ये ताजिंदगी चलती है, और इनको अगर उसी स्थिति में रोकना है, इसको आगे नहीं बढ़ने देना है तो प्रॉपर
1: नियमित
0: तौर दवाई खाएं और एक्सरसाइज जो इनकी संबंधित एक्सरसाइज है
1: नियमित लेनी पड़ेगी,
0: फिजियोथेरेपी है वो आप बिल्कुल लें।
1: कोई ऐसी बात जो भी चर्चा के दौरान नहीं आ पाई हो?
0: कहना चाहूंगा कि अपना जो वजन है वो प्रॉपर सही रखें, मोटापे की ओर ज्यादा अग्रसर ना हो, नियमित रूप से अपनी कसरत करें, मॉर्निंग वॉक है वो करें, इसके अलावा खाने में जो चीजें मैंने बताई वो चीज जरूर लें। अगर आपकी एज 40 प्लस हो रही है, 40 के ऊपर आप जा रहे हैं, थोड़ा कैल्शियम से संबंधित चीजें हैं खान पान में उसकी मात्रा बढ़ाएं, तो ये चीजें लेने से निश्चित तौर पर इस बीमारी को कुछ टाला जा सकता है
1: जी। हम उम्मीद करते हैं।

0: सभी श्रोताओं ने इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी हासिल की है और इस जानकारी का फायदा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।
2: अभी आप सुन रहे थे हिंदी महक के अंतर्गत भेंट वार्ता, हड्डी और जोड़ों का दर्द। विशेषज्ञ थे डॉक्टर राजेंद्र धमनिया। मीडियम वेव और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन EIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं फिल्म राजा और रंक का ये गीत। आवाज लता मंगेशकर की है, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत संयोजन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं फिल्म साथी में मुकेश और सुमन कल्याणपुर को। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार है नौशाद।

0: अभी आप सुन रहे थे मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में ये गीत। फिल्म थी साथी।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अभी आप सुन रहे थे मजरूह सुल्तानपुरी की शब्द रचना को राहुल देव वर्मन के संगीत निर्देशन में। आवाज थी लता मंगेशकर और साथियों की। फिल्म थी प्यार का मौसम।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म नीलकमल में आशा भोसले को। गीतकार थे साहिल लुधियानवी और संगीतकार थे रवि। श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म नई रोशनी का ये गीत। राजेंद्र कृष्ण के गीत को संगीत से सजाया है रवि ने।

मोहम्मद रफी के गाए इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त तो होता है। मीडियम वेव और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। समाचार अब हम कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

लगभग 9,400 करोड़ विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचे

0: केर का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केर ने नियमों के प्रकाशन के साथ चार श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्क्रामजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की और ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 9 भारतीय महिला मुक्केबाज फाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के सदस्यों को संबोधित करेंगे और यहां पर नए ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। फाउंडेशन द्वारा संचालित समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रम का उद्घाटन भी उनके द्वारा होगा। आर्ट ऑफ लिविंग केंद्र जाने के पहले प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के बाहर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कर्नाटक विधानसभा के विपक्ष के नेता आर अशोका ने बताया कि विभिन्न राज्यों में पार्टी की जीत के कारण अभिनंदन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री के आगमन के संदर्भ में बेंगलुरु पुलिस ने वाहन संचार पर कुछ पल के लिए रोक लगाई है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: प्रधानमंत्री इसके बाद तेलंगाना के हैदराबाद में कई विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज HICC में आयोजित कार्यक्रम दौरान 9,400 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से जहीराबाद इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी और वरंगल में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशिला रखना शामिल है। इसके साथ ही वह काजीपेट विजयवाड़ा रेलवे ट्रिपलिंग परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जनसभा और सरकारी कार्यक्रमों के समापन के बाद प्रधानमंत्री जामनगर के लिए प्रस्थान करेंगे। श्रीनिवास मांकाली, आकाशवाणी न्यूज, हैदराबाद।
0: ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मिशन लाइफ पहल के तहत सोमनाथ मंदिर फूलों के कचरे को खाद में और प्लास्टिक कचरे को पेवर ब्लॉक्स में बदलकर स्थिरता के नए मानक स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं, आधुनिक सोएज ट्रीटमेंट प्लांट, वर्षा जल संचयन प्रणाली और मियावाकी वनों के माध्यम से ट्रस्ट तेजी से नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिजिटल पहलों ने अब दुनिया भर के श्रद्धालुओं को घर बैठे पूजा बुक करने और प्रसाद प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। वंदे भारत एक्सप्रेस और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों जैसी विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी के साथ ही देश और दुनिया भर से प्रतिवर्ष 97 लाख से अधिक श्रद्धालु सोमनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय को आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह चेन्नई के नेहरू इंदौर स्टेडियम में होगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर श्री विजय और 9 मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और बड़ी संख्या में लोगों के चेन्नई पहुंचने की संभावना है।
4: टीवीके की जीत के नायक सी जोसेफ विजय आज चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विजय ने फिल्म नालैया थिरुप्पु से फिल्म जगत में प्रवेश किया। बाद में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। इनमें कई राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ी फिल्में भी शामिल है। यह चुनाव मुख्य रूप से युवाओं और 45 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के बीच था। इस बार उन लोगों ने भी वोट किया जो कभी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते थे। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद टीवीके को 108 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। हालांकि यह बहुमत सिद्ध करने के लिए काफी नहीं था, लेकिन फिर भी जोसेफ विजय कांग्रेस VC के वामपंथी दलों और IUML के समर्थन से बहुमत हासिल करने में कामयाब रहे। विजय इतिहास रचते हुए पहली बार ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विजय ने उंगा विजय नान वारिन के नारे के साथ विजय ने ये चुनाव जीता है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं इशिका।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। एक रिपोर्ट।
5: एन रंगास्वामी 13 मई को पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। विधानसभा चुनाव में AINRC के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन

0: हालांकि शानदार जीत के बाद श्री रंगासामी रिकॉर्ड पांचवी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में श्री रंगासामी थट्टन चावड़ी और मंगलम विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित हुए। शुक्रवार को श्री रंगासामी ने उपराज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने निर्वाचित विधायकों के समर्थन पत्र भी प्रस्तुत किए जिनमें सरकार बनाने की अनुमति मांगी गई है। 30 सदस्यीय विधानसभा में एनडीए को 18 विधायकों का समर्थन प्राप्त हुआ है। पुदुचेरी से विवेन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: केरला में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी। असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक आज सुबह 9 बजे गुवाहाटी में होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भाजपा विधायक दल की यह बैठक भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में होगी। बैठक के बाद इसी स्थान पर एनडीए विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद एनडीए विधायक दल सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगा। इस बीच 12 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आर एन रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और पांच कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। एक रिपोर्ट।
5: नए नियम में प्रवेश स्तर से लेकर सबसे अनुभवी स्तर तक 4 श्रेणियों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव है। सरकार का तर्क है कि वर्तमान वेतन स्तर 20 वर्ष पहले तय किए गए थे और अमेरिकी श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते। इस नियम के अंतर्गत 26 मई तक लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। प्रवेश स्तर के श्रमिकों के लिए वर्तमान वेतन बढ़ाकर $97,700 से अधिक करने का प्रस्ताव है। ये पुरानी दरों से करीब 43% अधिक है। वर्तमान प्रणाली से नियोक्ता विदेशियों को समान रूप से कार्यरत अमेरिकी कर्मचारियों की तुलना में काफी कम वेतन पर नियुक्ति कर लेते हैं। प्रस्तावित परिवर्तन से H-1B, H-1B1, E-3 और PERM श्रम प्रमाणन कार्यक्रमों में लागू वर्तमान वेतनमान में वृद्धि होगी। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्क्रामजेट कमस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की है। एक रिपोर्ट।
6: इस सफल परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इससे भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। कम्बस्टर को DRDO ने उद्योग भागीदारों के सहयोग से विकसित किया है। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित तरल हाइड्रोजन ईंधन और उन्नत थर्मल बैरिंग कोटिंग तथा आधुनिक विनिर्माण तकनीकों का उपयोग किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO और उद्योग भागीदारों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण बताया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान श्री शाह राहत और बचाव उपायों में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों की तत्परता का आकलन करेंगे। शुरुआती चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसीय समन्वय की भी समीक्षा की जाएगी ताकि जानमाल का नुकसान कम से कम किया जा सके। विदेश मंत्री सुब्रमण्य

0: जयशंकर ने ट्रिनिडाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ दक्षिण ट्रिनिडाद में एक कृषि प्रसंस्करण केंद्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत की सीड्स पहल के अंतर्गत संचालित ये केंद्र ट्रिनिडाड और टोबैगो के लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करेगी और कृषि क्षेत्र को नई गति देगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। अंडर 15 में अक्षिता ने 30 से 33 किलो में, अंजी ने 37 किलो में और सोनिया ने 40 किलो में जीत हासिल की। तन्वी ने 43 किलो में, हंसिका अत्री ने 46 किलो में और सुनैना ने 58 किलो में तथा भूमिका ने 61 किलो और तन्वी ने 64 किलो में जीत हासिल की। इसके अलावा आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। प्रतियोगिता में कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से मात दी।
0: मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ इलाकों में आंधी आने की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद लवलीन। शुभेंदु अधिकारी के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर हिंदुस्तान ने लिखा है, शुभेंदु के साथ बंगाल में भाजपा युग आरंभ। दैनिक जागरण के अनुसार इतिहास के पन्नों में शनिवार को एक ऐसी इबारत लिखी गई जिसकी कल्पना भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दशकों पहले की थी। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, 74 साल में पहली बार भगवा बंगाल। तमिलनाडु में राजनीतिक अनिश्चितता समाप्त। अभिनेता से राजनेता टीवी के प्रमुख के आज शपथ लेने की खबरें सभी अखबारों में हैं। अमर उजाला की सुर्खी है, तमिलनाडु में कल सारे दिन चली राजनीतिक गतिविधियों को फिल्मी सीन बताते हुए लिखा है, दिन भर चला सस्पेंस, शाम को ऐलान के बाद जश्न। केंद्र सरकार द्वारा चारों नए लेबर कोड से जुड़े नियम नोटिफाई करने को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता से देते हुए 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा, अतिरिक्त काम कराने के लिए कर्मचारी की सहमति जरूरी होगी और ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से करना होगा। एयर डिफेंस को चकमा देने वाली विशेष मिसाइल का कल सफल परीक्षण किए जाने पर हिंदुस्तान लिखता है, एक बार में कई दुश्मनों को भस्म कर देगी अग्नि मिसाइल। पत्र ने इसे आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम बताया है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस के अवसर पर गूंजे मंत्र, हिंदू परंपरा से शांति पाठ, राजस्थान पत्रिका में है। पत्र लिखता है कि इसकी शुरुआत 1952 अमरीकी कांग्रेस के कानून के अंतर्गत हुई थी। अमर उजाला की ये खबर चिंतित करती है, इतिहास का सबसे गर्म अप्रैल, विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया अब पेरिस समझौते में तय 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के करीब पहुंच रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में चरम मौसमी घटनाएं और गंभीर हो सकती हैं। नवभारत टाइम्स की खास खबर है, डायनासोर के बाद गधों की बारी, घट रही आबादी। पत्र ने इसे अस्तित्व का संकट बताते हुए लिखा है कि सरकार ने गधों की घटती आबादी पर चिंता जाहिर करते हुए इनके संरक्षण के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। आज मदर्स डे पर सभी अखबारों ने विशेष आलेख लिखे हैं। दैनिक भास्कर लिखता है, मां होने का हक बच्चों को मुश्किल से बचाना नहीं लड़ना भी सिखाना है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वे हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ 4 श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्क्रैमजेट कमस्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू विजिट कर्नाटका एंड तेलंगाना टुडे टू लॉन्च मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ अराउंड 9,400 करोड़ रुपीज इन हैदराबाद and participate in 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru. TVK Chief C. Joseph Vijay to be sworn in as Chief Minister of Tamil Nadu this morning. President Draupadi Murmu appoints

0: गीता विश्व का सर्वाधिक मूल्यवान ग्रंथ है। गीता वह है जिसे गाया जाए। विद्वानों ने कहा है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरई, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृता। जिसने गीता को भली भांति गा लिया, उसे फिर अन्य शास्त्रों के विस्तार में जाने की क्या आवश्यकता है। यह श्री कृष्ण के मुख कमल से निकली हुई वाणी है। देववाणी में होने के कारण जनसामान्य हार्दिक इच्छा होने के बाद भी इसे गाने में असमर्थ है। इसलिए अनेक विद्वानों ने बार बार श्रीमद् भगवत गीता का काव्यानुवाद, भावानुवाद और शब्दानुवाद प्रस्तुत किया है। भारत में दोहे और चौपाइयों के काव्य शिल्प में रामचरितमानस गांव गांव में गाई जाती है। सागर नगर के डॉक्टर मनीष चंद झा ने श्रीमद् भगवत गीता को दोहे और चौपाइयों के रूप में गीत गीता शीर्षक से काव्यानुवादित किया है। डॉक्टर झा मूलतः एक अस्थिरोग विशेषज्ञ हैं, किंतु उनकी इस गीत गीता का गायन सुनकर मानव मन विकारों से मुक्त हो जाता है। गांव गांव में लोग इसका पाठ करेंगे और आनंद तथा आह्लाद का अनुभव करेंगे।
1: भगवत गीता सांसारिक जीवन में आध्यात्मिक उन्नति की पराकाष्ठा तक पहुंचाने वाला वो शास्त्र है जो मनुष्य के अंतरतम की गहनतम गहराइयों की सूक्ष्म छानबीन के बाद अभूतपूर्व परिस्थितियों के निर्माण होने से सतह पर आया है। सामान्यतः साधना की ओर हमारी चेतना का झुकाव कुछ व्याकुल कर देने वाली अशांत परिस्थितियां होती हैं, जहां व्यक्ति स्वयं को पूर्णतः लाचार और निरुपाय पाता है। यहां से वो या तो अपने आप को हार सकता है या अपने को जीत सकता है। भगवत गीता उस जीत का रास्ता है।

0: अभी आप सुन रहे थे ये गीता वंदना। आइए अब सुनते हैं ये अर्जुन विषाद योग।
1: महाभारत का युद्ध अधिकांश दार्शनिकों द्वारा अंतरात्मा के निरंतर युद्ध का प्रतीक माना गया है। अपने आप को अपने ही प्रियजनों के समक्ष युद्ध के लिए प्रस्तुत पाकर अर्जुन जिस मानसिक दुविधा में फंसे हैं, वो हमारे लिए चिरपरिचित है। यद्यपि जिसके लिए वो स्वयं वर्षों से तैयारियां कर रहे थे, उसी कर्म से मोह और शोक के कारण एन मौके पर पीछे हटने की मनोवृत्ति हर मनुष्य के लिए जानी पहचानी है, क्योंकि इस व्याकुलता को हर मनुष्य ने अपने जीवन में अनेकों बार जिया है। अर्जुन की इसी व्याकुलता को प्रस्तुत किया गया है अर्जुन विषाद योग नामक प्रथम अध्याय में।

0: अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक गीत गीता का भाग एक। इसमें आज आपने सुना गीता वंदना और अर्जुन विवाद विषाद योग। मीडियम वेव और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक रंग। इसमें आज के कलाकार हैं भरत लाल विश्वकर्मा, ढोलक पर हैं नितेश और बेंजो पर हैं राजा राम विश्वकर्मा।
1: जग जाहिर है।

0: अभी आप सुन रहे थे भरतलाल विश्वकर्मा से ये देवी गीत।
1: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
2: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
3: ओहो भाई साहब, फिर खराब हो गया आपकी चक्की का पत्थर।
4: क्या करें बहन जी, ये हर बार की मुसीबत है।
3: डुप्लीकेट पत्थर तो मुसीबत ही है, चक्की का पक्का साथी जोयल पत्थर लाओ और मुसीबत से छुटकारा पाओ। कीमत बढ़ने पर भी आपको मिल रहा है पुरानी कीमत में जोयल पत्थर।
4: जोयल के असली पत्थर के लिए आए ओमरे जी की पुरानी दुकान, ओमरे कॉम्प्लेक्स, दुकान नंबर 4, लिंक रोड, सागर।
1: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
2: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
1: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
2: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
0: श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं भरतलाल विश्वकर्मा की आवाज में ये धुनी भजन।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम में आइए सुनते हैं ये नशा मुक्ति पर आधारित लोकगीत। आवाज है भरतलाल विश्वकर्मा की।
2: करे भोर से उठ उठ के जीने दारू के।

0: अभी आप सुन रहे थे भरत लाल विश्वकर्मा से ये नशा मुक्ति पर आधारित लोकगीत।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
5: ओह लवली, वेल डन।
4: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
5: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स, लकी हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन?
3: RBI कहता है
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: भारत में हो रहो लोट पटा।

अभी आप सुन रहे थे ये लोक शैली पर आधारित लोकगीत। कलाकार थे भरतलाल विश्वकर्मा। श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं ये बेटी बचाओ पर आधारित लोकगीत। कलाकार हैं भरतलाल विश्वकर्मा।

इसी लोकगीत के साथ कार्यक्रम लोकरंग अब समाप्त होता है। इसमें आज के कलाकार थे भरतलाल विश्वकर्मा, ढोलक पर नितेश और बेंजो पर राजाराम विश्वकर्मा। मीडियम वेव और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश। प्रस्तुति है रविंद्र कुमार प्रजापति की।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रविंद्र प्रजापति का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हम कार्यक्रम को शुरू करें इससे पहले हम आपको बता देते हैं इस कार्यक्रम के फोन नंबर। हमारा पहला फोन नंबर है 298029 यानी 298029 और हमारा दूसरा फोन नंबर है 241588 यानी 241588। छतरपुर शहर के बाहर के श्रोताओं के लिए हमारा एसटीडी कोड है 07682। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 11 बजे से 11:30 के मध्य की जाती है। इसी बीच हमारे श्रोता लाइन पर हैं, आइए सुनते हैं इनकी फरमाइश। जी हेलो फरमाइश कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, आपका नाम बताएं।
1: जी सर, मैं रामबाबू मालवी बोल रहा था, कोलार रोड भोपाल से।
0: रामबाबू मालवी जी का फोन है कोलार रोड भोपाल से।
1: जी सर, बहुत दिनों के बाद बात हो रही है सर आपसे।
0: जी हाँ, बहुत दिनों के बाद बात हो रही है, बताएं कौन सा गाना सुनना है आज।
1: सर बहुत दिन हो गए तो आज गाना सुनना चाहेंगे अग्निपथ का। सर
0: अग्निपथ का कौन सा गाना?
1: देवा श्री गणेशा देवा।

0: देवा श्री गणेशा देवा
1: जी जी
0: जी, आपके भोपाल में क्या हाल है मौसम के?
1: मौसम में सर 41-42 पे पहुंच गया है अभी तो। हाँ जी, गर्मी है और वैसे सुबह से हम हवा भी चलती है बहुत तेज और हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है अभी तो।
0: जी जी,
1: एक दो दो दिन छोड़ के ऐसा मौसम चल रहा है। तो वैसे मौसम तो वैसे लगभग छतरपुर में भी ऐसा ही होगा है ना सर?
0: हाँ, यहाँ थोड़ा सा गर्मी से राहत हुई है। बीच बीच में देखिए अभी बारिश और आंधी का दौर रहा
1: जी,
0: तो अभी जो गर्मी जिस तरह से अप्रैल के लास्ट में पड़ रही थी वो वाली गर्मी अभी नहीं है।
1: जी जी, वो तो सर अपने समय समय पे जो मौसम अपना वो जैसा मौसम रहता है वैसा तो रहेगा सर। गर्मी है तो गर्मी रहेगी, फिर बारिश भी आएगी, सर्दी भी आएगी, है ना सर?
0: बिल्कुल, यही तो देखिए मौसम का आनंद है। हर मौसम का अपना जादू है, हर मौसम की अपनी खूबसूरती है। रामबाबू मारवी जी, सुनते हैं आपके फरमाइश का अग्निपथ फिल्म का ये गाना।
1: जी सर, नमस्कार।
0: नमस्कार जी।

0: हेलो
1: जी, हेलो फरमाइश कार्यक्रम
0: जी। नमस्कार।
1: नमस्कार
0: जी, मैं राजू यादव, ग्राम उपरहका, श्रीरामपुर डेरा, सरीला राठ मस्करा, हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश।
1: राजू यादव बोल रहे हैं, सरीला राठ क्षेत्र आपने बताया है
0: जी।
1: जी बताएं राजू जी, कौन सा गाना सुनना है आपको?
0: सैनिक मूवी का, बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली।
1: क्या करते राजू जी आप?
0: कृषक हैं हम, कृषि का कार्य करते सर जी।
1: अच्छा अच्छा, तो कौन सी फसल बढ़िया होती है आपकी तरफ?
0: इस समय तो हमने गेहूं की फसल घर पर आ गई है, बस मूंगफली की तैयारी है
1: जी।
0: खेतों की गहरी जुताई हो चुकी है।
1: आपके क्षेत्र में अरहर भी होती है?
0: अरहर भी होती है जी सर, अरहर।
1: क्योंकि अब अरहर की फसल कई जगह देखने को नहीं मिलती।

0: हमारे क्षेत्र में अरहर तो बहुत पर्याप्त मात्रा में है।
1: कौन कौन से कार्यक्रम सुनते रहते हैं आप?
0: कार्यक्रम तो आकाशवाणी छतरपुर के हेलो रमतुला है, ग्राम सभा है, हेलो फरमाइश है, हेलो फ्रेंड है, और बहुत सारे कार्यक्रम जो आपके प्रस्तुत हैं होते हैं और हम सुनते हैं। ग्राम सभा में हमें खेती किसानी में बताया जाता है, उसका हम इस्तेमाल भी करते हैं, जो जैविक खाद है कहीं कुछ बताते हैं
1: जी।
0: और लोक रंग सुबह जो आता है बहुत अच्छे, अभी गीत एक दिन चल रहे थे दशरथ रजक की आवाज में, बहुत ही सुपर हिट गीत देशभक्ति और नशायुक्त और विवाह गीत।
1: बढ़िया बढ़िया, तो ऐसे ही कार्यक्रमों का आनंद लेते रहे और आपके रेडियो सेट पर पहुँचाते ही प्यारा सा गाना।
0: कुछ मित्रों के नाम लेना सर
1: जी,
0: हमारे मित्र हैं बलवान सिंह यादव हैं, अनूप कुमार राजपूत जी हैं, और हमारी पूनम बहन है कानपुर से।
1: बढ़िया, आप सभी सुने इस प्यारे से गाने को। नमस्कार
0: जी, सर जी प्रणाम।

0: हेलो
1: जी। हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
0: जी सर जी, नमस्ते सर जी।
1: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
0: ग्राम बापुर छितीपुर, ग्राम पंचायत छितीपुर, तहसील करेरा, जिला शिवपुरी। आपका रेडियो मित्र सरनाम सिंह रजक।
1: सरनाम सिंह रजक
0: जी। श्रीमान जी
1: बताएं सरनाम जी, कौन सा गाना सुनना है आपको?
0: सर जी मुझे सुनना है, वो फिल्म का नाम है साजन का घर। गीत के बोले, बाबुल कर दो विदा आज तो प्यार से, जा रही हूँ तेरी में संसार छोड़ के।
1: क्या करते हैं आप?
0: सर जी पंचायत भाव में नौकरी करता हूँ सर जी, पंचायत पद पर।
1: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आकाशवाणी छतरपुर के कार्यक्रम सुनते हैं इसका मतलब आप?
0: बिल्कुल सर जी, पूरे है जी, रमतूला सब सुनता हूँ सर जी के कार्यक्रम आते हैं।
1: बहुत बढ़िया, सुनते हैं आपके फरमाइश का ही गाना।
0: नमस्ते सर जी।
1: नमस्कार जी।

0: जी हेलो, फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्कार सर जी।
0: नमस्कार,
1: मैं सतीश बात कर रहा हूँ फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से।
0: फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से फोन है सतीश जी का।
1: जी बताएं सर जी, एक बात कहना चाहता हूँ, आपके प्रोग्राम मेरी घंटी गई थी 11:15 पे, आपने रिसीव नहीं की, अब वो नंबर 88 बार लगा रहे, वो लगता नहीं है, सुने जाते ही।
0: हाँ, जो आपकी घंटी गई है वो फॉल्स रिंग बोलते हैं उसको, हमारे यहाँ रिंग नहीं आई होगी वो, है ना, वो आपको सुनाई दी होगी लेकिन यहाँ पे रिंग नहीं आई होगी। बताइए सतीश जी, कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: आज मुझे दिलवाले का गाना सुनना जीता था, जिसके लिए गर्मी के मौसम चल रहा है, तो गर्मी के मौसम में जिसे सेवन करना चाहिए, ककड़ी है, खरबूजा है, तरबूज है, इनका सेवन करना चाहिए। जी दोस्तों का नाम जाता हूँ
0: जी,
1: जैसे मेरे गाँव के हैं सुहास है, अनूप है, और उसके बाद आएंगी मेरी चाची आएंगी, उनको नाम क्या है, विद्या भारती आएंगी, और जितने तमाम मेरे गांव सुनने वाले, मेरे गांव सुनते हैं, मेरे बाबा आएंगे तो उनको नाम है, पप्पू हैं, और जो लोग टैंकर वगैरह आएंगे तो काफी लोग सुनते हैं रेडियो, छतरपुर के लोग भी सुनते रहते हैं।
0: रेडियो आपके पास है कि आपके और भी दोस्त यार हैं उनके पास भी रेडियो है?
1: अरे काफी लोगों के पास रेडियो है, तो आपका छतरपुर तो गूंजता रहता है, छतरपुर है वो, और भोपाल भी रैली करते हैं तो वो भी चलता है 11 बजे, फिर उसके बाद आपका लोकल प्रोग्राम आते हैं तो वो भी चलते हैं।
0: सुनवाते हैं सतीश जी आपके फरमाइश का ये गाना।
1: धन्यवाद।
0: नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार सर, मैं चिरमिरी कुरासिया कालदी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: इंद्रभान जी, क्या हाल हैं आपके?
1: ठीक है सर, आकाशवाणी छतरपुर में लगा है सर, और मैं भी ठीक हूँ सर। मौसम बेहाल है यहाँ पर सर, धूप भी तेज है, बादल भी किया है, इसके बाद कम बादल हो धूप होता है, फिर इसके बाद फिर बादल हो जाता है, ऐसा चल रहा है सर।
0: अच्छा, हर क्षेत्र में कुछ न कुछ खान पान में प्रचलन में रहता है गर्मी के मौसम में, तो आपके छत्तीसगढ़ चिरमिरी की तरफ
1: खान पान में तो यही है सर। अभी खान पान के विषय में लोगों से आग्रह करूंगा सर कि खान पान में संतुलित और अच्छा भोजन लें सर। इसमें गर्मी के दिनों में ज्यादातर खीरा, ककड़ी, कलिंदर, ये सब दही माठा जरूर खाएं, तेल वाला पदार्थ ना खाएं सर, और पानी उबाल के पिए, जानवरों को पशुओं को भी उसमें तो पानी और खाना दे, बासी भोजन ना दे, जानवरों को धूप में ना बांधे सर, उनको भी नहलाएं, वहाँ पर साफ सफाई करते रहे और जगह को बदलते रहे, पानी की भी बचत करें सर, क्योंकि पंप मोटर अगर जल जाता है तो पानी नहीं मिल पाता, स्टैक्स भर पा लिए तो ठीक है, और लोग कई 3 कोस 2 कोस 4 कोस तक गरीब लोग आते हैं सर पानी लेने के लिए, तो उनको ज्यादा पानी देना चाहिए सर। इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल, पानी का तो विशेष रूप से बचत करना है, और जहाँ उपयोग है वहीं उपयोग करें, जरूरतमंदों की भी मदद करें अगर संभव हो सके तो। बताइए कौन सा गाना सुनना है?
1: आज मैं सुनूंगा सर, फिल्म का नाम है अपना बना लो, मैं हूँ दीवाना मुझको संभाल लो अपना बना लो, गाय किशोर कुमार, ये जितेन जी का फिल्म का गाना है। सबसे पहले गीत आपको केंद्र निर्देशक साहब को, पूर्व भारत श्रोता को, आकाशवाणी छतरपुर में जुड़े
0: इंद्रभान जी सुनते हैं आपके फरमाइश का है ये गाना।
1: जी सर, फोन शामिल किया सर, धन्यवाद,
0: नमस्कार।

0: नमस्कार
1: जी। नमस्कार,
0: ब्रज किशोर कुशवाहा।
1: ब्रज किशोर कुशवाहा बोल रहे हैं? कहाँ से?
0: ग्राम गोंदन, जिला दतिया, एमपी।
1: अच्छा, गोंदन दतिया से बोल रहे हैं। बताएं ब्रज किशोर जी, पहली बार बात हो रही है आपकी और हमारी?
0: हाँ नहीं, शायद दूसरी बार हो रही।
1: अच्छा, क्या करते हैं आप?
0: पंख भरवे को काम पर, मोटर पंख भरवे को।
1: बढ़िया बढ़िया, तो इसकी पढ़ाई की थी आपने कहीं या ट्रेनिंग ली थी?
0: नहीं जी, अपने दोस्त रहते वो सीखो तो अपन भरवो।
1: अच्छा, बढ़िया, आपने मतलब ट्रेनिंग लेके अपनी बढ़िया सीख ली अपने मित्र की मदद से। वो रेडियो आपकी दुकान में चलते रहता है?
0: हाँ, रेडियो चलता रहता है, 24 घंटे चलता है, मतलब 11 बजे तक तो चलता है रात में।
1: क्या बात है। तो कौन सा गाना सुनना है आज?
0: आज फिल्म सुनने तो पारस को, तेरे होंठों के दो फूल प्यारे प्यारे।
1: तेरे होंठों के दो फूल प्यारे प्यारे।
0: हाँ
1: बढ़िया बढ़िया, सुनवाते हैं आपके फरमाइश का ये गाना। आप सुने और आपके मित्र सुने और आपके जो ग्राहक हैं आपकी दुकान पर बैठे हैं वो भी सुने।
0: हाँ
1: नमस्कार,
0: धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो सर जी, नमस्ते।
0: जी, नमस्कार। हेलो प्रभाई कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी छतरपुर।
0: जी हाँ, आकाशवाणी छतरपुर में फोन किया है, कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हो रही है। हेलो फरमाइश की।
1: आप कौन कौन सर जी बोल रहे हैं?
0: रविंद्र प्रजापति।
1: मैं हटा नगर परिषद से दिनेश कुरानी बोल रहा था।
0: दिनेश कुरानी
1: जी सर, जनवरी में फोन लगा था सर हमारा।
0: जी जी जी, बताए दिनेश जी, कौन सा गाना सुनना है?
1: वो चलना था सर, साजन चले ससुराल का गाना।
0: साजन चले ससुराल का कौन सा गाना?
1: कोई सा भी सुनवा देना सर।
0: कोई भी गाना सुनवा दे इसका। क्या करते हैं दिनेश जी आप?
1: ये पंप ऑपरेटर के पद पे हूँ सर, हटा नगर परिषद।
0: पंप ऑपरेटर
1: जी,
0: पंप चलाने का आपका काम रहता है
1: जी सर,
0: तो पानी से जुड़े हुए काम है आपका, तो कैसी समस्या तो नहीं रहती गर्मियों में वहाँ पे?
1: जल ही जीवन है सर, नहीं कोई समस्या नहीं रहती सर जी वहाँ पे।
0: अच्छा, आपके क्षेत्र में मतलब कितनी गहराई पे पानी आ जाता है?
1: यहाँ पे तो सर जी जमीन 500-600 से ज्यादा लगता सर जी। सर हमारे वहाँ पे प्लाटिंग पे तो कम मात्रा में जल्दी पानी आ जाता है।
0: मतलब 500-600 फीट मतलब जाना पड़ेगा तब पानी मिलेगा,
1: जब आएगा सर।
0: तो ये तो बहुत गंभीर समस्या है आपकी तरफ?
1: नहीं सर, वो वहाँ नीला पत्थर निकलता जमीन में सर, वो तो किस्मत है, भाग गया भी तो निकल आया तो ठीक है। अभी एक बोर तो सर हमारा ऐसा है कि 12 महीना अभी मूंग और उड़द लगी है।

0: भर चुकी है सर, लेकिन पानी की समस्या नहीं है सर।
1: हाँ सही बात है, कई जगह पानी अच्छा मिल जाता है,
0: पड़ जाए लेकिन हमारा बोर टूटता नहीं है, 12 महीना 100 पानी देता है।
1: जी सर। दिनेश जी आकाशवाणी छतरपुर को सुनते रहते हैं इन कामों के साथ में, है ना?
0: जी सर, आपका ये कार्यक्रम सुनते रहते
1: हैं। जी जी जी जी, ऐसे ही जुड़े रहें, लगाते रहें फोन, बातचीत होती रहेगी। अभी सुनवाते हैं आपके फरमाइश का ये गाना।
0: ये कब सुनाया जाएगा सर?
1: ये रविवार को सुबह 9:30 से 10:00 9 बजे नहीं,
0: 9:30 तक
1: आता। हाँ 9:30 से 10:30 सुनिएगा इसको, न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर या फिर अपने रेडियो सेट पर।
0: जी सर, नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: जी हेलो फॉरमेज कार्यक्रम, मैं विनोद कुमार रॉक स्टार अजनर महुआ बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ सर। नमस्कार।
1: विनोद कुमार बोल रहे हैं अजनर से?
0: जी
1: बताइए विनोद जी, क्या हाल है, क्या करते हैं आप?
0: बस बढ़िया है सर।
1: जी बढ़िया, क्या करते हैं आप?
0: सिलाई करते हैं सर।
1: सिलाई का काम है और रेडियो सुनते हैं?
0: हाँ सर बिल्कुल सुनते हैं।
1: बढ़िया बढ़िया, कौन से कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं?
0: सर सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, खासकर हेलो हर वॉइस तो सबसे अच्छे लगता है।
1: बहुत बढ़िया, कौन सा गाना सुनवा दें आज?
0: गाना आज सुनवा दिए, लता जी की आवाज में है।
1: हाँ,
0: तुम्हें देखती हूँ तो लगता है ऐसे जैसे युगों से तुम्हें जानती हूँ।
1: क्या बात है, पुराने गाने बहुत अच्छे लगते हैं आपको।
0: हाँ जी
1: विनोद जी, सुनवाते हैं आपके फरमाइश का ये गाना। नमस्कार।
0: धन्यवाद सर। नमस्कार।

0: जी हेलो फरमाइस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, आपका नाम बताएं।
1: जी नमस्कार सर जी, मैं सुरेश कुमार सैनी ग्राम पोस्ट अजमेर जिला महोबा से बात कर रहा हूँ सर।
0: जी जी सुरेश जी, क्या हाल है आपके?
1: बस एकदम अच्छे सर जी, और इस समय गैस लेने के लिए जा रहे थे हम गाड़ी से, तो टाइम चल रहा था अपना रिकॉर्डिंग का, तो मैंने ट्राई किया तो लग गया फोन, तो आपसे बात होने लगी तो मैंने गाड़ी को

0: करके बात की।
1: कहाँ जाना पड़ता है आपको?
0: सर यही पास में ही 1 किलोमीटर दूरी पर है हमारे गांव से।
1: अच्छा, एजेंसी आपके अजनर में ही है?
0: जी जी सर
1: जी। तो आसानी से सिलेंडर मिल जाता है?
0: जी मिल जाता है, आसानी से तो कैन नहीं मिल पाता क्योंकि अब तो 45 दिन का टारगेट कर दिया है।
1: हाँ, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वाले जो सिलेंडर है उसमें 45 दिन का है।
0: जी जी सर।
1: ठीक है, अपनी समयावधि जैसी पूरी हो जाए तो अपना सिलेंडर बुक करा के आराम से लीजिए।
0: जी जी।
1: कौन सा गाना सुनना है आज?
0: आज आप सनम फिल्म का सुनवा दीजिए।
1: कौन सा सनम फिल्म का गाना?
0: ये सर सभी गीत बहुत अच्छे हैं। सनम टाइटल सॉन्ग है इसका।
1: सनम फिल्म का टाइटल सॉन्ग?
0: हाँ टाइटल।
1: ठीक है, ये सनम कौन सी, पुरानी वाली है 90 के दशक वाली है?
0: 90 के दशक की है सर।
1: ठीक है सुरेश जी, सुनवाते हैं आपके फरमाइश का ये गाना।
0: ओके सर, नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ सर
0: जी, आज के कार्यक्रम के हमारे अंतिम कॉलर हैं। कार्यक्रम है हेलो फरमाइश, नाम बताएं।
1: उत्तम सिंह बघेल, ग्राम राजगढ़, तहसील करैरा, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ सर।
0: उत्तम सिंह बघेल जी का फोन है, बताएं उत्तम जी क्या करते हैं आप?
1: सर खेती किसानी करते हैं और सर अब बकरी पालन करते हैं।
0: बकरी पालन करते हैं, खेती किसानी करते हैं ना?
1: हाँ।
0: बढ़िया बढ़िया, तो कितनी बकरियाँ पाल रखी हैं आपने?
1: सर है 10-20 है।
0: 10-20 है। और खेती में क्या होता है आपकी तरफ?
1: जो अब बरसात होगी तो मूंगफली बोएंगे और फिर गेहूँ देते हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा। और आकाशवाणी छतरपुर आपके यहाँ साफ सुनाई देता है राजगढ़?
1: सर इतना बढ़िया, सब पूरे चैनल जो भी वो तो मोबाइल पे आता है।
0: हाँ, ऐप के थ्रू सुनते हैं ना?
1: हाँ।
0: बहुत बढ़िया, तो कौन से कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं आपको?
1: सर हेलो फरमाइश, जो लोकगीत वाले लगते हैं अच्छे और सब कार्यक्रम सुनते हैं सर, किसान वाणी।
0: तो आपके यहाँ बुंदेली वाले कार्यक्रम पसंद किए जाते हैं?
1: हाँ सर।
0: समझ जाते हैं बुंदेली?
1: हाँ, जे लोक रंजन है, रमतुला है, जे कार्यक्रम सब सुनते हैं सर।
0: बढ़िया बढ़िया, आज कौन सा गाना सुनवा दें आज आपको?
1: सर साजन फिल्म का सुना दो।
0: कौन सा गाना?
1: बहुत प्यार करते हैं तुम।
0: बहुत प्यार करते हैं तुमको, सुनो।
1: हाँ।
0: बढ़िया, सुनते हैं आपके फरमाइश का ही गाना।
1: ठीक है,
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश। प्रस्तुति थी रविंद्र कुमार प्रजापति की। मीडियम वेव और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है पत्रोत्तर का साप्ताहिक कार्यक्रम भाव दिए। सहयोग है राजेंद्र कुमार अहिरवार का और प्रस्तुति है रविंद्र कुमार प्रजापति की।

0: कार्यक्रम बहुत ही सुनने वाले सभी श्रोताओं को और राजन जी आपको मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
1: हमारे सभी श्रोताओं को और आदरणीय सर आपको बहुत बहुत नमस्कार।
0: कार्यक्रम बहुत ही है और इसमें हमारे श्रोता पत्र भेजते हैं, अपने जिज्ञासाएं और समीक्षाएं, सुझाव ये सब लिखकर भेजते हैं और कार्यक्रम प्रत्येक रविवार को आप सुनते हैं। तो हमारे राजन जी बताएंगे इस कार्यक्रम में जिनको शामिल होना है किस ईमेल पर पत्र भेजना है या डाक से पत्र भेजना है।
1: जी, हमारे श्रोता निश्चित रूप से जुड़े हुए हैं, सभी को मालूम है, फिर भी हम बता दें, डाक का पता है भवदीय कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी छतरपुर मध्य प्रदेश पिन 471001। और श्रोताओं के लिए आकाशवाणी छतरपुर के लिए भवदीय कार्यक्रम का ईमेल है bhavdiyachhatarpur@gmail.com bhavdiyachhatarpur@gmail.com। और सर अब शुरू करते हैं कार्यक्रम का सिलसिला।
0: बिल्कुल,
1: उठाते हैं हमारे किन श्रोताओं ने ये पहला मेल हमें लिखा है। ये पहला मेल है ग्राम बमना सरीला जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा और साधु बाबा। आगे आप लिखते हैं 21 अप्रैल 2026 को वंदना चिंतन लोक रंग और एक ही गीतकार कार्यक्रम जो कि गीतकार फैज अनवर जी पर केंद्रित था, इनके विषय में बहुत सारी जानकारी दी गई। कार्यक्रम की सफल प्रस्तुति के लिए डॉक्टर प्रणति चतुर्वेदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद पहुंचे। इसी दिन ग्राम सभा में एक वार्ता सुनी, दैनिक जीवन में विभिन्न पहलुओं पर आधारित थी। वार्ताकार बिंदादीन विरह से रविन्द्र सर जी की बातचीत बहुत अच्छी लगी, उपयोगी साबित हुई। आकाशवाणी छतरपुर का हार्दिक आभार। आगे आप लिखते हैं 22 अप्रैल को लोकरंग कार्यक्रम में चंद्रभूषण पाठक जी द्वारा लोकगीत सुनवाए गए जिसे सुनकर मन प्रफुल्लित हो गया। इसी दिन एक ही फिल्म से में फिल्म मुस्कान के गीत और फिल्म से संबंधित बहुत सारी जानकारी दी गई। इसी दिन का आपकी पसंद राजेंद्र अहिरवार जी द्वारा पेश किया गया जिसमें अधिक से अधिक श्रोताओं के पत्र और ईमेल पढ़े गए, उनको बहुत बहुत बधाई हमारी ओर से पहुंचे। आगे आप लिखते हैं 23 अप्रैल 2026 का लोकरंग और आपकी पसंद अच्छा लगा, आदरणीय एम आलम सर जी को हार्दिक बधाई हो। 25 अप्रैल 2026 को आपकी पसंद में आदरणीय समीर गोस्वामी सर जी द्वारा एक नई पहल की गई जिससे ये मालूम हो जाता है कि कौन कौन श्रोता मित्र लाइव कार्यक्रम

0: कार्यक्रम सुन रहे हैं। सर, एक फिल्म का गीत बताते हैं और कहते हैं इस गीत के लिए फरमाइश भेजें। वास्तव में काफी श्रोता ऐसे हैं जो कि मेल कर देते हैं, कार्यक्रम सुनते नहीं हैं, जिससे जो श्रोता कार्यक्रम सुनते हैं वो कार्यक्रम में शामिल होने से वंचित रह जाते हैं। समीर सर जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। इसी दिन ग्राम सभा में श्रोताओं का लोकप्रिय कार्यक्रम हेलो लोक रंजन सुना, जिसे सुनकर मन बहुत निराश हो गया। दिनेश मिश्रा जी ने इस कार्यक्रम को रमतूला बना दिया, ये कार्यक्रम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। 2 मई 2026 को हेलो लोक रंजन मैथिली शरण तिवारी जी द्वारा सुना, जिसमें तिवारी जी द्वारा जनगणना के ऊपर सभी श्रोताओं को जागरूक किया और बेहतरीन अंदाज में सभी श्रोताओं से बात हुई। कार्यक्रम की शानदार पेशकश के लिए आदरणीय तिवारी जी को बहुत बहुत साधुवाद। और वंदना खेती किसानी, रामचरितमानस, चिंतन, बुंदेली सुगंध, आपकी पसंद और संग्रहालय से मैं अनंत आनंद की सभी कड़ियों का आनंद लिया। रूपक महाराजा छत्रसाल और लोक देवता कारसदेव बहुत अच्छा लग रहा है। एक बात और है सर जी, रेडियो पर लाइन बहुत कटती है, जैसे कि आज यानी कि 3 मई 2026 को जैसे ही चिंतन शुरू हुआ कुछ क्षणों बाद लाइन कट गई, इससे बहुत कष्ट होता है। कृपया सुधार करने की कृपा करें। मिलते हैं अगले अंक में, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे राम शरण विश्वकर्मा जी अपने पत्र की समाप्ति करते हैं। सर,
1: आज के कार्यक्रम का ये पहला पत्र था हमारे राम शरण विश्वकर्मा जी का। आपने 21 अप्रैल से लेकर 3 मई तक जिक्र किया है इस पत्र में, और वंदना से लेकर राती तक के मनभावन कार्यक्रम, लगभग सभी कार्यक्रम आप सुनते हैं
0: जी।
1: गीतकार फैज अनवर से संबंधित एक कार्यक्रम आपने सुना है, चंद्रभूषण पाठक जी से उनके लोकगीत सुने हैं, और समीर गोस्वामी जी की नई पहल जो उन्होंने शुरुआत की थी कि जो हमें लाइव मैसेज भेजेंगे उन्हीं का शामिल करेंगे, और जो हम गाना बता रहे हैं उसी गाने का लिखा हुआ होना चाहिए। तो ये आपको देखिए उनकी पहल पसंद आई है। मैथिली शरण तिवारी जी द्वारा जो कार्यक्रम प्रस्तुत करने का अंदाज है वो आपने सराहा है, बिल्कुल उत्साहवर्धन होता है हमारे कंपियर्स का। साथ ही हेलो लोक रंजन कार्यक्रम में जो आपने अपनी राय लिखी है, जो सुझाव लिखा है, उस पर आप ध्यान देंगे, और बार बार लाइट कटने की जो समस्या आपने लिखी है वो हमने तकनीकी अनुभाग तक पहुंचा दी है, और उम्मीद है कि जो क्वालिटी है वो आपको और बेहतर सुनने को मिलेगी और निर्बाध प्रसारण सुनने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस पत्र के लिए
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद राम शरण जी। और सर, अगला मेल हमें प्राप्त हुआ है, आप लिखते हैं, भव्य कार्यक्रम पेश करने वाले रविन्द्र सर और राजेंद्र सर को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप लिखते हैं, हम जिला हमीरपुर ग्राम सिलोलर उत्तर प्रदेश से आपको ईमेल पर पत्र लिख रहे हैं। हम आकाशवाणी छतरपुर के बहुत ही पुराने श्रोता हैं। जब हम कक्षा 4 या 5 में पढ़ते थे तब से आकाशवाणी छतरपुर को सुनते आ रहे हैं। आकाशवाणी छतरपुर हमारे बचपन का फेवरेट रेडियो स्टेशन है। आकाशवाणी छतरपुर को सुनकर हमारी बात हम तक पहुंच जाती है। और सर, आगे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इनका अधूरा पत्र मिला है और नाम भी हमें ये बिल्कुल भी इसमें नजर नहीं आ रहा है।
1: ये पत्र देखिए हमारे तक अधूरा पहुंचा है, सिर्फ पता लिखा हुआ है, नाम नहीं है। अगली बार जो पत्र भेजेंगे विस्तार पूर्वक, या तो उसका टेक्स्ट मैसेज बना के उसको अटैच कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, और नहीं तो फिर हाथ से लिखकर फोटो क्लिक करके हम तक भेजिएगा तो हम तक पहुंच ही जाएगा। इस पत्र में आपने जिक्र किया है कि हम जब कक्षा 4-5 में पढ़ते थे तब से आकाशवाणी छतरपुर से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, आपकी यादें हमेशा आकाशवाणी के साथ हैं, और पुरानी यादें को संजोकर जो आप कार्यक्रम आज भी सुनते हैं तो ये उपलब्धि है हमारे छतरपुर के लिए कि आप आज भी जुड़े हैं। और आकाशवाणी के देखिए राजन जी 90 वर्ष भी हो रहे हैं, तो इस उपलक्ष्य में भी हर जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, लोग अपनी पुरानी यादें साझा कर रहे हैं रेडियो की।
0: बिल्कुल,
1: तो उम्मीद है कि जो पत्र है वो पूरा प्राप्त होगा अगली बार। बहुत बहुत धन्यवाद इस पत्र के लिए
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इन मित्र को, और अपना नाम जरूर लिखेंगे ताकि हम इनका नाम पढ़ें। और सर, अगला ईमेल हमें प्राप्त हुआ है, लिख भेजा है हमारे श्रोता हैं संतोष नामदेव, अभय नामदेव, अनिल, अजित, अनीता, ज्योति, रंजना, संजना और भारती नामदेव, साथ में हैं पूर्वी, रूही, शक्ति, भक्ति, अनु, अनन्या, आदर्श, दीपक और लव नामदेव। लिखते हैं, मेन मार्केट ग्राम पोस्ट सोरई, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश से। आगे आप लिखते हैं, आदरणीय श्री रविंद्र सर और राजेंद्र सर जी को सप्रेम नमस्कार। आगे आपने लिखा है, आगे 2 मई 2026 दिन शनिवार का सुबह का फिल्म संगीत में बजाए गए गीत अति सुंदर थे, और दिन की इतनी अच्छी शुरुआत हो तो ये तो आकाशवाणी छतरपुर के उद्घोषक की प्रस्तुति का कमाल रहता है। इसी दिन जब आप गुनगुना उठी में हमारे राजेंद्र जी की प्रस्तुति में शानदार पत्रों की कहानी पढ़ना बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आदरणीय श्री राकेश खरे जी की प्रस्तुति रहती थी। आज कार्यक्रम सुनकर की प्रस्तुति याद आ गई। इसी दिन ग्राम सभा में हेलो लोकरंजन की प्रस्तुति भी शानदार लगी। मित्रों की बातें और पसंद के लोकगीत शानदार रहे।

0: आगे 3 मई 2026 दिन रविवार की प्रस्तुति में वंदना कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत ही प्यारे प्यारे भजन सुनने को मिले। दिन की शुरुआत मंगलमय हो गई। इसी दिन हेलो फरमाइश राजेंद्र जी की प्रस्तुति में सुना, शानदार बातचीत और गीतों के चयन काफी लाजवाब लगे। इसी दिन का राजेंद्र जी और रविंद्र सर जी की प्रस्तुति में भवदी सुना, पत्र कम होने से थोड़ा फीका लगा, लेकिन दोनों की प्रस्तुति ने मन फीका नहीं रहने दिया। इसी दिन का बच्चों का कार्यक्रम बाल मेला और ग्राम सभा की प्रस्तुति भी लाजवाब रही। एक अनुरोध और है, पहले SMS पर शनिवार को एक कार्यक्रम SMS फ्रेंड्स होता था, वो दोबारा शुरू करने की कृपा करें। और हेलो लोक रंजन का प्रसारण उसी समय हो, यानी शनिवार को दोपहर 12:30 बजे पर, तो ग्राम सभा में 30 मिनट पर और वार्ताएं लोकगीत अलग से सुनने को मिल सकते हैं। शेष अगले पत्र में। इसी के साथ ही अपने पत्र की समाप्ति करते हैं हमारे संतोष नामदेव जी।
1: हमारे संतोष नामदेव जी का ये पत्र है जिसमें आपने 2 और 3 मई को प्रसारित कार्यक्रमों का जिक्र किया है। विशेष रूप से आपने जब आप गुनगुना उठे हेलो लोक रंजन, हेलो फरमाइश, बाल मेला, ग्राम सभा जैसे कार्यक्रमों को आपने पसंद किया है और गीतों के चयन के लिए उद्घोषकों को देखिए आपने बधाई भी दी है। विशेष रूप से आपने देखिए हमारे आदरणीय राकेश खरे जी की प्रस्तुति को याद दिलाया है, उस पर आपने टिप्पणी जो की है वो अत्यंत भावपूर्ण है और जो श्रोताओं का जो अपनापन है वही देखिए आकाशवाणी की पूंजी होती है। तो इस तरह से कार्यक्रम आप आज भी सुनते हैं, उसी लगाव के साथ सुनते हैं। SMS फ्रेंड्स को पुनः शुरू करने की आपने बात कही है और हेलो लोक रंजन के प्रसारण समय में बदलाव की भी आपने बात कही है, तो हमने सुझाव आपका नोट कर लिया है और जब भी संभव होगा तो ये कार्यक्रम आपको यथास्थान सुनने को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस पत्र के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद संतोष नामदेव जी। और सर अगला ईमेल हमें प्राप्त हुआ है, लिख भेजा है अस्पताल रोड केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से श्रीमती वंदना गौहर और चंद्रेश गौहर जी ने। आप लिखते हैं, महोदय जी गीत संगीत में जादू है जो दिल की अनकही बातों को भी आवाज दे देता है। ये थके हुए मन को सुकून देता है और खुशियों को भी और भी रंगीन बना देता है। कभी ये योड़ों की गलियों में ले जाता है तो कभी सपनों को पंख लगा देता है। सच ही तो है, जब शब्द साथ छोड़ देते हैं तब गीत संगीत ही दिल की भाषा बन जाता है। आपके केंद्र से प्रसारित गीत संगीत का कार्यक्रम में कभी भी सुनना नहीं भूलता। भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, सदाबहार गीत जैसे सभी कार्यक्रम मेरे पसंदीदा कार्यक्रम हैं, जिन्हें सुनकर दिन की शुरुआत बेहद ही खुशनुमा बन जाती है। आपके केंद्र से प्रसारित लगभग सभी कार्यक्रम मेरे पसंदीदा कार्यक्रम हैं, जैसे चिंतन, मानस गान, हिंदी महक, बुंदेली सुगंध, लोकधारा, लोक संगीत सहित सभी कार्यक्रम मैं नियमित रूप से सुनता हूँ। आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम ग्राम सभा का मैं नियमित श्रोता हूँ। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें समय समय पर जनउपयोगी, समसामयिक और महत्वपूर्ण वार्ताएं और जानकारियां मिलती रहती हैं, जिसे अपनाकर हमें बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। इस कार्यक्रम के लिए मेरा एक सुझाव ये है कि अभी इस कार्यक्रम में किसान भाइयों एवं खेती किसानी से जुड़े हुए लोगों के लिए सीधे फोन इन सवाल जानने के लिए कोई भी सजीव फोन इन कार्यक्रम नहीं है, जिससे किसान सीधे आपको फोन लगाकर अपनी समस्या का समाधान पा सकें। आपसे मेरा निवेदन है कि माह में एक सजीव फोन इन कार्यक्रम आरंभ करने की कृपा करें, जिससे किसान भाई अपनी खेती किसानी की समस्याओं का समाधान कृषि विशेषज्ञों से प्राप्त करके उन्नत खेती कर लाभ कमा सकें। आशा है आप मेरे इस निवेदन पर जरूर ही ध्यान देंगे। शेष कार्यक्रमों की समीक्षा अगले पत्र में, तब तक के लिए आप हमारा नमस्कार स्वीकार करें।
1: बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय चंद्रेश गौहर जी। आपने जो आत्मीय पत्र यूं कहेंगे, आपका जो भावपूर्ण, सुझावपूर्ण पत्र और स्नेहपूर्ण जो आपका पत्र प्राप्त हो जाता है, आपने देखिए गीत संगीत की भावनात्मक शक्ति को जिन सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है वो वास्तव में हृदय स्पर्शी है, क्योंकि संगीत मन को ऊर्जा, शांति और आनंद तो देता ही है, साथ में देखिए मनोरंजन तो करता ही है। यह जानकर खुशी होती है कि आप हमारे यहाँ के सभी कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं, सुनते हैं, गुनते हैं और उनसे जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो आप प्राप्त करते हैं। विशेष रूप से आपने देखिए कार्यक्रम ग्राम सभा में एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया है कि किसानों के लिए कृषि संबंधी कोई लाइव फोन इन कार्यक्रम, उनकी समस्याओं से संबंधित अगर ये कार्यक्रम संभव हो सके तो शुरू कीजिएगा। बिल्कुल आपका सुझाव महमूल्य है और इसको आपने नोट कर लिया है, संभव होगा तो इसको जरूर आप सुनेंगे इस तरह का कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद कि समय समय पर ऐसे ही आपके बहुमूल्य सुझाव हम तक प्राप्त होते रहेंगे, समीक्षा प्राप्त होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस पत्र के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चंद्रेश गौहर जी को। और सर अगला मेल हमें प्राप्त हुए हैं भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता
1: जी।
0: नमस्कार के साथ आप लिखते हैं, जिसके पास सच्चे और निश्चल मित्र होते हैं उसे जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं हो पाता है। हमारा सच्चा और प्यारा मित्र आकाशवाणी परिवार है, इसका साथ हमारे ज्ञान कोश में निरंतर वृद्धि और स्वस्थ मनोरंजन करना होता है।

धारावाहिक महाराज छत्रसाल का भाग 11वां रविवार 3 मई को सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। कवियों के आश्रयदाता महाराज छत्रसाल के दरबारी कवि लाल कवि द्वारा लिखा गया छत्र प्रकाश ग्रंथ, जो कि काव्य एवं इतिहास की दृष्टि से एक श्रेष्ठ रचना है, इसमें वीर रस का प्रयोग करते हुए लाल कवि जी ने महाराज छत्रसाल के वीर एवं साहसी व्यक्तित्व का वर्णन, बुंदेलों की उत्पत्ति और कई योद्धाओं के सजीव वर्णन, महाराज छत्रसाल और उनके पुत्र जगत राय की विजय गाथाओं की रोमांचित करने वाली विशेष युद्ध वर्णन की जानकारी हासिल की। लाल कवि जी स्वयं तलवार लेकर वीरता पूर्वक युद्ध के मैदान में जाया करते थे, तभी तो उनके द्वारा लिखे युद्ध वृतांत इतने प्रभावी लगते हैं। लाल कवि ने अपनी अन्य रचनाओं में वर्षा ऋतु का भी मनमोहक वर्णन किया है। इस अंक के अंतिम सोपान में इसकी वानगी भी पेश की गई, जिसे सुनकर मन आत्मविभोर हो गया। 4 मई को रेडियो धारावाहिक महाराज छत्रसाल के भाग 12 के आरंभ में छत्रसाल महाबली करियो सब भली भली इस लोकगीत में प्रश्न उत्तर वाली शैली में महाराज छत्रसाल के द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों का मखान बहुत ही सहज ढंग से किया गया। कोना बसाए नगर छतरपुर, कोना ने भूषण की पालकी उठाई, छत्ता बसाए नगर छतरपुर, छत्ता ने भूषण की पालकी उठाई, सुनकर मन गदगद हो गया। गुरु महामति प्राणनाथ की सलाह पर महाराज छत्रसाल ने अपना राज तिलक करवाना स्वीकार किया। गुरु प्राणनाथ जी ने राजनीति के नियमानुसार उनका राज तिलक किया। भाग 12 की एक और खासियत बीजक की कूट रचना का वाचन रहा। पन्ना में शरद पूर्णिमा के दिन महारास का भव्य आयोजन होता है। रविन्द्र जैन जी की मधुर और कर्णप्रिय आवाज में यही महारास है। भजन नुमा गीत सुनकर मन प्रफुल्लित हो गया। बुधवार 6 मई को धारावाहिक के भाग 13 में महाराज छत्रसाल के विराट व्यक्तित्व के कुछ और गुणों को करीब से जान सके, जब सुंदरी नामक युवती, जो अपने नाम के ही अनुसार अद्वितीय सुंदरी थी, महाराज छत्रसाल की वीरता पर मुग्ध होकर उनसे कहती है कि आप मेरा वरण करो ताकि मैं आप जैसे वीर पुत्र की मां बन सकूं। संयमी महाराज छत्रसाल ने सुंदरी से कहा, आप मुझे ही अपना पुत्र स्वीकार कर लें, आज से आप मेरी बलुआजू कहलाएंगी और उन्हें जीवन पर्यंत माँ का सम्मान देते रहे। गढ़ा कोटा के किले पर विजय प्राप्त करने के बाद जब महाराज के कुछ सैनिकों ने किले में मौजूद पराजित पक्ष की मुस्लिम महिलाओं को उनकी सहमति के बिना बंधक बना लिया, और जब महाराज छत्रसाल को इस घटना की जानकारी मिली तो वे तत्काल किले में पहुंचे और मुस्लिम महिलाओं से अपने सैनिकों के इस घृणित कार्य के लिए स्वयं क्षमा मांगी और घटना में शामिल सभी सैनिकों से मुस्लिम महिलाओं के सामने नतमस्तक होकर माफी मंगवाई। उसके तुरंत बाद अपनी भवानी तलवार से दोषी सैनिकों के सर कलम कर दिए। मुस्लिम महिलाओं के मान सम्मान के संदर्भ में हमें अपने बचपन में पढ़ी छत्रपति महाराज शिवाजी के जीवन से जुड़ी उस घटना की याद जीवंत हो गई, जब शिवाजी के सैनिकों ने कल्याण दुर्ग पर विजय प्राप्त करके वहां के सूबेदार की बहू गौहर बानो, जो कि अप्रतिम सुंदरी थी, को शिवाजी के सामने पेश किया तो शिवाजी ने अपनी गर्दन नीचे करके उनसे कहा कि गलती से मेरे सैनिक आपको यहां ले आए हैं, इस बात के लिए आप हमें क्षमा कर दीजिए, और उन्हें माता तुल्य सम्मान देकर उसकी ससुराल भेज दिया था। ऐसे उच्च नैतिक मूल्यों के धनी व्यक्तित्वों के सम्मुख हमारा मस्तक उनके चरणों में अनायास ही झुक जाता है। बहरहाल रेडियो धारावाहिक की पूरी टीम और आकाशवाणी छतरपुर के हम आभारी हैं, जो इतनी लाजवाब और बेमिसाल प्रस्तुति हम श्रोताओं के लिए पेश कर रहे हैं। आकाशवाणी छतरपुर के बुंदेली लोकगीत कलाकारों में देशराज पटेरिया, निरंजन शर्मा के, खान तार बाबू, घनश्याम दास गुप्ता, अनीसा बेगम, आजाद रावत, उर्मिला पांडे और लक्ष्मी त्रिपाठी जी के गाये लोकगीत सुनकर हमारी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। 30 अप्रैल को लोकधारा में अनीसा बेगम के गाये बन्ना बन्नी सुनकर शादी का माहौल सब बन गया। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप हमारी पसंद के पुराने लोकगीत कलाकारों के गाए गए लोकगीतों को अपने आर्काइव से निकालकर जरूर सुनवा दीजिए। अग्रिम धन्यवाद। वैसे हम नवोदित कलाकारों को भी सुनना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए 3 मई को लोक रंग कार्यक्रम में मुस्कान प्रजापति के गाये लोक भजन सुन के शबरी की करुण पुकार, प्रभु जी मोरी डगरिया आ जाइयो, सिया ने लवकुश से सुत पाए हंस हंस गोद खिलाए, एक विवाहगारी बिटिया को ब्याह करें बाप और मताई, आज कर दही पर आई, लोकगीत हमारे मन को खूब नोने लगे। बहन मुस्कान प्रजापति जी का धन्यवाद। आपसे
आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप फिल्मी गीतों के फरमाइशी कार्यक्रम जिसमें आप ईमेल भी शामिल करते हैं, हम प्रत्येक दिन जब भी आपके पसंद कार्यक्रम पेश किया जाता है उसमें ईमेल के माध्यम से भाग लेते हैं, अपना ईमेल आप तक भेजते हैं, लेकिन आपकी कंपेयर हमारे मेल को नजरअंदाज कर देते हैं। केवल सुपरफास्ट तरीके से मेल शामिल करने वाले कंपेयर राजेंद्र अहरवार जी इसका अपवाद है, क्योंकि जब भी वे कार्यक्रम पेश करते हैं बहुतायत ईमेल शामिल होते हैं, जबकि इस कार्यक्रम में प्रत्येक दिन 15

0: से 20 श्रोताओं को स्थायी रूप से शामिल किया जाता है। कुछ श्रोताओं को आप प्रतिदिन स्थान देते हैं और हम जैसे श्रोता जो आपको रोज समय रहते मेल भेजते हैं, सप्ताह में बामुश्किल एक मेल ही शामिल किया जाता है। आपको इस संदर्भ में और अधिक पारदर्शी होना चाहिए और समय रहते जो ईमेल पहुंचे उनको शामिल करना चाहिए। हमने अपनी मन की जो बात काफी दिनों से बताना चाह रहे थे आज बता दी है। निर्णय आपको लेना है। धन्यवाद। और इसी लंबे पत्र के साथ हमारे कृष्ण कुमार गुप्ता जी अपने पत्र की समाप्ति करते हैं। सर,
1: हमारे भटीपुरा महोबा से पत्र भेजते हैं कृष्ण कुमार गुप्ता जी। आपका देखिए अत्यंत विचारपूर्ण कहें, विस्तृत कहें, भावना से ओतप्रोत कहें, ये पत्र आपका प्राप्त होता है और हर पत्र ही आपका ऐसे ही हमें समीक्षा से भरा हुआ मिलता है। रेडियो धारावाहिक महाराज छत्रसाल के विभिन्न अंगों को आपने देखे जिस गहराई, गंभीरता और आत्मीयता से सुना और अपने शब्दों में जिस तरह से आपने विश्लेषण करके हम तक देखिए पत्र पहुंचाया, वह न केवल देखिए आपकी सजग दृष्टि को दर्शाता है बल्कि बुंदेलखंड की गौरवशाली इतिहास संस्कृति के प्रति जो आपका अनुराग लगाव है वो भी प्रकट करता है। आपने भाग 11-12

0: रहते आज बता दी है, निर्णय आपको लेना है। धन्यवाद। और इसी लंबे पत्र के साथ हमारे कृष्ण कुमार गुप्ता जी अपने पत्र की समाप्ति करते हैं। सर,
1: हमारे भटीपुरा महोबा से पत्र भेजते हैं कृष्ण कुमार गुप्ता जी। आपका देखिए अत्यंत विचारपूर्ण कहें, विस्तृत कहें, भावना से ओतप्रोत कहें, ये पत्र आपका प्राप्त होता है और हर पत्र ही आपका ऐसी हमें समीक्षा से भरा हुआ मिलता है। रेडियो धारावाहिक महाराजा छत्रसाल के विभिन्न अंगों को आपने देखे, जिस गहराई, गंभीरता और आत्मीयता से सुना और अपने शब्दों में जिस तरह से आपने विश्लेषण करके हम तक देखिए पत्र पहुंचाया है, वह न केवल देखिए आपकी सजग दृष्टि को दर्शाता है बल्कि बुंदेलखंड की गौरवशाली इतिहास संस्कृति के प्रति जो आपका अनुराग लगाव है वो भी प्रकट करता है। आपने भाग 11, 12 और 13 के प्रसंगों में लाल कवि की रचनात्मकता, महाराजा छत्रसाल के आदर्श व्यक्तित्व और गुरु महामति प्राणनाथ जी के बारे में मार्गदर्शन और लोकगीतों भजनों के प्रभाव का आपने जिस सुंदर तरीके से देखिए पत्र में वर्णन किया है उसे पढ़कर हमारे राजन जी भी प्रसन्न हो रहे थे और हम सुनकर प्रसन्न हो रहे थे, हमारे प्रसन्न हो रहे हैं।
0: बहुत विस्तृत और बहुत गहन समीक्षा इसमें लिखी है हमारे कृष्ण कुमार गुप्ता जी ने, उनको हम बधाई हमेशा देते रहते हैं, फिर भी बधाई।
1: विशेष रूप से देखिये महाराजा छत्रसाल के उच्च नैतिक मूल्य मानवीय संवेदनाओं के जुड़े जो प्रसंग आपने पत्र में लिखे हैं वो बिल्कुल ही हृदय स्पर्शी है। लोकधारा लोकरंग कार्यक्रमों में प्रसारित आपने जो पुराने और नवोदित कलाकारों के बारे में लिखा है, आपने देखिये नाम भी लिखे हैं कुछ कलाकारों के, तो बीच बीच में देखिये हम सुनवाते रहते हैं और जहाँ संभव होगा आपकी फरमाइश इसके अनुसार इन पुराने लोकगीतों पुराने लोकगीत कलाकारों को जरूर सुनने को मिलेगा। आपने देखिए नवोदित कलाकारों में भी एक नाम का जिक्र किया है मुस्कान जी का और एक एक लोकगीत का नाम भी लिखा है कि ये लोकगीत आपको पसंद आए हैं क्योंकि ये लोकगीत जो है वो पारंपरिक थे। बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह से सुनने के लिए। और फरमाइशी गीत का जो कार्यक्रम है ईमेल वाला, उससे संबंधित भी आपने देखिये सुझाव लिखा है और आपका सुझाव देखिये वास्तव में महत्वपूर्ण है और इस पर हम जरूर विचार करेंगे क्योंकि जो पत्रों और श्रोताओं की सहभागिता है वो संतुलित होनी चाहिए, किसी का प्रतिनिधित्व ज्यादा ना हो और जिससे कार्यक्रम और बेहतर हो सके। आप जैसे सजग, संवेदनशील और जागरूक श्रोताओं के पत्र प्राप्त होते हैं तो देखिए हमको पढ़ने में भी आनंद होता है, जवाब देने में भी आनंद मिलता है और हमारे सुनने वाले श्रोताओं को भी आनंद मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद इस पत्र के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण कुमार गुप्ता जी, और हम उम्मीद करेंगे आप इसी तरह अपने पत्रों से स्नेह बनाए रखेंगे।
1: और राजन जी देखिए पत्रों का सिलसिला जारी रहेगा, श्रोताओं को मनोरंजन करवाते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।
0: बिल्कुल, आइए श्रोताओं आपको सुनाते हैं एक बहुत ही खूबसूरत मनोरंजन से भरा हुआ बहुत बढ़िया सा गाना, लीजिए सुनिए।

0: बिल्कुल राजन जी, देखिए गाना हमारे श्रोताओं को पसंद आया होगा और अब फिर शुरू करते हैं पत्रों का सिलसिला।
1: जी, और ये अगला ईमेल हमें प्राप्त हुआ है, कार्यक्रम का ये अगला पत्र हमें प्राप्त हुआ है हरविलास सिंह तोमर, ग्राम तरसमा, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश से। लिखते हैं, आप सभी महानुभावों को सादर अभिवादन एवं नमस्कार। आगे आप लिखते हैं, 27 अप्रैल को रमतुला की प्रस्तुति कुछ अजीब सी लगी। मैंने पहली बार इस तरह की प्रस्तुति सुनी। रिकॉर्ड करके कॉल शामिल न करना, एक लोकगीत में एक या दो श्रोताओं को शामिल करना कार्यक्रम की विशेषता रही, ऐसा क्यों किया गया, कृपया कारण बताएं। 28 अप्रैल को घरनी में एक भेंट वार्ता सुनी, इसमें अत्यंत लाभप्रद जानकारी दी गई। पशुओं में होने वाले रोग व निदान के विषय में अच्छे ढंग से समझाया गया। विशेषज्ञ श्री MS सेंगर व श्री रविन्द्र कुमार प्रजापति जी का संवाद बहुत ही ज्ञानप्रद लगा। पशुओं का टीकाकरण कराना अत्यंत जरूरी है। रेबीज बीमारी के बारे में विस्तार से बताया गया। आप दोनों को दिल से धन्यवाद। इसके बाद लोक मंजरी में अच्छे लोकगीत सुनाए गए, विशेषकर शकुंतला राजपूत के स्वर में जीवनार गारी अच्छी लगी। सभी श्रोताओं के पत्र शामिल करने के लिए राधा बहन को साधुवाद। आगे आप लिखते हैं, 4 मई को रमतुला में विमला देवी परिहार व राजू पटेल व साथियों के स्वर में लोकगीत अच्छे लगे, प्रस्तुतकर्ता को धन्यवाद। 6 मई को प्रातःकालीन सभा में खेती किसानी में मुर्गी पालन संबंधित लाभप्रद जानकारी दी गई। चिंतन में सत्संग की महिमा का उल्लेख किया गया, श्रेष्ठ साहित्य पढ़ने का महत्व समझाया गया। ग्राम सभा में एक वार्ता सुनी मिट्टी रहित खेती के विषय में, विशेषज्ञ महोदय ने बड़ी विस्तार से बताया किंतु फिर भी कम समझ में आया। कार्यक्रम में रज्जू राजा चौहान के स्वर में दादरा पसंद आया। आगे आप इतनी रात्रि 8:15 पर फिल्म संगीत में फिल्मी गीत दर्द भरे सुनाए गए, उद्घोषक महोदय कुछ निराश से लग रहे थे। 7 मई को खेती किसानी में नाडी विधि से खाद बनाने के विषय में जानकारी दी गई, टांका बनाने की विधि समझाई गई, बुंदेली

0: गंध में एक वार्ता सुनी पसंद आई। रामचरितमानस में बुंदेली वार्ताकार श्री देवदत्त द्विवेदी ने अत्यंत विस्तार से समझाया कि मानस में बुंदेली का प्रयोग अधिक मात्रा में किया गया है। आगे आप लिखते हैं 9:30 पर मनमोहक फिल्म संगीत सुनाने के लिए दिल से धन्यवाद। और इसी के साथ अपने पत्र की समाप्ति करते हैं हमारे हरविलास सिंह तोमर जी। सर जी,
1: आपने पत्र की शुरुआत में 26 अप्रैल का जिक्र किया है कि अगर देखिए आपका फोन रिकॉर्ड हुआ था तो कार्यक्रम में शामिल जरूर होना चाहिए था। देखिए इस संबंध में हमने संबंधित जो हमारे कंपियर हैं उनको चेतावनी भी दी है क्योंकि ऐसी शिकायत पिछले वाले भौदी में भी एक प्राप्त हुई थी। आपने इस पत्र के माध्यम से 26 अप्रैल से लेकर 7 मई तक के कार्यक्रमों का देखिए इसमें जिक्र किया है और सभी कार्यक्रम देखिए आपको पसंद आए हैं। विशेष रूप से हमारे यहाँ का ग्राम सभा लोकमंजरी रमटूला घरनी कार्यक्रम ये आपने विशेष रूप से सुना है। इसमें जो लोकगीत बजाए गए या फिर वार्ताएं भेंट वार्ताएं सुनी वो आपको पसंद आई है। ऐसे ही हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहें और हम तक पत्र भेजते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद इस पत्र के लिए
0: जी। और सर अब पत्र पूरे हो गए हैं और अब समय भी हमें इजाजत नहीं दे रहा है।
1: बिल्कुल, तो जाने से पहले जैसा कि हम बताते हैं भौदी कार्यक्रम में डाक का पता और ईमेल का पता।
0: डाक का पता है भवदीय कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी छतरपुर मध्य प्रदेश पिन 4701001। और हमारे श्रोताओं के लिए ईमेल आईडी है bhavdiyachhatarpur@gmail.com bhavdiyachhatarpur@gmail.com।
1: तो सुनते रहें कार्यक्रम
0: भवदीय
1: आकाशवाणी
0: छतरपुर।
2: अभी आप सुन रहे थे पत्रोत्तर का साप्ताहिक कार्यक्रम भवदीय। सहयोग था राजेंद्र कुमार अहिरवार का और प्रस्तुति थी रविंद्र कुमार प्रजापति की। मीडियम वेव और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में आकाशवाणी भोपाल से।
3: महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गए हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
4: ये आकाशवाणी भोपाल है। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़ डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही न्यूज ऑन AIR और वेव्स OTT ऐप पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारे स्टूडियोज की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुनें।
5: श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुनें में आपका स्वागत है। हमारा ये कार्यक्रम जुड़ा है आपकी फरमाइश से और आप अपनी फरमाइश हमें बताएंगे टेलीफोन नंबर 2660902 के माध्यम से। भोपाल का STD कोड आप जानते हैं 0755। तो बताइए अपनी फरमाइश और आनंद लीजिए अपनी पसंद के गीतों का। हमारे पहले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनकी फरमाइश। हेलो।
6: हेलो नमस्ते
5: जी। नमस्कार,
6: ग्राम सुराना जिला रतलाम से शेख हैदर खान बोल रहा हूँ।
5: जी खान साहब कैसे हैं?
6: बस बढ़िया है मैडम, एकदम खैरियत में है। बस गर्मी थोड़ी तेज है फिलहाल तो।
5: जी
6: हाँ,
5: अच्छी बात है, खैरियत से होना ही चाहिए। अपन ही यदि ठीक ना हो तो आसपास की चीजें और ज्यादा दिक्कत देने लगती हैं।
6: हाँ सही है।
5: आज के इस कार्यक्रम के आप पहले कॉलर हैं, बताइए कौन से गीत से शुरुआत की जाए कार्यक्रम की।
6: फिल्म का नाम है मेरा गांव मेरा देश।
5: जी
6: इसका गीत है लता जी की आवाज में, हाय शर्माऊं किस किस को बताऊं किस किस को सुनाऊं अपनी प्रेम कहानियां।

0: हेलो
1: नमस्कार जी।
0: जी नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं चित्रकूट धाम की बहेरी ग्राम से दिनकर सिंह बात कर रहा हूँ।
0: जी कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, मस्त है। कौन दीदी बोल रही हैं?
0: मैं अमिता त्रिवेदी बात कर रही हूँ।
1: जी जी, अमिता जी को नमस्कार।
0: जी नमस्कार। तो बताइए, कौन सा गीत आज के कार्यक्रम में सुनना चाहेंगे आप?
1: झुक गया आसमान तुमसे मिले नजर की मेरी होश उड़ गए।
0: जहाँ तक मेरी याददाश्त है, आप इस गीत की फरमाइश पहले भी कर चुके हैं। अगली बार जब आपसे बात होगी तो कोई नया गीत लेकर आई।

0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम।
1: जी नमस्ते मैम।
0: जी नमस्कार
1: जी, मैं ग्राम बोतराई तहसील पथरिया जिला दमोह से लक्ष्मण सिंह चंदेल बात कर रहा हूँ।
0: जी चंदेल जी, कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल बढ़िया है मैम, आप बताइए आप कैसे?
0: बस हम भी अच्छे हैं, आप लोगों से चर्चा हो जाती है, बातचीत हो जाती है, हालचाल पता लगते हैं तो और अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल मैम
0: जी, गीत कौन सा सुनना चाहेंगे?
1: फिल्म का नाम है अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी।
0: अच्छा, और गीत के बोल?
1: गीत के बोल मतलब ये टाइटल सॉन्ग सुनना है मैम।

0: हेलो, फोन कर रहे हैं गीत सुने कार्यक्रम।
1: जिला ग्राम पातरपुली से राहुल ध्रुव बात कर रहा हूँ।
0: जी राहुल जी, कैसे हैं?
1: अभी तो ठीक ही। आप कैसे, मतलब गेहूँ वगैरह सब जो मक्का है वो टूट चुका है और काट चुके हैं अभी, मतलब पानी से।
0: बताइए आज के कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: छुपा रुस्तम का।
0: छुपा रुस्तम, कौन सा गीत इसका?
1: छुपा रुस्तम का, प्यार में दिन तो सब देखते हैं, जान को मैं दे गई।

0: हेलो
1: हेलो जी, मैं अमृता तिवारी बोल रही हूँ रीवा से।
0: जी अमृता जी, कैसी हैं आप?
1: ठीक हूँ, बहुत अच्छी हूँ मैं, आप कैसे हैं?
0: बस हम भी बहुत अच्छे हैं। तो क्या चल रहा था अभी घर का कामकाज?
1: जी मैम, वही भोजन।
0: बिल्कुल सही बात है, ये समय भी ऐसा ही होता है। और भोजन एक ऐसी चीज है जो सुबह शाम की तो कम से कम एक व्यस्तता होती ही है, कई बार वो घर में तीन बार की व्यस्तता भी हो जाती है।
1: जी मैम, नहीं मैं सुबह ब्रेकफास्ट में बनाती हूँ, उसके बाद भोजन की तैयारी, 4 बजे फिर।
0: बिल्कुल,
1: पापा ये हार्ट पेशेंट हैं।
0: जी जी जी,
1: शुगर पेशेंट, बार बार देना पड़ता
0: है। हाँ नहीं, सही बात है। और बल्कि डॉक्टर्स कहते भी यही हैं कि एक बार में एक साथ पूरा भोजन लेने के बजाय यदि हम छोटे छोटे मील्स लेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में खाएंगे, तो वो पचने में भी आसानी होगी, शरीर को लगेगा भी और ज्यादा हितकारी होगा। पर बस वही है कि सबके अपने पैटर्न होते हैं और उसके हिसाब से फिर काम चलता है। तो बताएं कौन सी फरमाइश आपकी पूरी की जा सकती है?
1: जी मैम, मूवी का नाम नहीं बता पाऊंगी।
0: चलिए गीत के बोल बता दीजिए।
1: तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। आसपास कहीं पूजा पाठ चल रहा है?
1: जी जी, घर में ही।
0: इतनी अच्छी शंख ध्वनि के साथ आपके खूबसूरत से गीत को हम पहुंचाते हैं आप तक। फिल्म राजा और रंक से।

0: फोन करें, गीत सुने कार्यक्रम।
1: जी नमस्ते मैम।
0: नमस्कार,
1: मैं ग्राम सगरा जिला पन्ना से अंजना प्रजापति बात कर रही हूँ।
0: जी अंजना, कैसी हैं आप?
1: मैम हम बहुत अच्छे हैं, आप कैसी हैं?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं।
1: बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है।
0: बहुत दिनों बाद
1: अच्छा लग रहा
0: है। ऐसे ही होता है, बहुत बहुत दिनों में बात हो तो अच्छा लगता है। क्या चल रहा है बाकी?
1: जी मैम मुझे गाना सुनवा दीजिए, मूवी का नाम है विजय पथ, उसमें गीत है राहों में उनसे मुलाकात हो गई।
0: विजय पथ का गीत आप सुनना चाहती हैं, और हम पूछ रहे थे कि इन दिनों क्या चल रहा है।
1: मैम इन दिनों कुछ नहीं, अभी तो फिलहाल गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है और कभी कभी बारिश भी होने लगती है, तो मौसम में बहुत परिवर्तन है। घर के काम करते हैं और पढ़ाई भी साथ साथ में करते हैं।
0: अच्छी बात है, दोनों काम जरूरी है, करते रहिए। और अगली बार जब आपसे बात होगी तो कोई नया गीत लेकर आइए, क्योंकि विजय पथ का गीत हमें पता है आपको बहुत पसंद है, आप कई बार सुन भी चुकी हैं, और हम आप तक पहुंचा रहे हैं आपकी ही पसंद का गीत।
1: ओके मैम, थैंक यू।

0: फोन करिए गीत सुने कार्यक्रम।
1: जी मैं नमस्कार, मैं हूँ रामबाबू मालवी बोल रहा था कोलार रोड भोपाल से।
0: जी मालवी जी कैसे हैं?
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ, और आप कैसे हो?
0: बस हम भी अच्छे हैं, आपकी फरमाइश पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: जी आप सुनना चाहेंगे हम रंग मूवी का कोई सा भी सुनवा दीजिए आप।
0: रंग मूवी का?
1: हाँ
0: जी। फिर भी क्या पसंद है इस मूवी में, कौन सा गीत सबसे अच्छा लगता है?
1: उसमें गाना वो अच्छा है, तुझे देखे मेरी आके, इस प्रकार से गाना है
0: जी,
1: वो अच्छा है
0: बिल्कुल। तो आपकी पसंद का गीत पहुंच रहा है आप तक।
1: धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो नमस्कार मैडम
0: जी नमस्कार फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
1: अनिल बामनियाल इंदौर से बोल रहा हूँ मैडम
0: जी। कैसे हैं आप अनिल जी?
1: बस बढ़िया है मैडम, आप कैसे हैं?
0: बस हम भी अच्छे हैं।
1: तो आज मुझे एक गीत सुनना है, जनता वलदार।
0: इसका कौन सा गीत है?
1: हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमको मिली।
0: अनिल जी आपकी पसंद का गीत आप तक पहुँच रहा है
1: और मैं एक और आपसे निवेदन करना
0: जी बताइएगा,
1: आप चिट्ठी के जो प्रोग्राम है मैडम वो अधिक से अधिक शामिल करें। आपका पत्र प्रोग्राम प्रसारित होता था उसको पुनः शुरू किया जाए।
0: कौन सा प्रोग्राम?
1: आपका पत्र।
0: आपका पत्र बिल्कुल।
1: हाँ पहले आया करता, पहले आता था ये
0: जी। कोविड के पहले तक ये कार्यक्रम निर्बाध रूप से चलता रहा है, उसके बाद के बदलाव में ये कार्यक्रम स्थगित हो गया था। हाँ। तो आपकी ये सुझाव और आपकी ये फरमाइश पहुंच गई है इस कार्यक्रम के माध्यम से, आगे जो भी निर्णय लिया जाएगा यकीनन आप तक पहुंचेगा। और जो पत्रों पर आधारित कार्यक्रम की बात कर रहे हैं आप फरमाइश की, तो बस उसके लिए इतनी सी ही गुजारिश है कि जितने ज्यादा श्रोता जुड़ेंगे उसमें पत्र लिखने में उतने ज्यादा पत्र शामिल होंगे। यदि एक ही व्यक्ति 100-150 पत्र डाल देगा तो पत्रों की संख्या तो बढ़ेगी लेकिन शामिल होने वाले पत्रों की संख्या नहीं बढ़ पाएगी।
1: हाँ जी जी जी सर, तो आपका ये आपका फरमाइश कार्यक्रम जो आता है
0: जी
1: कई पत्र आते हैं।
0: जी जी बिल्कुल,
1: और मैं भी भेजता रहता हूँ।
0: बिल्कुल, और शामिल भी होते रहते हैं।
1: हाँ होते रहते हैं।
0: चलिए आपकी पसंद का गीत हम आप तक पहुँचा रहे हैं।
1: धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो, फोन करेंगे गीत सुने कार्यक्रम?
0: जी फोन करेंगे गीत सुने कार्यक्रम।
1: जी दीदी जी नमस्कार, मैं छतरपुर बसारी गेट से राकेश वर्मा बोल रहा हूँ।
0: जी राकेश वर्मा जी, कैसे हैं आप?
1: जी बढ़िया हैं, गर्मी का मजा ले रहे हैं, जंगल जलेबी का पेड़ लगा हुआ है हमारे गोदाम पर।
0: हाँ तो बढ़िया छाया होती है, गर्मी का मजा तो हम लेंगे, तभी बारिश की आमद होगी, तो इसलिए उस आनंद को तो लेते रहिए इस उम्मीद के साथ कि अच्छी बारिश होगी। तो
1: मुझे ध्यान आ रहा है कि आज शायद अनीता बोल रही हैं, अमिता जी।
0: अमिता त्रिवेदी बात कर रही हूँ मैं।
1: जी मैं थोड़ा थोड़ा ध्यान, मैं मध्य प्रदेश आकाशवाणी से बहुत दिनों से जुड़ा हूँ, जबकि 1976 से जब से मैंने आकाशवाणी सुनना शुरू की है, रेडियो सुनना शुरू किया है, तब से मैं भोपाल से जुड़ा हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है, ये जुड़ाव आगे भी बरसों बरस बना रहे, हम यही उम्मीद करेंगे। और अभी आपकी कौन सी पसंद पूरी की जा सकती है ये बताइए।
1: पसंद दीदी जी, मौसम के हिसाब से तो गर्मी के हिसाब से गिरफ्तार का आ रहा है, और कबीर रेडियो श्रोता संघ के नाम से हैं हम, तो कबीर रेडियो के नाम से हैं, तो एक गीत आ रहा है दस नंबरी का
0: कौन सा गीत?
1: और तीन में से एक गीत हमको चुनना है, कहें कबीर सुनो हे साधु।
0: आपने एक तीसरी पसंद की भी बात की, तो वो भी बता दीजिए।
1: तीसरा वो है, वो शादी ब्याह चल रहा है ना, तीन ऑप्शन थे हमारे पास,
0: हम जरूर पूरा करेंगे, आप ही इन तीन में से एक चुन लें तो वो आप तक पहुंच जाएगा।
1: सोच रहे हैं कि कबीर वाला सुना दीजिए दस नंबरी का, क्योंकि ये बहुत कम बचता है,
0: तो ये गीत आप तक पहुंच रहा है, आनंद लीजिए।
1: नमस्कार दीदी
0: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबर।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में हिस्सा लेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक शुभारंभ हालांकि दो दिन पहले हो चुका है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में आशंकित बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। बैठक के दौरान श्री शाह राहत और बचाव उपायों में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों की तत्परता का आकलन करेंगे। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में टीवी के सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के ऊपर करीब 10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, लेकिन मैं ईमानदारी और पक्के इरादे के साथ तमिलनाडु को आगे ले जाना चाहता हूं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज गुना जिले में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। डॉ यादव इस दौरान अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री का शिलान्यास और लगभग 130 करोड़ रुपए की लागत के 144 अलग अलग विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में दिन के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। प्रदेश में तेज गर्मी और लू का असर देखने को मिल सकता है। और आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला होगा। मैच दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस के साथ होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम आपकी फरमाइश में हम आपको वो गीत सुनाते हैं जो आप हमें पत्रों के माध्यम से लिखकर भेजते हैं। सबसे पहला गीत आप सुनेंगे फिल्म नसीब से। इस गीत को सुरों से सजाया लता मंगेशकर और साथियों ने। गीतकार है आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से। श्रोता है कमरुल्ला, नसीम, आयशा, हदिया, अस्मा, सालिया, शोएब और मुश्तबा। अगले श्रोता है महनगर महाराष्ट्र से। श्रोता है अभिजीत, सरिता, सिद्धांत और प्रिंस। सुनते हैं आपका पसंदीदा फरमाइशी गीत।

0: किशोर कुमार के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म डॉन से। गीत लिखा है अनजान ने, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है औरंगाबाद से। श्रोता है राजेश साबले, शीतल, राजदीप और राशि। अगले श्रोता मलकापुर महाराष्ट्र से हैं, शत्रुघ्न वाल्मीक, मीना जी, स्वप्निल और अजय खिरोड़कर। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चका चक, फिर लो पान चबा। अरे

छोरी बाबा। अरे कैसी गोरी गोरी बोती की दिखी छोरी, करके जोरा जोरी कर गई हमरे दिल की चोरी। मिली छोरी तो हुआ निहाल, छोरा गंगा किनारे बाला, ओ छोरा गंगा किनारे बाला। ओ खई के पहन बनाओ रत बाला, खुली जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के

किशोर कुमार और एनेट पिंटो के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म सत्य पे सत्ता से। ये खूबसूरत गीत लिखा है गुलशन बावरा ने, गीत को संगीतबद्ध किया आर डी बर्मन ने। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है दिल्ली शहर से। श्रोता है कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा और आकाश। अगले श्रोता रिंगनी छत्तीसगढ़ से है, दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। सुनते हैं आपका पसंदीदा फरमाइशी गीत।

किशोर कुमार की स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म कालिया से। गीत लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीतकार आर डी बर्मन। इस गीत के लिए फरमाइश हमें सनावत से आई है। श्रोता है सादिक, शाकिर, मुश्ताक, मंतसा और शादाब। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म अभिमान से। गीत लिखा मजरू ने, संगीतकार SD बर्मन। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के स्वर में जो गीत सुनना चाहते हैं वो हमारी श्रोता भाटापारा दतरंगी से हैं, द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार वर्मा और जावेद्य कुमार वर्मा। अगली श्रोता महाराष्ट्र बीड शहर से है, प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप पगारिया और केशव पटेल। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

0: योजना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है।
2: अरे?
1: डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: श्रोताओं, कलम के जादूगर स्वर्गीय मुंशी प्रेमचंद की सभी रचनाएं भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। इन रचनाओं में से लगभग सभी को अलग अलग रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है। उन्हीं की लिखी अनेक कहानियों में से कुछ कथाओं से प्रेरणा लेकर उन्हें रूपांतरित रेडियो नाटकों के एक धारावाहिक के रूप में प्रस्तुत किए जाने का प्रयास है जादूगर को सलाम। इस धारावाहिक का उद्देश्य है साहित्य के उस अमर शिल्पी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करना। श्रोताओं, धारावाहिक की 11वीं कड़ी के रूप में आज प्रस्तुत है उनकी एक कहानी आप बीती का नाट्य रूपांतरण। ये कहानी मानसरोवर भाग 6 प्रेम प्रसून कहानी संग्रह में शामिल है। प्रायः अधिकांश साहित्य सेवियों के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब पाठकगण उनके पास श्रद्धापूर्ण पत्र भेजने लगते हैं। कोई उनकी रचना शैली की प्रशंसा करता है, कोई उनके सद्विचारों पर मोहित हो जाता है। लेखक को भी कुछ दिनों से यह सौभाग्य प्राप्त है। ऐसे पत्रों को पढ़कर हृदय कितना गदगद हो जाता है, इसे किसी साहित्य प्रेमी से ही पूछना चाहिए।
1: त्रिवेदी जी, ये डाक में किसी उमापति जी का पत्र आया है आपके नाम।
2: किसका? उमापति? हाँ, लाइए लाइए, दीजिए। अच्छा मुनीम जी।
3: हाँ जी।
2: आप लोगों की दृष्टि में मेरी जो रचनाएं साधारण और स्तरहीन है, उनकी प्रशंसा ये कितने अच्छे कवि ने की, जिनकी स्वयं की रचनाएं अक्सर पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती है।
1: जनाब क्या लिखते हैं?
2: अरे ऐसी प्रशंसा की है कि हृदय गदगद हो गया। विस्तार से तो आप स्वयं पढ़ लीजिएगा। वैसे मुझसे स्वयं भेंट करना चाहते हैं?

0: लाइए वो जरा कलम दवा तो उठाइए, मैं इसका जवाब लिख देता हूँ। पांचवें दिन कवि महोदय का दूसरा पत्र आ पहुंचा। ये पत्र पहले से भी कहीं अधिक मर्मस्पर्शी था। प्यारे भैया, अच्छा तो उनकी पत्नी भी मेरी रचनाओं से प्रभावित हैं। आगे लिखते हैं, कृपया अपनी रचनाओं की सूची और प्रकाशकों के नाम पते भी भेजिएगा। मेरी पत्नी पूछ रही है कि आपका विवाह कहाँ हुआ है, आपकी संतानें कितनी हैं और आपका कोई फोटो भी है, और यदि है तो भेज दीजिए। धन्य है भगवान, अब रमणीया भी मेरे कृत्यों की सराहना करने लगी है। ये पहला अवसर है जब मेरी रचनाओं की प्रशंसा किसी महिला ने की है। ये महाशय तो मुझसे खासे प्रभावित है। अजी सुनती हो? अरे मैंने कहा सुन रही हो?
1: आटे में हाथ सने हैं, आ रही हूं।
0: देखिए ये हमारे एक साहित्य प्रेमी मित्र उमापति का पत्र आया है। देखिए देखिए, ये स्वयं तो हमारी रचनाओं के प्रेमी हैं ही, इनकी पत्नी भी मेरी रचनाओं से प्रभावित हैं। और एक आप हैं, आपके पास तो समय ही नहीं हमारी रचनाओं को सुनने के लिए।
2: अरे इस चूल्हे चौके से फुर्सत मिले तभी तो कुछ सुनूं। और अगर मैं आपकी रचनाएं सुनने बैठ जाऊंगी तो घर का काम कौन करेगा?
0: वो
2: आप ही को मुबारक हो, आपके रचना प्रेमी और उनकी पत्नी।
0: उमापति जी की श्रीमती जी ने मेरे परिवार और वंशावली के बारे में पूछा है। ठीक है, ऐसा बढ़ा चढ़ा कर लिखूंगा कि क्या याद रखेंगे वो। चलो लिखता हूं। मेरे दादा एक रियासत के मैनेजर थे, हालांकि ये बात मैं जानता हूं कि एक नौकर मात्र थे। मेरे पिता जो दफ्तर में क्लर्क थे उन्हें मैंने दफ्तर का प्रधान अध्यक्ष लिख दिया है। और काश्तकारी को जमींदारी बनाना तो बड़ी मामूली सी बात थी, सो वो भी मैंने कर दिया है। और इस तरह दो सप्ताह और बीत गए, उमापति का कोई पत्र नहीं आया। अश्विनी का महीना और तीसरा प्रहर था, रामलीला की धूम थी, मित्रों की ताश की बाजी चल रही थी।
3: जी हाँ जनाब, क्या काम है आपको, किससे मिलना है?
4: जी आप लोगों में से त्रिवेदी जी कौन हैं?
0: जी कहिए, मैं ही त्रिवेदी हूँ।
4: जी आपने मुझे पहचाना?
0: नागा ढील टॉल, मुख पर चेचक के दाग, नंगा सिर, बाल संवरे हुए, सादी कमीज, श्याम वर्ण, गले में फूलों की माला और पैर में फुल बूट और हाथ में मोटी सी पुस्तक। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने महाशय को कहीं देखा है या इनसे कभी मिला हूं।
5: जी माफ कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं सका।
4: जी मैं आपका अदना सा चाहने वाला उमापति नारायण।
5: अरे उमापति नारायण जी, आप यूं अचानक किस तरह?
4: जी चलिए मकान पर चलते हैं, वहीं सब बताऊंगा।
5: अच्छा,
4: मैं आपके घर गया था तो पता चला कि आप यहाँ बैठक में हैं, पूछता हुआ चला आया।
5: जी जी आइए चलते हैं, तब तक आप पानी इलायची लीजिए, मैं बस अभी आया।
3: ये महाशय कौन है, आपके जानने वालों में पहले इन्हें कभी देखा नहीं।
5: अरे मेरे नए मित्र हैं, मेरी रचनाओं के प्रशंसक।
3: इनसे जरा होशियार रहिएगा।
5: आपका अनुमान गलत है, आप हमेशा आदमी को उसकी सच धज से परखा करते हैं, पर मनुष्य कपड़ों में नहीं दिल में रह

0: रहता है।
1: खैर ये रहस्य की बातें तो आप जाने, मैंने तो आपको आगाह कर दिया है। भोजन बहुत स्वादिष्ट था
0: जी। वो बस जल्दी जल्दी में बाजार से मंगवाना पड़ा। और सुनाइए, घर में सब आनंद मंगल तो है ना?
1: जी हाँ, सब आनंद मंगल। आपका और आपकी रचनाओं का अक्सर ही घर में जिक्र होता रहता है।
0: जी धन्यवाद जी। आप भी तो कविताएं लिखते हैं ना, कृपया कुछ सुनाइए ना।
1: हाँ,
2: जीवन क्या है, एक पानी का बुलबुला है। जीवन क्या है, एक पानी का बुलबुला है। एक दिन आएगा वो फूट जाएगा, सब बेकार है, सब यहीं रह जाएगा। जीवन क्या है, एक पानी का बुलबुला है।
0: वाह वाह उमापति जी, क्या स्वर है, क्या शब्दों का चयन है।
1: जी शुक्रिया शुक्रिया,
0: बहुत सुंदर कविता है, बहुत खूब। अच्छा अब रामलीला का समय हो चला है, चला जाए।
1: जी बिल्कुल,
0: वापिस लौट कर वापिस अपना कविता पाठ सुनते हैं।
1: जी जरूर,
0: आइए।
1: रामलीला का इतना सुंदर मंचन इससे पहले याद नहीं पड़ता मैंने कभी देखा हो।
0: चलिए अच्छा लगा कि आपको पसंद आया, आइए रात्रि भोज कर ले।
1: जी बिल्कुल
0: जी। हाँ उमापति जी, बताइए अचानक कैसे आना हुआ आपका?
1: भाई साहब, मैं अपनी पत्नी को लेने कानपुर जा रहा हूँ।
2: वहीं मेरा मकान भी है और जमींदारी भी,
1: और वहीं ससुराल भी है।
0: जी
1: दरअसल जमींदारी से मुझे घृणा है। मैं साहित्यिक जीवन व्यतीत करने की मंशा रखता हूँ और एक मासिक पत्रिका निकालने का मेरे मन में विचार है। वैसे तो मुझे प्रकाशक एक कविता के 1000 देता है, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि ये पुस्तिकाएं मैं अपनी ही लागत पर छपवाऊं। भाई साहब, वैसे तो मेरी धर्मपत्नी एक कन्या विद्यालय में प्रधानाध्यापिका है।
0: अच्छा है। बातचीत में कब आधी रात गुजर गई पता ही नहीं चला। अच्छा उमापति जी, शुभरात्रि।
1: शुभरात्रि।
0: अरे उमापति जी, सवेरे सवेरे तैयार होकर बैठे, कहीं जाने का विचार है क्या?
1: जी अब आज्ञा दीजिए, लौटते समय इधर से ही जाऊंगा।
0: अच्छा
1: इस समय आपको कुछ कष्ट दे रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा।
0: अरे नहीं नहीं, कष्ट की क्या बात है, निसंकोच कहिए।
1: मैं कल चला तो प्रातः काल के 4 बजे थे।
0: जी
1: 2 बजे रात से पड़ा जाग रहा था कि कहीं नींद ना आ जाए।
0: अच्छा
1: बल्कि यूं समझिए कि सारी रात जागना पड़ा।
0: अरे
1: क्योंकि चलने की चिंता लगी हुई थी।
0: जी
1: गाड़ी में बैठा तो झपकियां आने लगी और कोट उतार कर रख दिया और लेट गया, तुरंत ही नींद आ गई।
0: अच्छा अच्छा।
1: मुगल सराय में नींद खुली, कोट गायब, नीचे ऊपर देखा, चारों तरफ देखा, कहीं पता नहीं। समझ गया किसी महाशय ने उड़ा दिए, आखिर सोने की सजा मिल ही गई।
2: कोट में 50 रुपए खर्च करने के लिए रखे थे। वे भी उसके साथ उड़ गए। अब क्या कहूं, दरअसल अगर आप मुझे 50 रुपए दे दें तो बात वो है कि पत्नी को मैके से लाना है, कुछ कपड़े वगैरह ले जाने पड़ेंगे, और फिर तो आप जानते ही हैं कि ससुराल में सैकड़ों तरह के नेकजोग होते हैं, कदम कदम पर रुपए खर्च करने होते हैं, ना खर्च करो तो हंसी का बड़ा डर है। मैं इधर से लौटूंगा तो देता जाऊंगा।
0: उसकी बातों ने तो मुझे हसमंजस में डाल दिया है, एक बार पहले भी धोखा खा चुका हूं, कहीं फिर से वही दशा हुई तो। अरे नहीं नहीं नहीं, संसार में सभी मनुष्य एक से नहीं होते, ये तो सज्जन पुरुष लगता है, इस समय संकट में पड़े हैं, इस समय ऐसी बातें सोचना मुझे शुभ नहीं देता।
3: अरे अजी सुनती हो?
0: अच्छा उमापति जी आप यही ठहरिए, मैं भी आता हूं। अजी सुनती हो? तुम्हारे पास कुछ रुपए तो नहीं है?
4: क्यों, क्या करोगे?
0: मेरे मित्र जो कलाएं हैं ना, उनके रुपए किसी ने गाड़ी में चुरा लिए। उन्हें बीवी को विदा कराने ससुराल जाना है ना, लौटते समय देते जाएंगे।
4: तुम्हारे यहाँ जितने मित्र आते हैं ना, सब तुम्हें ठगने ही आते हैं।

0: वो
1: सभी संकट में पड़े रहते हैं, मेरे पास नहीं है रुपए वुपे।
0: अजी दे दो, बेचारे तैयार खड़े हैं, उनकी गाड़ी छूट जाएगी।
1: तो कह दो इस समय घर में रुपया नहीं है।
0: देखो ये कह देना आसान नहीं है, इसका अर्थ तो ये हुआ कि मैं दरिद्र ही नहीं मित्रहीन भी हूँ, नहीं तो क्या मेरे लिए 50 रुपए का भी इंतजाम नहीं हो सकता। उमापति को कभी विश्वास नहीं आएगा कि मेरे पास रुपए नहीं है। इससे तो कहीं अच्छा हो कि साफ साफ कह दिया जाए कि हमको आप पर भरोसा नहीं है, हम आपको रुपए नहीं दे सकते। कम से कम अपना पर्दा तो ढका रहेगा ना।
1: ये लो, ये रही संदूक की चाबियां। तुम्हें जितनी बहस करनी आती है ना, उतना ही अगर लोगों को परखना आता तो आज आदमी हो गए होते। ले जाओ, दे दो उसे, लेकिन उधार समझकर मत देना, ये समझ लो कि पानी में फेंक दिए।
2: सातवें दिन उमापति अपनी पत्नी और पुत्री सहित पुनः पधारे, उनकी अच्छी आवभगत की गई, स्वागत में 20 रुपए भी दिए गए। त्रिवेदी जी को विश्वास था कि उमापति जी आते ही उनके 50 रुपए धन्यवाद सहित उन्हें लौटा देंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। सुनो, इन्होंने तो रुपए नहीं दिए जी।
3: तो क्या तुम्हें सचमुच आशा थी
1: कि वो आते ही रुपए हाथ में रख देंगे? मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि फिर पाने की आशा मत करना, यही समझ लो कि किसी मित्र की मदद कर दी। लेकिन तुम भी विचित्र आदमी हो।
0: बड़ी लज्जा का विषय है, इनके आदर सत्कार में क्या कमी छोड़ी हमने। अब तो बिस्तरा बांध कर चलने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पैसों का कोई जिक्र नहीं। मैं तो बड़ा ही अपमानित सा महसूस कर रहा हूं। तुम ठीक कहती थी, मुझे वाकई आदमी की परख नहीं है।
4: त्रिवेदी जी, चलने का समय हो गया है, लेकिन एक बात मन में है जो आपसे कहना चाह रहा हूं। समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं कैसे कहूं। दरअसल वो बात यह है कि मुझे दुख भी इस बात का है कि मैं इस बार भी आपके रुपए नहीं दे सका। बात यह है कि मकान पर पिताजी से भेंट नहीं हुई, क्योंकि वो तहसील वसूल करने के लिए गांव गए हुए थे और मुझे इतना अवकाश नहीं था कि गांव तक जाता। क्या है कि गांव तक रेल का रास्ता नहीं है, सो बैलगाड़ियों से जाना पड़ता है। इसलिए मैं एक दिन मकान पर रहकर सीधा ससुराल चला गया और वहां 100 रुपए खर्च हो गए। विदाई के रुपए अगर नहीं मिल जाते तो यहां तक आना भी बड़ा मुश्किल था। अब समझ में नहीं आ रहा कि कैसे आपसे कहूं कि वो क्या है कि अब मेरे पास रेल का किराया तक नहीं है। अगर आप मुझे 25 रुपए और दे देते तो मैं आपको वहां जाते भेज दूंगा, विश्वास कीजिए। इस समय मेरे पास 1 का किराया भी नहीं है।
0: जी मैं तो आ रहा है कि टका से जवाब दे दूं, पर क्या करूं, इतनी अशिष्टता मुझसे हो नहीं सकेगी।
2: बड़ी मुश्किल से मन मार कर त्रिवेदी जी ने पत्नी से पैसे लिए। पत्नी ने भी बिना किसी नानुकुर किए रुपए दे दिए। त्रिवेदी जी की मानसिक स्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उमापति जब चलने लगे तो त्रिवेदी जी शिष्टाचार के नाते ही सही उन्हें सड़क तक छोड़ने भी नहीं गए। 1 हफ्ते के बाद उमापति जी का पत्र आया कि किसी कार्यवश बाहर जा रहे हैं, रुपए लौट कर भेज देंगे। लेकिन इसके बाद न तो रुपए आए और न ही कोई खत। त्रिवेदी जी खत और रजिस्ट्री लिख लिख कर थक कर बैठ गए और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो उनकी धर्मपत्नी ने कहा था वही सच था।

0: तुम्हारे व्यवहार का मुझ पर बुरा असर पड़ा। मैं इतना उदार नहीं कि अपने ऋण को भूल सकूं। अरे महीनों सिर खपाता हूं, कलम खींचता हूं, तब जाकर कहीं नकद नारायण के दर्शन होते।
1: त्रिवेदी जी, आपसे मिलने कोई युवक आया है? स्वयं को कंपोजिटर

0: दीजी, आपसे मिलने कोई युवक आया है, स्वयं को कंपोजिटर बताता है।
1: ठीक है, अंदर भेज दीजिए। हाँ बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ?
2: महाशय, मैं बिहार के एक संपन्न परिवार से हूँ, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता था, मित्रों की संगति में असहयोग आंदोलन में कूद पड़ा, जिसका परिणाम ये हुआ कि मेरे घर वालों ने किसी भी प्रकार की सहायता से इनकार कर दिया। इस समय मेरी स्थिति ठीक नहीं है, मुझे काम की सख्त आवश्यकता है।
1: ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें 15 रुपए मासिक से अधिक नहीं दे सकूंगा, और तुम्हें कंपोजिटर का कार्य करना होगा।
2: जी, मुझे स्वीकार है।
1: ठीक है। मुनीम जी।
3: जी।
1: ये लड़का आज काम पर नहीं आया, कुछ कहकर गया था क्या आपसे?
0: कल से बुखार बता रहा था, शायद इसी वजह से ना आया हो।
1: भाई बड़ा सलीके वाला लड़का है, अपना काम बखूबी करता है, मुझे तो बहुत पसंद है।
0: देखिए देखिए त्रिवेदी जी, वो चला आ रहा है।
2: नमस्ते सर, माफी चाहता हूँ, आने में देर हुई, दरअसल कल से ही मेरी तबीयत बहुत खराब है, सारा शरीर बुखार से तप रहा है, शायद आपके यहाँ कार्य नहीं कर सकूंगा। यदि आप मुझे कुछ रुपए उधार दे दें तो मैं घर चला जाऊं, वहां जाते ही रुपए का प्रबंध करके भेज दूंगा।
1: ये तो वास्तव में बीमार है, मैं इससे भली भांति परिचित हूँ, और ये भी जानता हूँ कि वो यहाँ रहकर कभी स्वास्थ्य लाभ नहीं कर सकेगा। इसे सचमुच सहायता की जरूरत है, मगर मुझे शंका है कि कहीं ये भी रुपए हजम न कर जाए। जब एक विचारशील सुयोग्य पुरुष धोखा दे सकता है, तो ऐसे अर्धशिक्षित नवयुवक से कैसे आशा की जाए कि वो अपने वचन का पालन करेगा? भाई मुझे तुम्हारी दशा पर बेहद दुख है, मगर मैं कुछ कर नहीं सकूंगा, बिल्कुल खाली हाथ हूं, मुझे खेद है।
2: आप चाहे तो कुछ न कुछ प्रबंध अवश्य कर सकते हैं, मैं आपके रुपए अवश्य भेज दूंगा।
1: यहाँ तुम्हारी नीयत साफ है, लेकिन घर पहुंचकर भी यही नीयत रहेगी, इसका क्या प्रमाण है? नीयत साफ रहने पर भी मेरे रुपए दे सकोगे या नहीं, ये भी कौन जाने। रुपए तुमसे वसूल करने का मेरे पास कोई साधन भी तो नहीं है। अब देखो, इसमें मुझे संदेह नहीं है, लेकिन खेद है कि मेरे पास आज रुपए नहीं है। हाँ, तुम्हारी जितनी तनख्वाह निकलती हो वो ले सकते हो। ये तो चला गया, लेकिन क्या मुझसे कोई भूल तो नहीं हो गई? क्या मैं इतना स्वार्थी हो गया हूं? नहीं, मैं अपने निर्णय पर स्थिर हूं। अरे मैं कहां का इतना धनी हूं जो यूं पैसे पानी में फेंकता फिरूं?
0: सुनो बेटा, सुनो, त्रिवेदी जी ने कुछ कहा है क्या?
2: पंडित जी, मेरी तबीयत बहुत खराब है, दवा के पैसे भी नहीं हैं, मैं घर वापस लौट जाना चाहता हूँ, इसलिए मालिक से कुछ रुपए उधार लेने गया था, लेकिन रुपए नहीं मिल सके।
0: तो फिर क्या करोगे? जितने दिन तुमने काम किया है उससे तो कुछ भी नहीं बन सकेगा। अरे पहले तुम ये रोना बंद करो। लो ये 15 रुपए रखो और तुरंत घर चले जाओ, जाकर सबसे पहले अपना इलाज करवाओ।
2: नीम जी, मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूल सकूंगा, घर पहुंचते ही मैं रुपए वापस भेज दूंगा। नमस्ते।
1: ये लड़का क्या कह रहा था, कुछ कहकर गया है क्या?
0: हाँ, वो बता रहा था कि घर जाना चाहता है, मुझसे जो मदद बन पड़ी मैंने कर दी।
1: अच्छा, ये बहुत अच्छा किया आपने। हाँ,

0: ही हुआ। चलो मुझसे ना सही किसी और से ही सही। मैं भी तो यही चाहता था कि इसकी मदद हो जाए। अब मेरे दिल का बोझ हटा। ऐसा नहीं है कि मैं इसकी सहायता नहीं कर सकता था, लेकिन ये सब मेरे उन कवि मित्र के कपट का परिणाम है जो उन्होंने मेरे साथ किया है। वरना क्या मेरे पास इस लड़के को देने के लिए 15 रुपए नहीं निकलते? मैं अपनी रचनाओं और आलेखों में बड़े बड़े उपदेश दिया करता था, दया, मनुष्यता, सद्व्यवहार, और मौका पड़ने पर मैं स्वयं ही साफ बच निकला। अरे मुझसे अच्छे तो ये मुनीम जी निकले, जो मेरी रचनाओं को पढ़ पढ़कर इनका जीवन ही बदल गया है। गुरु गुड़ ही रहे और चेला शक्कर हो गए। चलो ये भी अच्छा है, मेरे लेखों का मुझ पर ना सही, दूसरों पर तो प्रभाव पड़ना है ना। भले ही चिराग तले अंधेरा सही, पर उसका प्रकाश तो फैल रहा है। और कहीं मुनीम जी को पैसे वापस नहीं मिले तो, जिसकी मुझे पूरी आशा है। तो फिर खूब छकेंगे। महाशय को आड़े हाथों लूंगा। किंतु त्रिवेदी जी की अभिलाषा पूरी ना हो सकी। हां, एक काम उन्होंने अवश्य किया, इस संपूर्ण घटना को आलेख के रूप में एक पत्रिका में छपवा दिया, और जिसका परिणाम यह हुआ कि चौथे ही दिन उनके दरवाजे पर पोस्टमैन खड़ा था।
1: पोस्टमैन, आपका मनी ऑर्डर है।
0: मनी ऑर्डर? अरे ये तो उमापति ने भेजा है। अरे सुनती हो, ये देखो उमापति जी ने 75 रुपए वापस भेजे हैं और क्षमा लिखा है।
2: अच्छा, इन्हें ले जाकर संभाल कर संदूक में रख दो। तुम इतने लोभी हो, मुझे तो पहली बार मालूम हुआ। कम से कम इतना तो समझ लेना चाहिए था कि जब कोई शिक्षित व्यक्ति किसी कारणवश कर्ज नहीं लौटा पा रहा है तो अवश्य ही वो विवश है। बार बार तकाजा करके उसे लज्जित करना कोई भल मनसाहत नहीं है। अरे जब तक किसी व्यक्ति का पूरी तरह से नैतिक पतन नहीं हो जाता, तब तक वो किसी को धोखा नहीं देता। मैं इन रुपयों को तब तक अपने पास नहीं रखूंगी जब तक ये पता नहीं चल जाए कि रुपए भेजने में इतना विलंब क्यों हुआ।
0: उसके बाद उमापति का कोई पत्र नहीं आया जिससे ये पता चले कि रुपए भेजने में इतना विलंब क्यों हुआ। पर मैं इस समय ऐसी उदार बातें सुनने को तैयार नहीं था। डूबा धन मिल गया, मैं तो इसी में बहुत खुश था। श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक कलम के जादूगर की जादूगर को सलाम की 11वीं कड़ी। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता थे कुणाल फिल्म्स, निर्मात्री कौशल्या रॉय, रूपांतरकार दुष्यंत हिमराज, संकलन डॉक्टर पीसी राय, सहायक निर्माता विकेश कुमार और ध्वनि मुद्रण रामकिशन। भाग लेने वाले कलाकार थे ऋषिकेश शर्मा, गौहर परवेज, शिमाइला, साहिल सैयद, मोहम्मद अखलाक, कुणाल राय और सतीश कक्कड़। तो अब इसी के साथ दीजिए हमें आज्ञा, आज ही के दिन और इसी समय हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम संग्रहालय से, जिसमें आपने सुना धारावाहिक जादूगर को सलाम का भाग 11। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। आज बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम

0: टीवी के केसी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु पर करीब 10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, लेकिन मैं ईमानदारी और पक्के इरादे के साथ तमिलनाडु को आगे ले जाना चाहता हूं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज गुना जिले में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। डॉ. यादव अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री का शिलान्यास और लगभग 130 करोड़ रुपए की लागत के 144 अलग अलग विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। प्रदेश में अब तक 9,78,000 किसानों से 60,70,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। किसानों के हित में गेहूं उपार्जन की अवधि 9 मई से बढ़ाकर 23 मई कर दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में दिन के तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं प्रदेश में तेज गर्मी और लू का असर देखने को मिलेगा। और आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला होगा। मैच दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस से शाम 7:30 बजे से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज और डीटीएच के ऑडियो चैनल पर दोपहर के 1 बजे है। लीजिए सुनिए महिला कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है।

श्रोता सभा सुनने वाली सभी बहनों को आपकी कार्यक्रम सखी मोनिका चतुर्वेदी का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आज की चर्चा में हम सबसे पहले आपसे बात करने जा रहे हैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर, सखियां सड़क पर गाड़ी चलाते समय सावधानी रखें के विषय में। जी हाँ बहनों, सड़क पर गाड़ी चलाते समय सावधानी रखें, इसलिए 8 से 12 मई तक ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक के रूप में हम मना रहे हैं। बहनों, सड़क सुरक्षा आज के समय में एक बड़ी आवश्यकता बन चुकी है। बढ़ती वाहनों की संख्या और लापरवाही के कारण सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हर साल लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। बहनों, सड़क पर वाहन चलाते समय कुछ छोटी छोटी सावधानियां हमें और दूसरों को सुरक्षित रख सकती हैं। सबसे पहले हमें हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करना बहुत जरूरी है। यह हमारी सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। ओवर स्पीडिंग से बचना चाहिए, क्योंकि तेज रफ्तार ही अधिकांश दुर्घटनाओं का कारण बनती है। मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए वाहन चलाना बेहद खतरनाक है। इससे ध्यान भटकता है और हादसे की संभावना भी बढ़ जाती है। इसके अलावा हमें नशे की हालत में भी कभी भी वाहन नहीं चलाना चाहिए। पैदल यात्रियों का सम्मान करें और उन्हें रास्ता दें। सड़क पर धैर्य और संयम बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। बहनों, ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक हमें यह याद दिलाने का एक अवसर है कि सड़क पर सुरक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। यदि हम सभी मिलकर नियमों का पालन करें और जागरूक बने, तो हम कई कीमती जिंदगियां बचा सकते हैं। सावधानी ही सुरक्षा है और सुरक्षा ही जीवन है। रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पहचान बन जाए, हर मोड़ पर जीवन की कीमत याद आए, एक नियम पालन 100 खुशियां बचाए, सड़क पर सावधानी घर तक सही सलामत पहुंचाए। बहनों, सड़क केवल यात्रा का मार्ग नहीं होती, वह विश्वास का रास्ता होती है, जहां हर व्यक्ति यह उम्मीद लेकर निकलता है कि वह सुरक्षित अपने घर लौटेगा। बहनों, सड़क सुरक्षा केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि हमारी जिम्मेदारी, हमारा संस्कार और हमारा जीवन है। हमारे देश में सड़क दुर्घटनाएं एक बड़ी सामाजिक समस्या बन चुकी है। बहनों, प्रश्न यह नहीं है कि दुर्घटनाएं क्यों होती हैं, प्रश्न यह है कि क्या हम उन्हें रोकने के लिए जागरूक हैं। बहनों, सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है लापरवाही। आपके एक सेकंड की गलती पूरे जीवन की सजा बन सकती है। बहनों, सड़क

शिक्षा सिर्फ नियमों को जानने का नाम नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है जो सड़क पर चल रहा है। सबके लिए नियम समान रूप से महत्वपूर्ण है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर रुकना, सिग्नल का सम्मान करना, ये सभी छोटे छोटे कदम आपके लिए और दूसरों के लिए जीवन बचा सकते हैं। बहनों, सड़क पर दिखावा नहीं, सुरक्षा अपनाओ। स्टंट करना रोमांच नहीं, यह केवल जोखिम और मृत्यु की ओर एक कदम है। तस्वीरों या रील्स के लिए जान को जोखिम में डालना कोई बहादुरी नहीं, वह मूर्खता है। सरकार कानून बनाती है, पुलिस व्यवस्था संभालती है, लेकिन जिम्मेदार नागरिक बनना हमारा कर्तव्य है। जब हम खुद नियमों का पालन करेंगे तभी दूसरों से अपेक्षा कर पाएंगे। याद रखिए, एक जिम्मेदार नागरिक ही सुरक्षित समाज की नींव रखता है। सड़क पर हर व्यक्ति किसी का अपना होता है। जो सामने से आ रहा है वह भी किसी माँ का बेटा है, किसी बहन का भाई है। सड़क पर संयम, सहानुभूति और अनुशासन अपनाइए। गुस्सा नहीं, समझदारी दिखाइए। हॉर्न नहीं, धैर्य बजाइए। आइए आज हम सब यह संकल्प लें कि हम तेज गति नहीं अपनाएंगे और नियमों का पालन करेंगे।

ममता की छाया सेवा का सार, दर्द भी देती जीवन का उपहार, खामोशी से करती मानवता का काम, नर्सें ही हैं सेवा का सच्चा नाम। जी हां बहनों, आगे अपनी चर्चा में हम आपसे बात करने जा रहे हैं सबसे पुनीत कार्य निभाती नर्स के विषय में। बहनों, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जिसे हम प्रतिवर्ष 12 मई को मनाते हैं, उन अनगिनत नर्सों के समर्पण, त्याग और करुणा को नमन करने का दिन है जो दिन रात बिना थके हमारी सेवा में लगी रहती है। बहनों, यह दिन आधुनिक नर्सिंग की जननी फ्लोरेंस नाइटेंगल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्होंने न केवल नर्सिंग को एक सम्मानजनक पेशा बनाया बल्कि इसे मानवता की सेवा का सर्वोच्च उदाहरण भी स्थापित

स्थापित किया। 1974 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज ने आधिकारिक रूप से इस दिन को नर्स दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की, ताकि दुनिया भर में नर्सों के योगदान को सम्मान दिया जा सके। यह दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि नर्सें स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ होती हैं। जब कोई व्यक्ति अस्पताल में जाता है तो सबसे पहले सबसे अधिक समय तक जो व्यक्ति उसके साथ रहता है वह नर्स ही होती है। डॉक्टर उपचार की दिशा तय करते हैं, लेकिन उस उपचार को सही ढंग से लागू करने का कार्य नर्सें करती हैं। वे न केवल मरीज की देखभाल करती हैं, बल्कि उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से सहारा देती हैं। यदि हम कोविड-19 महामारी के आंकड़े देखें, तो आप जान सकेंगे कि इस महामारी के दौरान नर्सों की भूमिका ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। जब लोग अपने घरों में सुरक्षित थे, तब नर्सें अस्पतालों में अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों की सेवा कर रही थी। कई नर्सों ने अपने परिवारों से दूर रहकर दिन रात काम किया, ताकि वे दूसरों की जान बचा सके। यह केवल एक नौकरी नहीं थी, बल्कि यह एक सच्ची सेवा और त्याग का उदाहरण था। नर्सें केवल इंजेक्शन लगाने या दवाइयां देने तक सीमित नहीं होती, वे मरीज की भावनाओं को समझती हैं, उसकी पीड़ा को महसूस करती हैं और उसे आशा देती हैं। जब एक मरीज निराश होता है, तब नर्स ही उसे वह विश्वास दिलाती है कि सब ठीक हो जाएगा। उनकी मुस्कान, उनका धैर्य और उनकी संवेदनशीलता ही मरीज के लिए सबसे बड़ी दवा बन जाती है। बहनों, इस दिन का महत्व केवल नर्सों को सम्मान देना नहीं है, बल्कि यह हमें सिखाता है कि हमें उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि नर्सें भी इंसान हैं, उनकी भी अपनी भावनाएं हैं और परिवार होते हैं। फिर भी वे अपने कर्तव्य को सर्वोपरि मानती हैं और दूसरों की सेवा में लगी रहती हैं। आज के समय में नर्सिंग केवल सेवा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक अत्याधुनिक और तकनीकी रूप से उन्नत क्षेत्र बन चुका है। नर्सें अब आधुनिक उपकरणों का संचालन करती हैं, जटिल चिकित्सा प्रक्रियाओं में सहायता करती हैं और स्वास्थ्य अनुसंधानों में भी योगदान देती हैं। इस बदलते समय में नर्सिंग का महत्व और भी बढ़ गया है। बहनों, हमें यह समझना होगा कि यदि हमें एक स्वस्थ समाज बनाना है, तो हमें नर्सों का सम्मान और सहयोग करना होगा। हमें युवाओं को इस क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित करना होगा, ताकि भविष्य में नर्सों की कमी को दूर किया जा सके। सरकार और समाज दोनों मिलकर नर्सों के कार्यस्थल की स्थिति और सुरक्षा को बेहतर बनाना होगा, क्योंकि नर्सें केवल अस्पताल की कर्मचारी नहीं, बल्कि मानवता की सच्ची सेवक है। बहनों, आगे अपनी चर्चा में हम आपसे बात करने जा रहे हैं। आज ही के दिन यानी मई माह के दूसरे रविवार को मनाए जा रहे एक बहुत ही खास दिन मदर्स डे के विषय में। जी हाँ बहनों, दुनिया में सबसे कठिन, सबसे पवित्र और सबसे अनमोल है माँ। माँ सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि यह एक एहसास है, एक शक्ति है, एक ऐसी छाया है जो हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ी रहती है। इस दुनिया में कई रिश्ते बनते हैं, लेकिन माँ का रिश्ता जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है। वह हमें 9 महीनों तक अपने गर्भ में रखती है, हमारे हर दर्द को सहती है और बिना किसी शर्त के हमसे प्रेम करती है। माँ की भूमिका इसलिए सबसे कठिन मानी जाती है, क्योंकि वह एक साथ कई जिम्मेदारियां निभाती है। वह हमारी पहली शिक्षक होती है, जो हमें बोलना, चलना और अच्छे संस्कार सिखाती है। वह हमारी रक्षक होती है, जो हर मुश्किल से हमें बचाती है। वह हमारी दोस्त भी है, जो हमारी हर बात बिना कहे समझ जाती है। माँ अपनी इच्छाओं और सपनों का त्याग कर हमारे सपनों को पूरा करने में लग जाती है। वह दिन रात मेहनत करती है, लेकिन कभी थकान की शिकायत नहीं करती। उसकी खुशी सिर्फ हमारे चेहरे की मुस्कान में होती है। सच कहूं तो माँ का कर्ज कभी चुकाया नहीं जा सकता। हम केवल उन्हें सम्मान, प्रेम और आदर देकर उनके त्याग का थोड़ा सा मान रख सकते हैं। इस मदर्स डे पर आइए हम सभी यह संकल्प लें कि हम अपनी माँ का हमेशा सम्मान करेंगे, उनकी बातों का आदर करेंगे।

करेंगे और उन्हें गर्व महसूस कराने की पूरी कोशिश करेंगे। माँ के बिना जीवन अधूरा है और माँ के साथ हर मुश्किल आसान है। बहनों, माँ हमें हर एक बुरी नजर से भी बचाती है, इसीलिए तो वो माथे पर काजल का टीका लगाती है। और एक दिन जब हम कामयाबी के शिखर को छू लेते हैं तो हम कहते हैं कि ये तो हमारी मेहनत का नतीजा है, लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि ये हमारी मेहनत नहीं बल्कि माँ की मेहनत है जिसने हमें कदम कदम पर प्रोत्साहित किया और हमारी कामयाबी के लिए उपवास किया। क्या कोई हमारे लिए निस्वार्थ भाव से इतना कुछ कर सकता है? शायद नहीं। क्या अंबर, क्या धरती, माँ की तुलना तो हो ही नहीं सकती। लेकिन बदलते इस परिवेश में हम अपनी उस माँ को वृद्धाश्रम भेज रहे हैं जिसने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, हर वक्त भगवान से हमारी खुशियां ही मांगी हैं। जब कभी भी मैं इस वृद्धाश्रम में माताओं को देखती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू झलक आते हैं और यह दिन रोने लगता है और बार बार मन में एक ही ख्याल आता है कि क्या बीतती होगी उस माँ के दिल पर, क्या उसने इसीलिए हमें पाला है कि आज हमने उसे उसके घर से ही निकाल दिया। लेकिन बहनों, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वक्त हम पर भी आएगा और इतिहास अपने आप को दोहराएगा और उस वक्त हमको अपनी गलती का एहसास कराएगा। लेकिन तब तक ये वक्त हाथ से निकल जाएगा और हमारे पास सिवाय पश्चाताप की ज्वाला के कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए वक्त रहते हमें अपनी माँ की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि भगवान का दूसरा रूप होती है माँ। हम अपने जीवन में कितने भी व्यस्त क्यों ना हों, पर अपनी माँ के लिए वक्त जरूर निकालना चाहिए।

आगे बहनों, अपनी चर्चा में हम आपसे बात करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण विषय पर, वर्ल्ड ल्यूपस डे, जिसे हर वर्ष 10 मई को मनाया जाता है। बहनों, ल्यूपस एक गंभीर ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली खुद अपने ही उत्तकों और अंगों पर हमला करने लगती है। यह बीमारी त्वचा, जोड़ों, किडनी, हृदय और मस्तिष्क तक को प्रभावित कर सकती है। इसकी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इसके लक्षण हर व्यक्ति में अलग अलग होते हैं, जिससे इसका सही समय पर निदान करना कठिन हो जाता है। बहनों, विश्व ल्यूपस दिवस का उद्देश्य लोगों में इस बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाना, समय पर पहचान और सही इलाज के महत्व को समझना है। ल्यूपस के मरीजों को शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक सहयोग की भी आवश्यकता होती है। समय पर पहचान और उचित इलाज से ल्यूपस को नियंत्रित किया जा सकता है। स्वस्थ जीवन शैली, नियमित जांच और डॉक्टर की सलाह का पालन करने से मरीज बेहतर जीवन जी सकते हैं। ल्यूपस हो जाने पर खाने पीने का सही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह बीमारी शरीर में इम्यून सिस्टम और सूजन से जुड़ी होती है। सही डाइट लक्षणों को नियंत्रित करने और शरीर को मजबूत रखने में मदद करती है। सूजन कम करने के लिए खाद्य पदार्थ जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां, फल जिनमें सेब, संतरा, पपीता, बेरी, टमाटर, गाजर, शिमला मिर्च खाने से सूजन में आराम मिलता है। अखरोट, अलसी, चिया सीड्स ये दर्द और सूजन दोनों को कम करते हैं। प्रोटीन युक्त भोजन जैसे राजमा, दालें, चना, पनीर, दूध, दही, अंडा यदि आप खाते हैं तो, साबुत अनाज और सुबह और शाम की हल्की धूप, जिससे आपके शरीर को विटामिन डी मिलता है, ल्यूपस में काफी लाभकारी होती है। बहुत ज्यादा नमक, जंक फूड, मिठाइयां, तला भुना खाना नहीं खाना चाहिए और जैसा आपकी डॉक्टर सलाह दे वैसा ही करें, क्योंकि इसमें सभी मरीजों के लक्षण अलग होते हैं।

और जैसा आपकी डॉक्टर सलाह दे वैसा ही करें। बहनों, गर्मियों में सत्तू यानी भुने चने का आटा बेहद फायदेमंद माना जाता है। यह देसी सुपर फूड न सिर्फ शरीर को ठंडक देता है बल्कि ऊर्जा भी बनाए रखता है। फाइबर ज्यादा होने से पेट साफ रहता है और कब्ज नहीं होती। पेट भरा हुआ महसूस होता है जिससे ज्यादा खाने की इच्छा कम होती है और आपका वजन कंट्रोल में रहता है। नमक व नींबू के साथ लेने से शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट संतुलित रहते हैं जिससे डिहाइड्रेशन से बचाव होता है। यह धीरे धीरे ऊर्जा रिलीज करता है जिससे शुगर लेवल स्थिर रहता है। सत्तू के इतने फायदे हैं तो चलिए खाना खजाना में बनाते हैं सत्तू का मीठा शरबत और नमकीन शरबत। मीठे शरबत बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 4-5 चम्मच सत्तू, शक्कर स्वाद अनुसार जितना मीठा आप लेना चाहें, एक चुटकी नमक, नींबू का रस 2 बड़े चम्मच, ठंडा पानी 1 गिलास। सभी चीजों को एक कटोरे में अच्छे से मिला लें। अब इसे एक ग्लास में सर्व करें जिसमें कि आप कुछ बर्फ के आइस क्यूब्स डाल दें। ठंडा ठंडा पीने पर काफी अच्छा लगता है। बहनों, यह तो था मीठा शरबत। इसी तरह नमकीन शरबत बनाने के लिए हमें चाहिए एक बड़ा ग्लास ठंडा पानी, 2-4 चम्मच सत्तू, बारीक कटी प्याज 2 चम्मच, हरा धनिया बारीक कटा हुआ 1 चम्मच, हरी मिर्च यदि आप बच्चों के लिए डाल रहे हैं तो इसे अवॉइड करें और यदि आपको पसंद है तो 1/4 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च, भुना जीरा 1/4 चम्मच, काला नमक सादा नमक स्वाद अनुसार मिलाकर अच्छे से मिक्स करें। एक नींबू का रस निचोड़ दें, बर्फ डालें और ठंडा ठंडा सर्व करें। इसे आप गर्मियों में काम पर जाते समय भी पी सकते हैं। इससे भूख भी नहीं लगेगी और आप पूरे दिन रिफ्रेश भी रहेंगे। बहनों, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। अपनी कार्यक्रम सखी मोनिका चतुर्वेदी को दें इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।
1: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।

अरमा के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए लोक संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है। कलाकार है मोहन सिंह कुशवाहा। आइए सुनते हैं इनसे लोकगीत।

लोक संगीत अभी आप सुन रहे थे। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है। कलाकार हैं वीरेंद्र कुमार मैथिल। सुनते हैं इसे ये गजल।

0: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी श्योपुर की प्रस्तुति था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, वक्त है छोटे से अंतराल का।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।

पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: विचार अब हर घर तक पहुंचेंगे बार बार, बढ़ेंगे ग्राहक, तरक्की होगी कमाल। विज्ञापन देने का सही पता आकाशवाणी भोपाल। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। पहला गीत विशाल मिश्रा और राहुल की आवाजों में है। फिल्म का नाम आर आर आर।

सुनिधि चौहान की आवाज में गाये धूम फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में भागीदारी की। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका की प्रशंसा की। उन्होंने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवाओं को रोजगार और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने की अपील की।
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा, जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि और इस प्रकार से काम करने वाली अन्य संस्थाएं भी, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज गुना जिले को विकास की बड़ी सौगात देंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव जिले में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को नई गति देने के उद्देश्य से विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण करेंगे। डॉक्टर यादव 1059 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होने वाली अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री का शिलान्यास और 130 करोड़ रुपए की लागत के 144 विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन व लोकार्पण करेंगे। प्रदेश में कल तक 9,78,000 किसानों से 60,70,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि टोल पर्ची बनाने का समय शाम 6 बजे से बढ़ाकर रात 10 बजे तक तथा देयक जारी करने का समय रात 12 बजे तक का कर दिया गया है। गेहूं का उपार्जन सप्ताह में 6 दिन सोमवार से शनिवार तक किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने 24 आम उत्पादक किसानों को 11,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। इंदौर के ग्रामीण हाट बाजार परिसर में मराठी सोशल ग्रुप द्वारा आयोजित 3 दिवसीय मैंगो यात्रा में कल मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन किसानों को सीधे उपभोक्ताओं से जोड़ते हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा में मामा कोचिंग का शुभारंभ करेंगे। ये पहल क्षेत्र के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर और निःशुल्क तैयारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। इस कोचिंग के माध्यम से विद्यार्थियों को एमपीपीएससी, बैंकिंग, एसएससी, डीआरडीओ और फॉरेस्ट सर्विस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी। आईपीएल क्रिकेट के प्लेऑफ में आज

मैच होंगे। पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच चेन्नई में होगा, वहीं दूसरा मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच रायपुर में खेला जाएगा। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा के शंकरपुनिया क्षेत्र में 35 लाख की लागत से क्षतिग्रस्त रिटर्निंग वॉल का नगर पालिका परिषद ने निर्माण शुरू करवाया है। शिवपुरी कलेक्टर ने ग्राम पोंगरा और राजगढ़ के उप स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण कर आशा कार्यकर्ताओं और सीएचओ के से सेवाओं की जानकारी ली। और रायसेन में जनगणना 2027 के हाउस लिस्टिंग में मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल कर ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश अब दोपहर समाचार दिल्ली से।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने, 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंता बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया, सरकार बनाने का दावा पेश किया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
2: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
2: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
1: प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। आज बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए का शासन अब 21 राज्यों में है, जहां लोक कल्याण तथा देश की समृद्धि के लिए काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
2: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी।

0: बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
1: तमिलक वेत्री कड़गम टीवीके पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: सी जोसेफ विजय तमिलनाटु முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
1: श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इनमें के जी अरुणराज, आधव अर्जुन, एन आनंद, सिल्वी एस कीर्ताना और डॉक्टर टी के प्रभु शामिल हैं। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई फाइलों को मंजूरी भी दी। इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़ी फाइलें शामिल हैं। राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉ हिमंत बिस्वा शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि एनडीए का नेता चुना जाने के बाद श्री शर्मा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की।
3: आज सुबह गुवाहाटी में आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक में भाजपा के 8 विधायकों ने, जिनमें रंजीत कुमार दास, विश्वजीत दोईमरी और अजंता नियोग शामिल है, डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा के नाम का प्रस्ताव नेता पद के लिए रखा। बैठक में उपस्थित अन्य सभी विधायकों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके बाद एजीपी और बीपीएफ के सभी विधायकों के साथ हुई संयुक्त बैठक में डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा को सर्वसम्मति से एनडीए का नेता स्वीकार किया गया। इन औपचारिक प्रस्तावों के बाद भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा ने आधिकारिक रूप से डॉक्टर शर्मा को भाजपा और एनडीए का नेता घोषित किया। निर्वाचित होने के बाद डॉक्टर शर्मा ने आज दोपहर को लोकभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की। 102 विधायकों के हस्ताक्षर प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर शर्मा ने नई सरकार गठन का औपचारिक दावा पेश किया। एनडीए सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान में आयोजित होगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र हैं।
4: 90 मीटर ऊंची क्रेन की सहायता से एक विशाल धार्मिक कुंभ को मंदिर के शिखर तक पहुंचाया जाएगा, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र जलाभिषेक अनुष्ठान संपन्न होगा। सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के विशेष अवसर पर भारतीय वायुसेना भी प्रभास पाटन की पावन धरती पर रोमांचक हवाई करतब प्रस्तुत करेगी, जिसमें हवा से हवा और जमीन से हवा में समन्वित उड़ान प्रदर्शन दिखाई जाएंगे। आज सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने एयर शो के लिए हवाई निरीक्षण और रिहर्सल किया, जिससे आसमान में मनमोहक दृश्य देखने को मिले। आज हेलीकॉप्टर से मंदिर के शिखर पर पुष्प की गई। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए। आज तिरुपति में संवाददाताओं से चर्चा में उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, पुद्दुचेरी और तमिलनाडु में शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 दिन के तिरुपति दौरे पर हैं। नागालैंड

0: सरकार ने गाड़ियों पर ऐसे नारों, स्टिकर, संकेतकों और पहचान चिन्हों के उपयोग पर पाबंदी लगा दी है जो धर्म आधारित है, गैर सरकारी संगठनों से जुड़े हैं और गैर कानूनी है। ये प्रतिबंध निजी और सार्वजनिक वाहनों पर लागू होगा। 30 अप्रैल को जारी अधिसूचना में वाहन मालिकों से कहा गया है कि वे अधिसूचना जारी होने के 45 दिन के भीतर इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का यह शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गुरुग्राम की धन शोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर जीएसटी के लेनदेन में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। अरोड़ा को उनके आवास, उनसे जुड़ी संस्थाओं और हैम्पटन स्कॉर्ड रियल्टी लिमिटेड के एक कार्यालय सहित उनके 4 परिसरों की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ युद्ध अब समाप्ति की ओर है। उन्होंने पश्चिम एशिया संघर्ष के भी जल्द समाधान की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि तनाव और बढ़ता है तो सभी पक्षों को भारी नुकसान होगा। वर्ष 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों के साथ पहले से खराब रूस के संबंधों में और कड़वाहट आ गई है। यूरोपीय नेताओं से वार्ता के बारे में पूछे जाने पर श्री पुतिन ने कहा कि ऐसी किसी भी बातचीत के लिए जर्मनी के पूर्व चांसलर गेरहार्ड श्रोएडर उनके पसंदीदा नेता हैं। श्री पुतिन ने यह भी कहा कि स्थायी शांति समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। इस बीच दोनों देश रूस के वार्षिक विजय दिवस परेड के दौरान 3 दिन के संघर्ष विराम पर सहमत हुए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कल कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अस्सानी से मुलाकात की। दोनों पक्षों के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत पर चर्चा हुई। श्री अस्सानी ने एक दिन पहले वाशिंगटन में उपराष्ट्रपति जेडिवेन से भी मुलाकात की थी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के बीच हुई वार्ता का पहला दौर असफल रहा था। वार्ता का दूसरा दौर नहीं हो पाया था। कतर भी अमरीकी अधिकारियों के साथ मध्यस्थता के लिए काम कर रहा है। अमरीका ने ईरान के साथ बातचीत में कतर को विशेष रूप से प्रभावी बताया है। आज विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस ऑटो इम्यून रोग ल्यूपस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ल्यूपस का कोई ज्ञात इलाज नहीं है और ये रोजमर्रा के जीवन पर असर डालने वाली बीमारी है। और अब खेल खबरों के साथ है प्रशांत कुमार।
1: चीन के शंघाई में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। दूसरे चरण में आज दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहोत की टिकड़ी ने मेजबान और खिताब के प्रबल दावेदार चीन को शूट ऑफ में हराया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में रिकॉर्ड 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है।
0: हंता वायरस से संक्रमित रहा जहाज स्पेन के टेनरिफ द्वीप पहुंच गया है। डच ध्वज वाला एमवी होंडियस आज स्पेन के ग्रेनाडेला बंदरगाह पर पहुंचा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूरोपीय संघ द्वारा स्पेन से यात्रियों को निकालने का अनुरोध किए जाने के बाद यह जहाज 6 मई को टेनरिफ के लिए रवाना हुआ था। इस जहाज पर 4 मई को हंता वायरस के 3 मामलों की पुष्टि हुई थी। 8 मई को 3 मौतों सहित कुल 8 मामले सामने आए। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 73वां संस्करण आज सुबह दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसमें रक्षा बलों के जवान भी नागरिकों के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम में 800 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। और अब जानकारी मौसम की। गुजरात और राजस्थान में कल तक लू चलने का अनुमान है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी बनी रह सकती है। अगले 7 दिन में उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिक्काल में मूसलाधार

0: वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिन उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, लक्षद्वीप, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के हिमालय से सटे इलाकों में गरज चमक का अंदेशा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंत बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए बच्चों का कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR, प्रसार भारती और मीडियम वेब पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है बच्चों का कार्यक्रम बाल सभा।

शब्दों को तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन खामोशी को सिर्फ माँ पहचानती है। इसी प्रेरक विचार के साथ बाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम बाल सभा में। कार्यक्रम का ये अंक लेकर आज एक बार फिर आपके साथ हूँ मैं, आपकी मधु दीदी। बाल साथियों, आज बेहद खास दिन है क्योंकि आज है मदर्स डे यानी मातृ दिवस, जिसे हम सभी मई माह के दूसरे रविवार को मनाते हैं। सबसे पहले तो हमारे सभी बाल साथियों को मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाल मित्रों, माँ एक ऐसा शब्द जिसमें समस्त संसार का बोध होता है। ऐसा लगता है जैसे इस एक शब्द से ही हर दुख दर्द का अंत हो जाता है। माँ की ममता को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, उसे तो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। माँ महज एक शब्द नहीं है, बल्कि एक विश्वास, एक एहसास और एक पवित्र बंधन है। माँ शब्द में असीम प्यार छुपा है। ये अपने आप में पूर्ण है, जिसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। माँ भगवान का बनाया गया सबसे अनमोल और खूबसूरत तोहफा है। बाल साथियों, माँ अपने बच्चों के जीवन में अहम भूमिका निभाती है। वो अपने बच्चों के पूरे जीवन को आकार देती है। एक माँ के पास ढेर सारी जिम्मेदारियां होती हैं, वो उसको लगातार बिना रुके बिना थके निभाती है, एक बच्चे के जन्म से लेकर अच्छा इंसान बनने तक। खासतौर से बाल मित्रों, माँ के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर उनके दिए गए अथाह प्यार और स्नेह के लिए धन्यवाद देने का माध्यम है आज का ये दिन। जितना खास है ये दिन, उतनी ही रोचक है इस दिन को मनाने की शुरुआत। अलग अलग देशों में इस दिन को मनाने की अलग अलग है कहानी। आज मदर्स डे बाल साथियों 46 देशों में मनाया जाता है। इसे मनाने की शुरुआत अमेरिका से हुई। पहला मदर्स डे वर्ष 1908 में अमेरिका के वर्जीनिया में मनाया गया। अमेरिकन एक्टिविस्ट एना जार्विस ने मदर्स डे की शुरुआत की थी। इसके बाद कई देशों में मई माह के दूसरे रविवार को इसे मनाया जाने लगा। मैंने तो पुराने समय में ग्रीस में माँ को सम्मान देने के लिए पूजा का रिवाज था। ईसाई इस दिन को वर्जिन मैरी के सम्मान के रूप में मनाते हैं। इस दिन को फूल और उपहार देकर मनाया जाता है। यूके में और यूरोप के कुछ भागों में इसे ईसाई कैलेंडर के लेंट महीने के छठे हफ्ते में मनाया जाता है। इस दिन को मदरिंग डे के नाम से मनाते हैं। तो वही बाल मित्रों, चीन में मदर्स डे के दिन माँ को उपहार में गुलनार का फूल दिया जाता है। वियतनाम में मदर्स डे को लेबुलेन कहा जाता है और ये चंद्रनामा के 7वें महीने के 15वें दिन मनाया जाता है। जापान में बाल साथियों, इस दिन अपनी माँ को गुलनार और गुलाब का फूल देने का रिवाज है। और थाईलैंड में मदर्स डे थाईलैंड की महारानी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। बल्कि मदर्स डे तो हर बच्चे के लिए साल का सबसे यादगार और खुशी का दिन होता है। माँ से तो हम सभी उपहार लेते हैं, तो क्यों ना इस मदर्स डे पर हम उन्हें उपहार देकर इस दिन को बनाएं खास। बाल साथियों, जैसे आपको अपनी माँ प्यारी है, वैसे ही आपकी माँ को उनकी माँ, तो क्यों ना इस बार मदर्स डे पर उन्हें गिफ्ट की जाए उनकी बचपन की यादें। आप उन्हें उनकी बचपन की तस्वीरों का एक कोलाज बनाकर दे सकते हैं, या एक छोटी सी फोटो एल्बम, या फिर एक वीडियो। इसके अलावा बाल मित्रों, आजकल बाजार में मम्मियों के लिए गिफ्ट आइटम भी मिल जाते हैं, जैसे मॉम कैलेंडर, मॉम फोटो फ्रेम, मॉम मेकअप किट और मॉम क्वालिटी चार्ट भी। और इसके अलावा सबसे खास है मॉम कन्फेशन बॉक्स, जिसमें आप अपनी कोई गलती या कोई ऐसी बात लिखकर शेयर कर सकते हैं जो अभी तक न की हो। इस दुनिया में बाल मित्रों, माँ से प्यारा कोई नहीं। हमें इस संसार में लाने वाली माँ का कर्ज हम कभी नहीं उतार सकते, लेकिन उन्हें वो खुशियाँ जरूर दे सकते हैं जिसकी वो हकदार है। और मदर्स डे आपको एक बेहतरीन मौका देता है। सोचने वाली बात है बाल मित्रों कि माता के सम्मान का एक दिन नहीं होता। माता का सम्मान तो हमें 365 दिन करना चाहिए, तो क्यों ना इस मदर्स डे पर माँ की आज्ञा का पालन करने और माँ को कष्ट न पहुँचाने का संकल्प लेकर मदर्स डे को सार्थक बनाए और माँ को खास और बहुत खास होने का एहसास कराएं, कुछ इस गीत की तरह।

0: बाल साथियों, अभी आपने सुना राजा और रंक फिल्म का ये प्यारा सा गीत लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी के गीत को संगीत से सवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। हर मुसीबत में जो साथ में खड़ा एक दीवार होता है, हमारी ताकत हमारी जान वही परिवार होता है। ये खून के रिश्ते बड़े मजबूत होते हैं, किस्मत वालों के नसीबों में ऐसा प्यार होता है। बाल मित्रों, हम आगामी 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाएंगे। कहते हैं कि परिवार से बड़ा कोई धन नहीं होता, परिवार के बिना तो जीवन की कल्पना करना कठिन है। एक अच्छा परिवार बच्चे के चरित्र निर्माण से लेकर व्यक्ति की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहने को तो बाल साथियों, प्राणी जगत में परिवार एक छोटी इकाई है, लेकिन इसकी मजबूती हमें बड़ी से बड़ी मुसीबत से बचाने में कारगर है। परिवार के बिना व्यक्ति का अस्तित्व नहीं है। लोगों से परिवार बनता है और परिवार से राष्ट्र और राष्ट्र से ही विश्व बनता है। परिवार दिवस मनाने की शुरुआत बाल मित्रों सबसे पहले वर्ष 1997 में हुई। ये दिन परिवार के लोगों के बीच स्नेह बढ़ाने का दिन था। ये दिन लोगों के बीच एक संयुक्त परिवार की अहमियत को दर्शाता है कि संयुक्त परिवार कितना जरूरी है। किसी भी बच्चे का पहला विद्यालय उसका घर होता है, यानी कि उसके पहले शिक्षक माता पिता और घर के सदस्य होते हैं। बाल साथियों, आज की दौड़ती भागती जिंदगी में हम अपने और अपने परिवार के लिए कम समय निकाल पाते हैं, इसलिए परिवार दिवस का दिन पूरी तरह से परिवार को समर्पित किया गया है। इस दिन को मनाने की सबसे बड़ी वजह पूरी दुनिया में शांति की स्थापना करना है। इस दिन सभी लोग अपने परिवार के साथ बैठते हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं और एक अच्छे समाज के निर्माण करने में अपना अमूल्य सहयोग देते हैं। बाल मित्रों, परिवार का हमारे जीवन में एक विशेष स्थान है। हमारे जीवन के उतार चढ़ाव में परिवार वाले ही चट्टान की तरह खड़े होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि परिवार किसी भी इंसान के लिए उसकी रीढ़ की हड्डी की तरह होता है, जो अच्छे बुरे वक्त में उसके साथ खड़ा होता है। बाल साथियों, भले ही दुनिया के लिए आप एक व्यक्ति हैं, लेकिन परिवार के लिए आप पूरी दुनिया हैं। इसलिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। इसी प्यारी सी चर्चा के बाद बाल साथियों, अब आपको सुनवाते हैं वार्ता बच्चों की जिद को कैसे पूरा करें। वार्ताकार हैं सरिता चौरसिया।
1: बच्चों का नखरा दिखाना या कोई जिद पकड़ना आम बात है। आमतौर पर यह सब 2 साल की उम्र से पहले शुरू होता है, जब बच्चे दूसरों के साथ बातचीत करने के नए नए और अलग तरीके आजमाते हैं, चाहते हैं कि वे जो भी मांगे उन्हें मिल जाए। 4 साल की उम्र तक इसमें और इजाफा होता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आप कुछ खास कदम उठाकर इस मुश्किल से बच सकते हैं। माता पिता सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि बच्चे की जिद और मांग पर अपना संयम छोड़ बैठते हैं, जो गलत तरीका है। दरअसल बच्चे को समझाने के लिए संयम के साथ असर डालना बहुत जरूरी है, खास तौर से जब वह नखरी दिखा रहा हो। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो उनसे समझने की उम्मीद भी नहीं कर सकते। जब कभी ऐसा हो तो गहरी सांस लीजिए और प्रतिक्रिया देने से पहले विचार कर लीजिए। बच्चों की जिद और नखरे के पीछे कई वजह हो सकती है और कारण जानकर कि आप उस पर सही तरह से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अगर बच्चों के चिड़चिड़ेपन की वजह भूख या सोने की इच्छा है तो उसकी जरूरत पूरी की जानी चाहिए। अगर बच्चा नजरअंदाज होने जैसा महसूस कर रहा है तो यह आपका कर्तव्य है कि उसकी शंका को दूर कर उसे पर्याप्त वक्त दें। अगर माता पिता जल्दी हार मानकर जिद या नखरे दिखाने पर बच्चों की हर फरमाइश को पूरी करेंगे तो भविष्य में यह उनके लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। एक बार कामयाब होने पर बच्चे यही रुख आगे भी जारी रखेंगे और हर जायज नाजायज बात को

0: छुपाने के लिए इन्हीं तौर तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। अगर बच्चा रोने धोने पर भी उतर आए तो उसे चुप कराएं, लेकिन जिद को स्वीकार ना करें। कई बार बच्चे चिड़चिड़ेपन या जिद या नखरों का इजहार करते वक्त बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं और शारीरिक हाव-भाव के जरिए अपने गंभीरता का एहसास कराना चाहते हैं। ऐसे में यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि उन्हें किसी तरह से चोट ना आए, ना उन्हें चोट पहुंचे। उन पर हाथ उठाने से भी बचना चाहिए। जिद पकड़ने के समय अगर आप बच्चे को कुछ समझाने की कोशिश करेंगे तो कोई खास कामयाबी हाथ नहीं आएगी। जब इसका दौर बीत जाए तो बच्चे को पास बैठाकर आराम से समझाएं कि उसका व्यवहार ठीक नहीं है। साथ ही यह भरोसा भी दिलाएं कि वह आपके लिए बहुत अहमियत रखता है। बचपन सीखने सिखाने के लिहाज से सबसे अच्छा समय होता है। इस वक्त बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी पेरेंट्स की होती है, लेकिन इस दौरान कई पेरेंट्स ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनकी छाप बच्चों पर जीवन भर रहती है। अधिकतर देखा गया है कि पेरेंट्स अच्छी और बुरी सलाह के बीच का अंतर करना ही नहीं चाहते हैं। इसलिए बच्चों की परवरिश के समय कुछ बातों पर ध्यान देना बेहद जरूरी होता है। बच्चे गलती करें तो उन्हें सजा ना दें। यदि आप पेरेंट्स हैं और आपका बच्चा कोई गलती करता है तो उसे किसी तरह की सजा देने के बारे में ना सोचें। एक अच्छे पेरेंट्स बनने के लिए बच्चों पर भरोसा करना बहुत जरूरी होता है। बच्चों को वक्त वक्त पर यह एहसास कराएं कि वे बहुत जरूरी हैं और दूसरे लोग उन पर भरोसा करते हैं। हमें बच्चों को प्यार और सुरक्षा का एहसास भी कराना चाहिए। बुरा मत मानिएगा, बच्चा है। ऐसा कहकर क्या आपने भी कभी अपने बच्चों की गलतियों पर पर्दा डाला है? अगर कोई आपके बच्चे की शिकायत लेकर घर पहुंचा तो क्या आपने भी गलती होने के बावजूद बच्चे की तरफदारी की है? क्या आप भी अपने बच्चों की हर जिद को पूरी करने की कोशिश करते हैं? ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि आजकल बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा ही करते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि ऐसा करने से उनके बच्चे जिद्दी और इनडिसिप्लिन हो जाएंगे। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के अनुसार भी आजकल ज्यादातर माता पिता अपने बच्चों के दोस्त बनने के चक्कर में अनुशासन के साथ साथ समझौता कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि कई माता पिता अपने बच्चों के व्यवहार और बदतमीजी से परेशान होकर उनके पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, मगर चिंता की बात तो ये है कि आजकल के बच्चों को काउंसलिंग की जरूरत पड़ क्यों रही है? इसके पीछे का कारण क्या आपकी परवरिश गलत दिशा में जा रही है? अगर आपको भी लग रहा है कि कूल पेरेंट्स बनने का ट्रेंड आपके बच्चों की परवरिश को गलत दिशा में लेके जा रहा है तो आपको सजग होने की जरूरत है। यदि वह कभी कुछ गलत करता है और आप उसे आंख दिखाते हैं तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसने कोई गलती की है, क्योंकि माता पिता ही सिखा सकते हैं सही गलत का फर्क। एक दौर था जब पापा घर में आते थे, बात करते थे और उनके आने के आहट सुनते ही बच्चे किताब कॉपी खोलकर बैठ जाते थे। इसे आज के समय में डर का नाम दिया जाएगा, मगर उस समय में इसे रिस्पेक्ट करना कहा जाता था। बच्चों के मन में आपके लिए प्यार होना चाहिए, डर नहीं, ताकि वो अपनी हर बात आपसे कह सकें। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि आप बच्चों को प्यार से सही गलत का फर्क सिखाएं। अगर आप अपने बच्चों के दोस्त बन जाएंगे तो आपके लिए उन्हें इस फर्क को समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बच्चों को सही समय पर सही गलत का फर्क सिखाना चाहिए। आज हमारे बच्चों को मोबाइल से ज्यादा आपके समय की जरूरत है। आज के माता पिता अपने काम को लेकर इतने व्यस्त हो गए हैं कि अगर उनका बच्चा छोटा है और वह रो रहा होता है तो पेरेंट्स मोबाइल पर गाने या बच्चों का कोई कार्टून शो लगाकर फोन उसे थमा देते हैं और खुद अपने काम को पूरा करने में लग जाते हैं। यहाँ तक कि बच्चे के थोड़े बड़े होने पर भी माता पिता बड़े गर्व से उनकी तारीफ करते हुए बताते हैं कि उनका बच्चा बहुत होशियार है, वो अभी से मोबाइल को बहुत अच्छी तरह से ऑपरेट कर लेता है। लेकिन वही बच्चा अगर बड़ा होकर किसी गलत साइट पर जाता है या मोबाइल के जरिए कुछ गलत करता है तो पेरेंट्स समझ नहीं पाते कि उनका बच्चा गलत राह पर कैसे चला गया। इसलिए माता पिता को समझना चाहिए कि बच्चों को मोबाइल से ज्यादा उनके समय की जरूरत है, जिस समय वे उनके साथ खेल सकें, बातें कर सकें। पेरेंट्स को खुद भी बच्चों के सामने मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, साथ ही में बच्चों को रिस्पेक्ट करना सिखाना चाहिए। बच्चों की परवरिश में घर के माहौल का बड़ा योगदान रहता है। अगर आपका बच्चा किसी से भी बदतमीजी कर रहा है तो उसे तुरंत टोकें और जरूरत पड़ने पर उसे डांट भी लगाएं, ताकि दोबारा वह ऐसी गलती ना दोहराए। कई बार हम बच्चों के सामने ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसके बारे में हम उन्हें बताते हैं कि ये गलत है, जैसे कि हम उन्हें सिखाते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए और खुद भी उनको झूठ बोलने को कह देते हैं कि अंकल को बोल दो कि पापा घर पर नहीं है। फिर हम बच्चों को सिखाते हैं कि फोन कम चलाना चाहिए, टीवी कम देखना चाहिए और खुद भी घंटों पर फोन पे बातें करते हैं और टीवी देखते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने बच्चों को उनके सामने गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए और किसी भी तरह उनकी जिद को बढ़ावा नहीं देना चाहिए।
1: बरसातियों, अभी आपने सुनी वार्ता बच्चों की जिद को कैसे पूरा करें। वार्ताकार थी सरिता चौरसिया। बरसातियों, बाल मन से क्रम के अंतर्गत आज हम आपको मिलवाते हैं हमारे स्टूडियो में आए हुए नन्हे मेहमान से। उनसे बात कर रहे हैं

0: राजेंद्र अहिरवार।
1: नमस्कार बाल मित्रों, आज बाल मन से क्रम में एक और हमारे बीच नन्हे मेहमान हैं, हम इनसे मिलते हैं। क्या नाम है आपका?
2: मेरा नाम दीपराज मिश्रा है।
1: दीपराज मिश्रा, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं?
2: मेरे को मैथ्स और हिंदी अच्छा लगता है।
1: अच्छा, मैथ्स में क्या क्या पढ़ते हो आप?
2: मैथ्स में फ्रैक्शन, डेसिमल, मल्टीप्लाई, एडिशन।
1: दीपराज, आपको और क्या शौक है?
2: मेरे को ड्राइंग करने का शौक है।
1: ड्राइंग करते हैं, तो बताओ ड्राइंग में क्या क्या कर लेते हो दीपराज?
2: मैं स्केचेस बना लेता हूँ।
1: अच्छा अच्छा, कैसे कैसे स्केचेस बनाते हो?
2: जैसे कि एनीमे के और कार्टून्स वगैरह के।
1: अच्छा, अरे भाई बहुत बढ़िया है, देखिए आप इतनी छोटी सी उम्र में स्केचेस भी बना लेते हो। कुछ और डायग्राम वगैरह बनाते हो? कुछ और बनाते हो, पेंटिंग वगैरह बना लेते हो? और आज हमारे स्टूडियो में देखो आप आए हुए हो, तो कैसा लग रहा है आपको?
2: बहुत अच्छा लग रहा है।
1: चलो भाई, हमें भी अच्छा लग रहा है कि आप आए हो और आप कुछ हमें सुनाओगे। तो क्या सुनाने वाले हो आज?
2: मैं एक कविता सुनाने जा रहा हूँ।
1: कविता सुनाएंगे, पोएम भी सुना रहे हैं, चलो सुनाइए।
2: होली आई, होली आई, रंग बिरंगी।

0: मना लेते हो। और आज हमारे स्टूडियो में देखो आप आए हुए हो, तो कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत अच्छा लग रहा है।
0: चलो भाई, हमें भी अच्छा लग रहा है कि आप आए हो और आप कुछ हमें सुनाओगे। तो क्या सुनाने वाले हो आज?
1: मैं एक कविता सुनाने जा रहा हूँ।
0: कविता सुनाएंगे, पोएम भी सुना रहे हैं, चलो सुनाइए।
1: होली आई रंग बिरंगी होली आई, धूम मचाती होली आई, घर घर में खुशियाँ लाई, बच्चों की ये टोली आई, हाथ में पिचकारी लाई, रंग गुलाल उड़ाती आई, होली आई होली आई।
0: बहुत अच्छी पोएम आपने सुनाई है दीपराज, और क्या सुनाने वाले हैं?
1: और मैं गोलू मोलू के ऊपर कविता सुनाने जा रहा हूं।
0: एक और कविता गोलू मोलू पर, चलिए सुनाइए।
1: गोलू मोलू थे दो भाई, रसगुल्ले पर हुई लड़ाई, गोलू बोला मैं भी लूंगा, मोलू बोला मैं भी लूंगा, झगड़ा सुनकर मम्मी आई, दोनों दो चबट लगाई, आधा तू ले गोलू बेटा, आधा तू ले मोलू बेटा, ऐसा झगड़ा कभी न करना, दोनों मिलकर प्रेम से रहना।
0: बहुत अच्छी पोएम आपने ये सुनाई है गोलू मोलू की, और इसका संदेश देखो हमें यही मिला दीपराज के, हम सबको मिलके रहना है, प्रेम से रहना है। तो आप हमें ये बताइए कि बड़े होकर क्या बनना चाहोगे दीपराज?
1: मैं बड़े होकर आईएएस ऑफिसर बनना चाहूंगा।
0: बिल्कुल भाई, हमारे जितने भी बाल मित्र आते हैं वो सभी आईएएस ही बनना चाह रहे हैं, और हम आपसे भी यही अपेक्षा करेंगे कि खूब आगे पढ़ो। कुछ और आप सुनाना चाहोगे?
1: हाँ।
0: कौन सी पोएम सुनाएंगे अब आप?
1: हुआ सवेरा।
0: हुआ सवेरा, चलो सुनाइए।
1: हुआ सवेरा चिड़िया बोली, बच्चों ने तब आंखें खोली, अच्छे बच्चे मंजन करके कुल्ला करते, कुल्ला करके मुंह को धोते, मुंह धो करके रोज नहाते, रोज नहाकर खाना खाते, खाना खाकर पढ़ने जाते।
0: बहुत अच्छी पोएम आपने सुनाई है, देखिए कि हमें अच्छे बच्चे बनना है और रोज स्कूल जाना है और खूब मन लगाकर पढ़ाई करना है। दीपराज देखो कितना अच्छा आपने बताया, पोएम भी सुनाई और अपनी ड्रीम के बारे में बताया, खूब आगे बढ़ो, आप हमारी ऐसे ही शुभकामनाएं हैं। और आज आप बाल मन से क्रम में हमारे बीच आए, बच्चों को इतनी अच्छी पोएम सुनाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीपराज।
1: थैंक यू सर।
2: बाल साथियों, अभी आपने बाल मन से क्रम के अंतर्गत सुना हमारे स्टूडियो में आए हुए नन्हे मेहमान से की गई बातचीत, उनसे बात कर रहे थे राजेंद्र अहिरवार। बाल मित्रों, सभी के लिए सही तरीके से जीवन जीना, या यूं कहें कि एक खुशहाल जीवन जीना बहुत जरूरी है, और ये तभी संभव है जब हम इसमें एक अनुशासन बनाए रखें। अनुशासन शब्द का अर्थ है नियमों के पीछे चलना, वो भी समय परिस्थिति और स्थान के अनुरूप। ये एक ओर तो हमारा जीवन सरल और सही करता है, तो वही दूसरी ओर जीवन का आधार भी हो सकता है। एक तरह से ये कहा जा सकता है बाल साथियों कि मानव जीवन के लिए नियम अति महत्वपूर्ण है, और इसका पालन करना एक व्यक्ति के लिए जरूरी भी है। खासतौर से आज के आधुनिक समाज में अनुशासन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस व्यस्तता भरे समय में यदि हम अनुशासन भरी दिनचर्या का पालन न करें तो हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। बाल साथियों, हम अपने दैनिक जीवन में सभी प्राकृतिक संसाधनों में वास्तविक अनुशासन के उदाहरण देख सकते हैं। सूरज और चांद का सही समय पर उगना और अस्त होना, सुबह और शाम या मौसमों का अपने सही समय पर आना और जाना, नदियां हमेशा बहती हैं, माता पिता का हमें प्यार देना, शिक्षकों का शिक्षा देना, तो फिर क्यों हम अपने जीवन में पीछे हैं बिना परेशानियों का सामना किए। आगे बढ़ने के लिए हमें भी अपने जीवन में सभी जरूरी डिसिप्लिन का पालन करना चाहिए। बाल मित्रों, आप बच्चों का गलतियां करना, सीमाओं को तोड़ना स्वाभाविक है। इसी तरह तो धीरे धीरे आप आत्मनिर्भरता सीखते हैं और दुनिया के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रत्येक माता पिता ये जानते हैं कि छोटे छोटे बच्चों के लिए सीमाएं तय करना उनकी सुरक्षा और सीखने में मदद करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बाल मित्रों, नियम हम सभी को एक सीमा दायरे में रहने का पाठ पढ़ाता है। इसके लिए माता पिता को कुछ नियम बना लेना चाहिए और खुद भी उनका पालन करना चाहिए। जब बच्चे आपको नियमों का पालन करते देखेंगे तो वे भी आपसे यही सीखेंगे। बाल साथियों, अनुशासन का अर्थ ये भी है कि अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना। बच्चों को सिखाएं कि वे हर बार अपनी मनमानी न करें, जैसे कि अगर उन्होंने तय किया है कि वे पहले पढ़ेंगे और बाद में खेलेंगे तो उसे पूरा करें। इसके अलावा समय का महत्व समझें। बच्चों को समय का उपयोग कैसे करना है इसे पेरेंट्स ही सिखा सकते हैं। उन्हें स्वयं अपना काम समय पर करना होगा, क्योंकि बच्चे देखकर जल्दी सीखते हैं। बच्चों में भी समय पर हर काम जैसे पढ़ाई, खेल, खाना और आराम करने की आदत डालें। इससे बच्चों में समय की पाबंदी की आदत विकसित होती है। साथ ही अपने बच्चों को बनाएं आभारी। माता पिता को अपने बच्चों में जो आदत कूट कूट कर भरनी चाहिए वो है आभार व्यक्त करना। इससे बच्चे

ये सीखते हैं कि आभार जताना कितना जरूरी है। बच्चों की छोटी छोटी उपलब्धियों की सराहना करें ताकि वे अनुशासन का पालन करते रहें। इससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है और वे अनुशासन के महत्व को समझते हैं। यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है कि बच्चों को हर छोटी छोटी बात पर डांटना उन्हें अनुशासित नहीं बना सकता। बच्चों को डांटने की बजाय प्यार से समझाएं। और बाल मित्रों, बिना अनुशासन के मानव जीवन का कोई भी काम नहीं होता। साथ ही ये सफलता की वो कुंजी है जिसमें ज्ञान का भंडार समाया है। अनुशासन तो वो अच्छी किताबों और अच्छे लोगों की तरह है, जिसे अगर अपना लिया तो समझो जीवन बस एक सफलता का सागर है और आपको सफल होते देख सब यही कह उठेंगे।

बाल साथियों, अभी आपने बूट पॉलिश फिल्म का ये प्यारा सा गीत सुना। मोहम्मद रफी और आशा भोंसले की आवाजों में शैलेंद्र के गीत को संगीत से सवारा था शंकर जयकिशन ने। इसी के साथ बाल साथियों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, और अब चलने का समय हो गया है, तो अनुमति दीजिए अपनी मधु दीदी को।

बच्चे अपना कार्यक्रम बाल सभा सुन रहे थे। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती और मीडियम ऐप पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से।

कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। शाम 5:02 पर युवावाणी कार्यक्रम होगा। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति रहेगा। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं शाम 5:33 पर और शाम 6:00। 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम होगा आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से, जिसमें 7:30 से 8:00 के बीच सुनिएगा सजीव फोन-इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा। विषय रहेगा जायद उद्यानिकी फसलों में पोषण प्रबंधन एवं सामयिक कार्य, विशेषज्ञ डॉक्टर विजय अग्रवाल। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से रात 8:00 सुनिएगा सुर्खियों में। नगर विकास की यह कार्यक्रम रात 8:15 होगा। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी छिंदवाड़ा की प्रस्तुति रहेगा। विषय रहेगा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। कुछ और फिल्में नगमे आपको सुनवाएंगे रात 8:30 और रात 9:30 कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा कार्यक्रम में रात 10:00 सुनेगा विद्वान डी श्रीनिवास का वीणा वादन। यह कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। ये थे आज शाम प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब मीडियम वेव पर हमारा ट्रांसमिशन कुछ देर के लिए बंद होता है। शाम 5:00 से आप हमारे कार्यक्रम मीडियम वेव 188.39 पर पुनः सुन सकेंगे। इस बीच कार्यक्रम डीटीएच पर जारी है।

मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। शाम के 5 बजने हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में सुनिए आकाशवाणी भोपाल से न्यूज हेडलाइंस।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में भागीदारी की। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका प्रशंसनीय है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भाजपा के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दिया गया। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाल लिया है। इससे पहले राज्यपाल ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की। गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। अमृत पर्व पर पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के शिखर का 11 तीर्थस्थलों के जल से अभिषेक किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में कल ध्वज पूजा और महापूजा होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सीहोर जिले के भैरुंदा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पीएम जनधन योजना के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। और आईपीएल में आज का पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच चेन्नई में खेला जा रहा है। दूसरा मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच रायपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। युवा श्रोता सुने कार्यक्रम योग वाणी, योगदान हमारे शिवपुरी के

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके दैनिक कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूँ आपकी दोस्त शिवानी राठौर। दोस्तों, क्रम आज की बात में हम चर्चा करेंगे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह के बारे में। साथ ही हमारा दूसरा विषय रहेगा गर्मियों में रखें स्वास्थ्य की देखभाल। इसके अलावा क्रम जीवनालोक में आज का विषय है खेलकूद और पढ़ाई के बीच तालमेल जरूरी है। दोस्तों, साथ ही आपका मनोरंजन कराएंगे कुछ खूबसूरत गीतों के साथ। साथियों, क्रम आज की बात में हम चर्चा कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह के बारे में। साथियों, संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा सप्ताह एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना और दुर्घटनाओं को कम करना है। हर वर्ष यह सप्ताह विभिन्न विषयों के साथ मनाया जाता है ताकि सड़क पर चलने वाले प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह पैदल यात्री हो, चालक हो या साइकिल सवार, सभी को सुरक्षित व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके। साथियों, आज के समय में सड़क दुर्घटनाएं एक गंभीर समस्या बन चुकी है जिनमें लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं या गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। ऐसे में इस सप्ताह का महत्व और भी बढ़ जाता है। दोस्तों, सड़क सुरक्षा का अर्थ केवल नियमों का पालन करना नहीं है बल्कि यह एक जिम्मेदार नागरिक होने का संकेत भी है। अधिकतर सड़क दुर्घटनाएं लापरवाही, तेज गति, नशे में वाहन चलाना, मोबाइल फोन का उपयोग करना और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने के कारण होती है। यदि लोग थोड़ी सावधानी बरतें और नियमों का पालन करें तो इन दुर्घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सकता है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, जैसे जागरूकता अभियान, रैलियां, कार्यशालाएं, स्कूलों में कार्यक्रम। इन गतिविधियों के माध्यम से लोगों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने, गति सीमा का पालन करने और ट्रैफिक संकेतों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके साथ ही सरकार और प्रशासन भी सड़क सुरक्षा के नियमों को सख्ती से लागू करने पर जोर देते हैं। भारत जैसे देश में जहां सड़क परिवहन बहुत अधिक उपयोगी है, सड़क सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है। यहां प्रतिदिन सैकड़ों दुर्घटनाएं होती हैं जिनका मुख्य कारण नियमों की अनदेखी और जागरूकता की कमी है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा सप्ताह जैसे अभियान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

दोस्तों, युवा वर्ग इस अभियान में विशेष भूमिका निभा सकते हैं। वे न केवल खुद नियमों का पालन करें बल्कि दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। स्कूल और कॉलेज सड़क सुरक्षा शिक्षा को शामिल करने के लिए आवश्यक माने जाते हैं, ताकि बच्चों में शुरू से ही सही आदतें विकसित हो सके। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि सड़क सुरक्षा केवल सरकार या किसी एक संस्था की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। यदि हम सभी मिलकर प्रयास करें और नियमों का पालन करें, तो हम एक सुरक्षित और बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा सप्ताह हमें यही संदेश देता है कि सुरक्षा को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इस प्रकार सड़क सुरक्षा सप्ताह न केवल एक अभियान है, बल्कि यह जीवन को बचाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जिसे हमें गंभीरता से लेना चाहिए। आइए साथियों, अब चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

छोड़ी चलिए

विधि हसीना ओ हमें अपना बना हाथी हरी का बना तू

विषय गर्मियों में रखे स्वास्थ्य की देखभाल पर चर्चा करने का। दोस्तों, गर्मियों का मौसम अपने साथ तेज धूप, उच्च तापमान और कई स्वास्थ्य समस्याएं लेकर आता है। इस मौसम में यदि सही सावधानी न बरती जाए तो शरीर पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए गर्मियों में स्वास्थ्य की देखभाल करना अत्यंत आवश्यक है। सही खान पान, पर्याप्त पानी का सेवन और दिनचर्या में बदलाव करके हम इस मौसम में भी स्वस्थ रह सकते हैं। सबसे पहले, गर्मियों में पानी का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। शरीर से पसीने के रूप में पानी की कमी तेजी से होती है, जिससे डिहाइड्रेशन यानी जल की कमी हो सकती है। इससे बचने के लिए दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। इसके अलावा नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ और फलों का रस जैसे तरल पदार्थ भी शरीर को ठंडा और हाइड्रेट रखने में मदद करते हैं। दोस्तों, गर्मियों में खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तला भुना मसालेदार भोजन कम से कम लेना चाहिए, क्योंकि यह पाचन तंत्र पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं। इसके बजाय हल्का, सुपाच्य और पौष्टिक भोजन लेना चाहिए। हरी सब्जियां, दालें, सलाद का सेवन करने से हमारा स्वास्थ्य सही रहता है। साथ ही भोजन समय पर करना और अधिक देर तक भूखे न रहना भी जरूरी है। दोस्तों, इस मौसम में धूप से बचाव भी अत्यंत आवश्यक होता है। तेज धूप में अधिक देर तक रहने से लू, हीट स्ट्रोक लग सकती है, जो एक गंभीर समस्या बन सकती है। इसलिए दोपहर के समय में, खासकर 12 से 4 के बीच बाहर निकलने से बचना चाहिए। यदि बाहर जाना जरूरी है तो सिर को ढककर रखें, हल्के रंग के ढीले कपड़े पहनें और धूप का चश्मा या छाते का प्रयोग करें। इससे शरीर को धूप के दुष्प्रभाव से बचाया जा सकता है। दोस्तों, साथ ही स्वच्छता का ध्यान भी गर्मियों में बहुत जरूरी है। इस मौसम में बैक्टीरिया, वायरस तेजी से फैलते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए नियमित रूप से स्नान करें, साफ कपड़े पहनें, हाथों को बार बार धोना चाहिए। बाहर का खुला और अस्वच्छ भोजन खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे पेट संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। दोस्तों, गर्मियों में पर्याप्त नींद और आराम भी जरूरी है। अधिक गर्मी होने के कारण शरीर जल्दी थक जाता है, इसलिए दिन भर में थोड़ा विश्राम करना और रात में पर्याप्त नींद लेना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। साथ ही हल्का व्यायाम और योग करना भी शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। दोस्तों, इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। गर्मी के कारण चिड़चिड़ापन और थकान बढ़ सकती है, इसलिए शांत रहें, सकारात्मक सोच रखें और ठंडी जगहों पर समय बिताएं। संगीत सुने, किताबें पढ़ें और परिवार के साथ समय बिताएं, जिससे आपको मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायता मिलती है। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि गर्मियों में स्वास्थ्य की देखभाल करना कोई कठिन कार्य नहीं है, बल्कि यह हमारी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव से संभव है। यदि हम पर्याप्त पानी पिए, संतुलित आहार लें, धूप से बचाव करें, स्वच्छता का पालन करें, तो हम इस मौसम में भी स्वस्थ और ऊर्जावान रह सकते हैं। साथियों, आइए चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम जीवनालोक में हमारे आज के विषय खेलकूद और पढ़ाई के बीच तालमेल होना जरूरी है पर चर्चा करने का। दोस्तों मनुष्य के समग्र विकास के लिए खेलकूद और पढ़ाई दोनों का समान महत्व है। केवल पढ़ाई करने से व्यक्ति का बौद्धिक विकास होता है लेकिन शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य कमजोर रह जाता है। वहीं केवल खेलकूद पर ध्यान देने से शिक्षा का अभाव रह जाता है। इसलिए जीवन में संतुलन बनाना आवश्यक है ताकि व्यक्ति हर क्षेत्र में आगे बढ़ सके। दोस्तों पढ़ाई का महत्व समझना जरूरी है। शिक्षा हमें ज्ञान देती है, सही और गलत में अंतर करना सिखाती है और जीवन में सफल बनने का मार्ग दिखाती है। बिना शिक्षा के व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। आज के प्रतिस्पर्धा भरे युग में अच्छी शिक्षा ही एक मजबूत भविष्य की नींव रखती है। इसलिए छात्रों को अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए और नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर खेलों का भी उतना ही महत्व है। खेलकूद से शरीर स्वस्थ और मजबूत रहता है। यह हमें अनुशासन, टीम वर्क और नेतृत्व जैसे गुण सिखाता है। खेल खेलने से मानसिक तनाव कम होता है और मन प्रसन्न रहता है। जो छात्र नियमित रूप से खेलते हैं वे अधिक सक्रिय और ऊर्जावान रहते हैं जिससे उनकी पढ़ाई में भी सुधार होता है। यदि कोई छात्र केवल पढ़ाई करता है और खेलकूद से दूर रहता है तो वह जल्दी थकान महसूस करता है और उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता। वही जो छात्र केवल खेलकूद में रुचि रखते हैं और पढ़ाई को नजरअंदाज करते हैं वे भविष्य में कठिनाइयों का सामना करते हैं। इसलिए दोस्तों दोनों के बीच संतुलन बनाना बहुत आवश्यक है। खेलकूद और पढ़ाई के बीच तालमेल बनाने के लिए समय प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण है। छात्रों को अपने दिनचर्या में पढ़ाई और खेल दोनों के लिए समय निर्धारण करना चाहिए। जैसे कि दिन में कुछ समय पढ़ाई के लिए और कुछ समय खेलकूद के लिए निश्चित किया जाना चाहिए। इससे ना तो पढ़ाई प्रभावित होगी और ना ही खेलकूद। दोस्तों आज के समय में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां खिलाड़ी और विद्यार्थी दोनों ही क्षेत्रों में सफलता छात्र प्राप्त कर रहे हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि सही योजना और मेहनत की जाए तो दोनों को साथ लेकर चला जा सकता है। दोस्तों हम कह सकते हैं कि खेलकूद और पढ़ाई दोनों ही जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं। इनके बीच संतुलन बनाकर ही एक स्वस्थ, सफल और खुशहाल जीवन जिया जा सकता है। इसलिए हर छात्र को चाहिए कि वह अपने समय का सही उपयोग करे और खेलकूद और पढ़ाई दोनों को समान महत्व दे।

0: अभी यह वाणी कार्यक्रम प्रसारित किया गया, योगदान शिवपुरी केंद्र का था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, समय है अंतराल का।
1: तीनों कॉलेज में
2: डोंट वरी,
1: फीस तो देखो।
3: क्या हाल है, क्या हुआ?
2: फीस की टेंशन,
3: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
4: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए का, नो कोलैटरल।
3: वो कहाँ है?
4: मिठाई।
5: आरबीआई कहता है
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली।

0: स्मार्ट। सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
2: को
3: इसे
2: मोबाइल चार्ज करना,
4: दिमाग चार्ज कर अपना।
5: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
4: देखा
2: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
5: अब क्या करोगे?
2: फ्री वाई फाई है ना?
4: बुद्धू सुधर जा।
5: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाई फाई
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
5: RBI कहता है
0: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
2: ये देख कैसे।
7: हैप्पी बर्थडे भाई।
2: देखा, हाँ मेरा फेवरेट कलर
7: हमेशा शॉपिंग।
2: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
8: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
2: आई नो ना।
5: RBI कहता है
0: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
9: एक जमाने से कहानी है, सुना रही आकाशवाणी।

0: मिल गया है बटर।
1: दादी कौन सा प्लांट है?
2: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
3: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
1: दादी रुको, सिंक में क्लिक मत करना।
3: क्यों?
1: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
3: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
4: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
5: अंतराल के बाद आपका पुनः स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए आजाद फिल्म का गीत। अरिजीत सिंह और हंसिका पारीख ने इस गीत को गाया है। गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य और संगीतकार अमित त्रिवेदी।
6: मीडियम वेव और न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

हिमेश रेशमिया के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे समीर का लिखा गीत। आवाज थी उदित नारायण और अलका याग्निक की। फिल्म का नाम था तेरे नाम।

0: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
1: आई एम हियर
2: दीप तुम्हें इसे मोबाइल चार्ज करना
1: दिमाग चार्ज कर अपना
3: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक
1: देखा
2: पापा रुको मैं पे करता हूँ नो सिग्नल
3: अब क्या करोगे
2: तेरी वाईफाई है ना
1: बुद्धू सुधर जा
3: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय
3: आरबीआई कहता है
4: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट
5: फिल्म संगीत में आइए अब सुनते हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में साया फिल्म का एक गीत लिखा है सईद कादरी ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने

0: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
1: आई एम हियर
2: दीप तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना
1: दिमाग चार्ज कर अपना
3: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक
1: देखा
2: पापा रुको मैं पे करता हूँ नो सिग्नल
3: अब क्या करोगे
2: फ्री वाईफाई है ना
1: बुद्धू सुधर जा
3: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय
3: आरबीआई कहता है
4: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट
5: फिल्म संगीत में आइए अब सुनवाते हैं इंतहा फिल्म का गीत आवाज उदित नारायण अलका याग्निक की है गीत राहत इंदौरी का और संगीत अनु मलिक का

इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए आज के शेष और कल के कार्यक्रमों के बारे में। पहले सुनिए इस सभा के बाकी कार्यक्रम। शाम 6 बजे भजन संध्या कार्यक्रम में कलाकार होंगे उदित नारायण। 6:30 पर बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम होगा लोकधारा, इसमें कलाकार हैं चिरैया। शाम 7:20 पर ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम होगा ग्राम सभा, इसमें सुनिए धारावाहिक अटकन चटकन। काव्य पाठ सुनिए रघुवीर यादव से और आज की सीख में होगा छाती फटत। रात 8 बजे भोपाल से होगा कार्यक्रम सुर्खियों में। 8:15 पर भोपाल से ही आप सुनेंगे भारत सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं पर आधारित कार्यक्रम डगर विकास की। 8:30 पर फिल्म संगीत सुनवाएंगे। रात 9:15 पर दिल्ली से सुनिए स्पॉटलाइट। 9:30 पर दिल्ली से ही नेशनल प्रोग्राम ऑफ फीचर्स। रात्रि 10 बजे अखिल भारतीय रविवारीय संगीत सभा। ये थे इस सभा के शेष कार्यक्रम। कल सुबह 7:20 पर हिंदी महक में सुनिए वार्ता, पतझड़ में भी संभव है बसंत। वार्ताकार होंगे राकेश कुमार अग्रवाल। फिल्म संगीत होगा सुबह 7:30 पर, शाम 5:40 पर और रात्रि 8:15 पर। सुबह 8:30 पर सुनिए धारावाहिक गीत गाता, शीर्षक होगा सांख्य योग, आप सुनेंगे इसका भाग दो। सुबह 9:10 पर सुबह 9 बजे लोकरंग में कलाकार होंगी उर्मिला पांडे। 9:30 पर एक ही संगीतकार में आप सुनेंगे प्रीतम के संगीतबद्ध किए फिल्मी गीत। 10:05 पर होगा सबरंग कार्यक्रम, इसमें सुनिए मिश्रित संगीत। 10:30 पर होगा श्रोताओं के पत्रों और ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। आकाशवाणी के मध्य प्रदेश से आप सुनेंगे दिन में 11 बजे फोन इन कार्यक्रम, फोन करें गीत सुने। 12 बजे आपकी फरमाइश, 12:30 पर संग्रहालय से। दिन में 1 बजे होगा स्वास्थ्य दर्पण, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत। दिन में 2 बजे फिल्म संगीत और 2:30 पर होगा आपकी फरमाइश। शाम 5 बजे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम होगा युववाणी, इसमें श्रोता सुनेंगे सवाल हमारे जवाब आपके, अंक 119। एक वार्ता होगी परीक्षा के तनाव से बचने के उपाय, वार्ताकार होंगे कुलदीप मिश्रा और

0: आती होगी रोजगार सूचना। शाम 6 बजे भोपाल से सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। 6:30 पर बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम होगा लोकधारा। इसमें कलाकार हैं बद्री प्रसाद खरे, निरंकार व साथी। शाम 7:20 पर ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम होगा ग्राम सभा। इसमें आकर्षण होगा श्रोताओं के फोन कॉल्स, ईमेल और पत्रों पर आधारित बुंदेली लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम रमतूला। प्रस्तुति होगी रविन्द्र कुमार प्रजापति की। और आज की सीख में सुनिए छाती में बाल नैया। रात 8 बजे भोपाल से होगा कार्यक्रम सुर्खियों में। 9:15 पर दिल्ली से सुनिए स्पॉटलाइट। 9:30 पर पब्लिक स्पीक। और रात्रि 10 बजे आपको सुनवाएंगे श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त होता है। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस।
1: आइए सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी देश के रूप में उभरा है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भाजपा के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दिया गया है। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाल लिया है। इससे पहले राज्यपाल ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की है। गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। अमृत पर्व पर पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के शिखर का 11 तीर्थस्थलों के जल से अभिषेक किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में कल ध्वज पूजन और महापूजा की जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सीहोर जिले के भैरुंदा में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और पीएम जनधन योजना के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की उपस्थिति में हुए इस कार्यक्रम में श्री चौहान ने विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। और IPL क्रिकेट में आज का पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच चेन्नई में खेला जा रहा है। वहीं दूसरा मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच रायपुर में शाम 7:30 से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: मीडियम वेव और न्यूज ऑन AIR ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम भजन संध्या। इसमें कलाकार हैं उदित नारायण। आइए इनसे सुनते हैं ये भजन।

0: उदित नारायण की आवाज में अभी आप सुन रहे थे राजेश जौहरी का लिखा भजन। संगीत दिया था YS मुल्की ने।
1: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
2: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन उपलब्ध है। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
0: आइए अब सुनते हैं उदित नारायण के स्वर में सरस्वती कुमार दीपक का लिखा ये भजन।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: भजन संध्या कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं उदित नारायण की आवाज में भरत आचार्य की लिखी रचना।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: उदित नारायण की आवाज में आइए अब सुनते हैं रामचंद्र बगौरा की लिखी भक्ति रचना।

0: और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: उदित नारायण की आवाज में आइए अब सुनते हैं सुभाष जैन अजल की लिखी ये रचना।

इसी के साथ भजन संध्या कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इसमें कलाकार थे उदित नारायण। मीडियम वेव और न्यूज ऑन AIR ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। इसमें कलाकार हैं चिरैया। आइए सबसे पहले इनकी आवाज में सुनते हैं अक्ति गीत।

0: ओहो भाई साहब, फिर खराब हो गया आपकी चक्की का पत्थर।
1: क्या करें बहन जी, ये हर बार की मुसीबत है।
0: डुप्लीकेट पत्थर तो मुसीबत ही है, चक्की का पक्का साथी चोयल पत्थर लाओ और मुसीबत से छुटकारा पाओ। कीमत बढ़ने पर भी आपको मिल रहा है पुरानी कीमत में चोयल पत्थर।
1: चोयल के असली पत्थर के लिए आए ओमरे जी की पुरानी दुकान, ओमरे कॉम्प्लेक्स, दुकान नंबर 4, लिंक रोड, सागर।
2: हेलो
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
2: फिर से?
4: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
5: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
5: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए।

0: बाकी बाद में।
1: तोला क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
0: अरे
2: काट दिया।
1: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
1: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
3: तो पैसे गवाओगे।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: चिरैया की आवाज में आइए अब सुनते हैं बन्ना।

0: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड AI बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।

0: खैर, इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: आइए अब सुनते हैं चिरैया की आवाज में ये भजन।

0: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।

0: हर इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: लोकधारा कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं चिरैया की आवाज में चेतावनी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: दी, ये देख कैसे?
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: दीका, हाँ मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना,
5: RBI कहता है
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए देवी गीत, आवाज है चिरैया की।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: दी, ये देख कैसे?
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: दीका, हाँ मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग।
3: I know माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: I know पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: I know ना।
5: RBI कहता है,
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: लोकधारा कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं चिरैया की आवाज में हास्य गीत।

इसी हास्य गीत के साथ लोकधारा कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इसमें आज कलाकार थे चिरैया। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है।

आइए अब आपको बता देते हैं गुमशुदा व्यक्ति के संबंध में एक सूचना। गुमशुदा का नाम है नमिता, उम्र 25 वर्ष, हुलिया इस प्रकार है, रंग गोरा है, इकहरा शरीर है, इनकी ऊंचाई 4 फुट 4 इंच है, इन्होंने हरी छींटदार साड़ी पहनी हुई है, इनके पति का नाम है आशीष, पता ग्राम सदुपुरा जालौन, थाना सिरसा कलार जनपद जालौन। ये दिनांक 7 मार्च 2026 को समय करीब 3 बजे अपने गांव सदुपुरा से कहीं चली गई हैं। इनका अभी तक कोई भी पता नहीं लगा।

है। इनके परिवार का जन संपर्क नंबर है 6392921636। एक और नंबर है 9353293085। थाना अध्यक्ष सिरसा कलार, इनका मोबाइल नंबर है 9454403605। जिस किसी को भी इनके संबंध में कोई सूचना प्राप्त हो वो इन नंबरों पर संपर्क कर सकता है। एक और व्यक्ति के संबंध में सूचना है, गुमशुदा है दीपक, पत्नी श्रीमती डॉली, निवास है ग्राम भिरारी सिरसा कलार जनपद जालौन। ये दिनांक 22 मार्च 2026 को दोपहर करीब 2:30 बजे के आसपास अपने निवास स्थान से लापता हैं। इनका अभी तक कोई पता नहीं है। हुलिया इस प्रकार है, उम्र है 49 वर्ष, कद 5 फुट 6 इंच, इकहरा शरीर है, रंग सांवला है, चेहरा गोल है, आंखें काली और बाल काले हैं। इन्होंने काला पैंट और नारंगी फुल शर्ट पहनी हुई है। इनके मिलने का संभावित स्थान है कानपुर देहात, औरैया आदि। जिस किसी भी सज्जन को इनके संबंध में कोई भी सूचना प्राप्त हो वो कृपया इस नंबर पर संपर्क करें, 9454022179। नंबर एक बार दोबारा सुन लें, 9454022179। और पता है सिरसा कलार, ग्राम भिरारी, थाना सिरसा कलार। सूचना समाप्त हुई।

मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो ये फटा है। सुन फटे फटे या पुराने नोट को बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
2: वाओ नया नोट मिलेगा?
1: हाँ जिससे तू हमें पैसा पार्टी देगा।
0: आज ये कहता है स्मार्ट बनो क्यों बोल रहे।
3: पापा लाइए 3,000।
4: क्यों भाई?
3: मेरी पॉकेट मनी।
4: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
3: ए पापा बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ।
4: है?
3: ए नहीं हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
4: अरे वाह मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
3: अपना मोबाइल लाओ।
4: ले ले। भारत करता है डिजिटल भुगतान,
5: हर लेन देन अब है आसान।
6: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में 9400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर के भैरुंदा में पीएम ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ किया। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि गुना में सीमेंट फैक्ट्री से खुलेंगे औद्योगिक विकास के नए अवसर। और प्रदेश में तेज लू का अलर्ट जारी।

0: दो से चार डिग्री तक बढ़ सकता है पारा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने हैदराबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी देश के रूप में उभरा है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि आयातित पेट्रोलियम उत्पादों का उपयोग केवल आवश्यकता अनुसार ही किया जाना चाहिए, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी और मौजूदा संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा की। श्री शाह ने सरकारी एजेंसियों की तैयारियों का आकलन किया, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसी समन्वय की समीक्षा की। गृहमंत्री ने देश में किए जा रहे दीर्घकालिक बाढ़ निवारण उपायों की प्रगति की भी समीक्षा की, जिनमें महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं का संरक्षण, नदी प्रबंधन पहल और पूर्वानुमान में वैज्ञानिक प्रगति शामिल है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सीहोर जिले के भैरुंदा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज 4 एवं प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के कार्यों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने यह संभव कर दिखाया है कि इस योजना से बनी सड़कें गांवों की जीवन धारा बन चुकी हैं।
2: प्रधानमंत्री सड़क की कितनी सारी सौगातें, 5,000 करोड़ की सौगात मध्य प्रदेश के लिए, हमारे लिए प्रधानमंत्री सड़क, प्रधानमंत्री आवास, पूर्व चयनित योजनाएं और देश भर के अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग पुरस्कार, इसमें मध्य प्रदेश के लिए 2 पहले नंबर के पुरस्कार और भारत के लिए 3 पुरस्कार मिले हैं।
0: वहीं केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में 973 सड़कों को मंजूरी दी गई है। प्रदेश का कोई भी गांव पक्की सड़कों से वंचित नहीं रहेगा। पीएम जनधन योजना के अंतर्गत भी प्रदेश को 261 करोड़ की लागत की नई सड़कों की सौगात मिली है।
2: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 973 सड़कों को मंजूरी देने का काम हुआ है, 1763 करोड़ रूपये की, ताकि मध्य प्रदेश का कोई गांव बिना सड़क से जुड़े न रहे। 500 करोड़ से ज्यादा की सड़कें लगभग हर संघीय क्षेत्र में बनेंगी, 1,000 करोड़ की सड़कें तो 2 महीने के अंदर अंदर हो गई है।
0: अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज गुना में 1,059 करोड़ रुपए की लागत से अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री का शिलान्यास एवं 130 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यह सीमेंट प्लांट क्षेत्र में निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास के नए अवसरों के द्वार खोलेगा और ग्वालियर चंबल की विकास यात्रा को ऊर्जा प्रदान करेगा।
4: गुना क्षेत्र में सीमेंट प्लांट जो 4 मिलियन टन का लगने जा रहा है, इसके आधार पर नए अवसर और नए रोजगार की क्षमताएं पैदा होंगी क्षेत्र के लिए। मध्य प्रदेश अब औद्योगिकरण के रास्ते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में अग्रसर हो रहा है, जिसका लाभ सदियों तक क्षेत्र की जनता को और मध्य प्रदेश की जनता को मिलेगी।
0: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में 6 मंत्रियों को शपथ दिलाई। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दिया गया है। वहीं तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाल लिया है। इससे पहले राज्यपाल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर

मंत्रियों ने भी शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र हैं और उनमें सोमनाथ प्रथम ज्योतिर्लिंग है। अमृत पर्व पर पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के शिखर का 11 तीर्थस्थलों के जल से अभिषेक किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में कल ध्वज पूजा और महापूजा होगी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने आज सतना में मातृ दिवस के अवसर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका पदों के सृजन के 50 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित स्वर्ण जयंती सम्मान समारोह में सहभागिता की। यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन द्वारा आयोजित किया गया था। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आंगनवाड़ी की हमारी बहनें विकसित भारत की मजबूत नींव तैयार करने का महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। अब करते हैं मौसम का। प्रदेश में तेज लू का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी भोपाल के अलावा इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर सहित पूरे प्रदेश में दिन का पारा 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। वहीं कल रतलाम में दिन का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शासकीय आईटीआई हरदा में एक दिवसीय रोजगार स्वरोजगार मेले युवा संगम का आयोजन 14 मई को किया जाएगा। मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व के सरही गेट पर स्थानीय महिलाओं द्वारा संचालित आधुनिक कैंटीन का शुभारंभ आज किया गया। ओंकारेश्वर के घाटों पर सुरक्षा नियम को तोड़ने वाले नाविकों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत आज आगरमालवा के सुसनेर में कंठाल नदी से जलकुंभी, कचरा और गंदगी की सफाई की गई। शिवपुरी कलेक्टर ने सभी सहायक कृषि विस्तार अधिकारियों को उर्वरक विक्रेताओं की जांच एवं अनियमितता पाए जाने पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने आज मंडला के रामनगर में 15 और 16 मई को आयोजित होने वाले 2 दिवसीय आदि उत्सव की तैयारियों का जायजा लिया और नर्मदापुरम के माखन नगर में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत ग्राम चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में 9400 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर के बैरुंदा में पीएम ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ किया। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा गुना में सीमेंट फैक्ट्री से खुलेंगे औद्योगिक विकास के नए अवसर। और प्रदेश में तेज लू का अलर्ट जारी, 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है पारा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

मीडियम वेव और प्रसार भारती के मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम ग्राम सभा।

पंचो राम राम। ग्राम सभा को सुनने वाले सभी पंच भैयान का रघु भैया की राम राम पहुंच जावे। देखो पंच भैया रो बेरा भई और हम हाजिर हैं अपना मन पसंद कार्यक्रम ग्राम सभा लेके। पंच भैया रो आज विशेष दिन है, आज है मातृ दिवस यानी मदर्स डे। और भैया जो प्रत्येक वर्ष मतलब आज ही के दिन 10 मई का मनाओ जाता है, यह प्रत्येक माँ को सम्मानित करने को एक अवसर है। भैया माँ के बिना जीवन की कल्पना नहीं करी जा सकते है, जो भैया पूरे विश्व में मनाओ जाते हैं। माँ बच्चे के लिए भैया एक मूल्यवान उपहार है जिसे भगवान ने हम सबका दो है। माँ वो पहली गुरु वो भैया जो हमें प्यार और संस्कार देते हैं, वह हमारी हर परेशानी में साथ देते हैं और हमारी खुशियों में सबसे ज्यादा माँ खुश होते हैं। और भैया हमें अपनी माँ को हमेशा ख्याल रखो चाहिए और सम्मान करो चाहिए। और भैया अब आगे बढ़े इके

0: लिए थोड़ी रुकत है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ग्राम सभा कार्यक्रम में सभी पंच भैया को एक बार फिर से स्वागत है। पंच भैया, मौसम आजकल पता नहीं चल रहा कब गर्मी हो जाए कब बरसात हो जाए। अपन देखते हैं कि दो दिन पहले बरसात हुई और फिर एकदम से तीखी धूप हो गई, उमस हो गई। तो भैया ये सब चीजें पंच भैया इनके मन का खराब कर देती है। साथ में भैया गर्मी अगर अच्छी ना हुई है तो भैया फिर बरसात कैसे हुई है, और अगर गर्मी अच्छी तेज ना पड़े तो खरपतवार और फसल के लाने जो हानिकारक कीटाणु है भैया जो जमीन में छुपे रहते हैं और भी नष्ट न हुई है तो आगे वाली जो फसल हुई है उसमें अवरोध हो सकता है। और भैया पंच भैया बदलते मौसम में अपने स्वास्थ्य को तो विशेष ख्याल रखें, कैसे प्रत्येक मौसम प्रत्येक दिन करवट ले रहा है। अगर ज्यादा गर्मी है भैया तो खान पान को पंच भैया विशेष ध्यान रखें। देखो शादी ब्याह तो चल ही रहे हैं तो भैया शादी ब्याह में जाएं तो भैया ज्यादा तलो भुजू भोजन को सेवन ना करें, कैसे भैया गर्मी पड़ने लगी है तो अपने स्वास्थ्य के लाने हानिकारक हो सकते हैं। अपन देख रहे हैं एकदम से तेज आंधी आ रही, बरसात हो रहा हो तो भैया आंधी तूफान को अंदेशा हो तो भैया घर से बाहर ना निकले, और कैसे ऐसे में बिजली के तार टूटने की संभावना बनी रहती है। साथ में भैया अगर बरसात हो रही हो तो बिजली तड़क रही हो तो पेड़ के पास बिल्कुल ना खड़े हों, और संगे संगे भैया अपने बाल गोपालन को विशेष ध्यान रखें, उन्हें पौष्टिक भोजन देवें, बाहर की चीजें खावे से परहेज करें, ज्यादा गर्म और ठंडी पदार्थन को पंच भैया इस्तेमाल ना करें, और अगर गर्मी से बाहर गर्मी से आ रहे हैं तो थोड़ी रुक के पानी पिए, और अगर घर में एसी चला रहे हैं तो अगर निकले भैया तो 5-7 मिनट पहले एसी का बंद कर दें। और पंच भैया खेती तो कर ही रहे हैं, साथ में अगर अच्छी पैदावार चाहने हैं तो भैया खेत की मिट्टी को परीक्षण जरूर करा ले। अपने खेत की मिट्टी को परीक्षण करा से जो मालूम पड़ जाता भैया कौन से पोषक तत्वों की कमी है, पंच भैया उकी पूर्ति करके अच्छी फसल प्राप्त कर सकते। ई के लाने का करें पंच भैया, ई के लाने खेत के चारों ओर से मिट्टी के नमूने लेवे, मिट्टी पहले ऊपर की मिट्टी हटा दें और जब मिट्टी निकालें तो अच्छी तरह से छान ले हैं, उनको नमूना ले जाकर मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में जाकर जांच करा ले, और अपनी मिट्टी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जरूर बनवा लें। मृदा में पोषण तत्वों की पहचान करवे के लाने इस समस्या से निपटवे के लाने सरकार ने 2015 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत करी थी। यह एक उद्देश्य है स्वस्थ धरा खेत हरा। देश भर में 25 करोड़ से ज्यादा स्वास्थ्य कार्ड वितरित करे जा चुके हैं। इनकी वैधता हो 3 वर्ष और इनमें मिट्टी को परीक्षण निःशुल्क करो जा। और अब कार्यक्रम का आगे बढ़ा सुनाते हैं राम कुमार प्रजापति की आवाज में जो लोकगीत पंच सुने जो लोकगीत।

देखो पंच भैया, अभी सुन रहे थे अपन जो श्रृंगार गीत राम कुमार प्रजापति की आवाज में। देखो भैया, आज है इतवार और पंच भैया इंतजार कर रहे हुई है धारावाहिक अटकन चटकन को। तो पंच भैया का सुनवा रहे हैं धारावाहिक अटकन चटकन को भाग दो। तो पंच सुने अपन सुने धारावाहिक अटकन चटकन।

0: काय चटकन?
1: हाँ भैया,
0: आज सातवों आठवों रोज होगा मुनादी भाई।
1: हो हो।
0: अबेलो हमें लगत के सात या आठ घूरे नहीं फेंके गांव के। अरे अपने जाने गांव वाले कैसे हैं? कोई सुनते नहीं अपनी, जिसे कहो सो ई कान से सुनत और ऊ कान से निकाल दे। उन्हें लगत कि कछु ई में अटकन चटकन को सवार था फसो सवार थे।
1: अटकन भैया, जोन बेचारे सीधे सच्चे आदमी है वे तो घूरे फेंकन लगे।
0: हाओ।
1: और गड्ढा पूर्व में सो भी पछाऊ नहीं है। अकेले जोन पैसा वाले वो चलता वाले है ना, वे तो अपन खा सिर्री अजाना सिर्री।
0: हाओ। और अपने आप खजाना का समझत। अरे बीमार पड़त रहे, हजारन रुपया दवाई में लगाउत रहे, हैरान होत रहे, अकेले वो बीमारी की जड़खाना मिटा है।

0: खुद चाय मिट जे हैं।
1: अब अटकन भैया ऐसो है
0: हाँ
1: के हम तुम तो हैं छूछे, वो कान नहीं लगत के छूछे काऊ ना पूछे। आजकल आदमी की नहीं पैसा की पूछा है, पैसा की।
0: अरे चटकन अपने लोग का नहीं है
1: काहे काहे।
0: अरे वो पैसा बारन से बढ़ के अपने भीतर प्रेम है प्रेम के नहीं है।
1: जो तो सांसी है
0: भगवान को दर्द तो साजो दिमाग है के नहीं है।
1: अरे
0: खेती बाड़ी सब कच्छू तो है, अब काज नहीं है अपने घर।
1: अब अटकन भाई ऐसो है आजकल दिखावा बहुत चाहिए दिखावा। पक्के मकान होए, गाड़ी घोड़ा होए, सो बस अपने अंगाऊ पछाऊ चार छह आदमी फिरते ही रहे जो है जो फिर देखो।
0: हाउ और घर में चाय चुखरिया लोटती ना में चुखरिया। अरे अपनी बकरी खपरेल बने सो का भाई। अपने भीतर जोन वे बड़ी बड़ी कुठिया बनी नाज धरत की
1: हाँ हाँ।
0: बे भरी राती के नहीं भरी राती।
1: वे तो भरी राती। अटकन भैया मोरे दिमाग में सोई एक बहुत ही नौनी बात आई।
0: अच्छा
1: हाँ।
0: का आई दिमाग में ऐसी
1: बज्जा आई अटकन भज्जा कि हमारे लोग जो 10-12 खेत है
0: हाँ।
1: तो 2-4 ठैया बेच के ताजमहल ना खरीद लो जावे।
0: वाह
1: है
0: काका ने
1: बहुत नाव सुना ताजमहल को गांव बारे देखा ही के रह जे फिर हाँ।
0: बहुत होशियार हो गए चटकन।
1: और एक ठैया खरीद ले जावे चील गाड़ी
0: माह
1: संसार भर के आदमी अपने अंगाऊ पछाऊ फिर जे।
0: अरे चटकन तुम ताजमहल कैसे खरीद ले हो।
1: अरे काय अटकन भैया।
0: अरे काय का
1: हाँ?
0: अबे ताजमहल हम कौन बिका हुआ करे। जब हम बेच भी तब तुम ले पाओ के नहीं हमें कौन अबे बेचने आए। और जोन चीलगाड़ी बारी बात है सो चटकन भैया हुए कान धरो हो। खेत तो तुम्हारे सबरे बिकई जाने।
1: अरे अटकन भैया तुम सोई। आजकल बाजार से चाहे कछु सामान खरीदो
0: हाँ।
1: सो उके संगे कछु ना कछु गिफ्ट मिला सेत मेत में। जब इतनी बड़ी चील गाड़ी खरीद भी सो कम से कम एक आध खेत तो गिफ्ट में मिला ही जे।
0: चटकन लो देखो
1: बातन
0: ही बातन में जो आगो घुटे सेठ को घर
1: हाँ बिल्कुल आगो बिल्कुल आगो।
0: और ऊ दिखात बगल में घूरे को पहाड़ सो लगू
1: हाँ भैया।
0: अब जो बताओ चटकन भैया कि इन्हें का कमियां है घुटे सेठ का
1: कछु नहीं है।
0: अरे एक मजूर लगा के जो कूड़ा कचरा नहीं फेंकवा सकत जी।
1: जा बात उम्दा करी अटकन भैया अपन ने घुटे सेठ तो गए होंगे अबे बंजी कर भी और बा बैठी तुलसा दुकान पे जोन भी अपने संगे नहीं पड़ा नहीं पहला
0: हाँ हाँ।
1: सो चलो उतई चलिए वो चाय सुपारी और उतई तुलसा से मीठो मीठो बतकाओ हुए
0: जो बस बस बस चटकन। हमें तोरी जेई बात नहीं पुसाती सब यार।
1: अरे
0: अरे तो जाने तो खूब जा मो नई लफड़ा में बेदे।
1: अरे अटकन भैया अपन सोई कछु और बतकाओ सोई अकन्ने अब घूरे के बारे में जोन पहला कह रहे थे वही बतकाओ नहीं करने चलो तो अपन
0: चलो।
2: अरे अटकन वो चटकन भैया आओ आओ आज कहाँ मोरी दुकान को भूल पड़े।
0: अरे तुलसा भूल लो परे
2: हाँ।
0: जी चटकन भैया आलो वाले आए काते कि चलो तनक सेठ जी के घरे हो आइए बहुत दिनन से नहीं गए।
2: हाओ सो आओ बैठो दद्दा तो गए अकेले बंजी करवे।
0: अरे
2: बताओ काका महतो दद्दा से।
1: अब आओ तो नहीं ना चाय ना पानी फालतू को मोड़ चढ़ जाओ कर बैठे। काम को बतकाओ तो बाद में हुगे जो है सो तना बैठ तो लें दो तुलसा।
2: अरे मैं तो भूल ही गई थी कि भीतर चूल्हे पे चाय चढ़ाई आई थी।
1: अच्छा।
2: बस साबरी छनक गई हुए मैं अब्बे आऊ चाय पानी लेके अपन दो ही जने ई बोरा पे बैठो बैठो मैं अब्बे आऊ।
0: हाँ हाँ।
1: कहो अटकन भैया साजो रहो लगी जुगाड़ चाय की के नहीं। अरे हमारे संगे रहे हो तो ऐसे ही ऐस करो ऐस
0: हाँ। कर लो ऐस। अब इमें तोरी का थर आया है
1: भाई।
0: अब देख चटकन तोले सास है घूरे भर को बतकाओ करिए घूरे भर को
1: भाई।
0: फालतू की बातें सब यार न करिए सुन लही क्या नहीं सुनी तेने।
2: ले अटकन चटकन भैया जो है गड़ाई में पानी
1: हाँ।
2: और जा है चाय
1: हाँ। सो
2: लियो पियो अपना रे।
1: हाँ तुलसा तुम सोई कुल दिनन में आ मिली तुलसा हमें है जी सो जुड़ा गो बिल्कुल मूर तो काय तुलसा तुम जो तो बताओ कि तुमने काय पड़ो छोड़ दो तू।
2: अब चटकन भैया घर हती अकेली
1: हाँ।
2: सो काम काज सबरो तो कर नहीं आऊ तो और दद्दा का जाने परत बंजी और बाई की तो तुम्हें पतो ही है कि तबीयत ठीक नहीं रहता है
1: हाँ। जो तो सांचिया है फिर बूढ़े पुराने काने लगत कि ये कई जांगा रोज रोज ना जाओ चाहिए रोज रोज

0: जावे से इज्जत घटत इज्जत सो ठीक नहीं गई तुम रोज रोज स्कूल है
1: तुम सो फालतू गुदर वाले के बैठ जात तुलसा हमारी सुनो
2: हाउ अटकन भैया बताओ अब का काम है तो
1: अब जो के गांव में साफ सफाई देखो बिल्कुल नहीं भाई
2: हाँ ठीक है
1: और साफ सफाई ना होवे से मच्छर बहुत बढ़ गए
2: हाँ।
1: घरन घरन में को ना को खटिया पे डरवई है बीमार
2: सुख
1: साफ जाने कम से कम अपने दोरन के घूरे तो फेंकवाई सकत
2: मैंने तो सो एक दिन मुनादी सुन के दद्दा से कही हती कि दद्दा अपने बगल को जन घूरो लगो ना
1: हाँ।
2: सुबह फेंकवा दो सुबह गुस्सा होने लगे बेकान लगे के होते तो पूरा पूरा भर डारा कूड़ा कचरा सुकाई हम ही है का सब जने फेंकवा भे
1: अरे जो तो ठीक है अकेले साफ जने ऐसे सोच ले हैं सो कैसे हुई है साफ सफाई अपने गांव की
2: जो भी ठीक है
1: अरे कम से कम एक बे तो फेंकवाई देवे फिर तो सरपंच साहब काटते के मोहल्लन मोहल्लन कचरा डारबे के लाने कछु न कछु बंदोबस्त भाव जात हाँ एक बात और है
2: वा कैसी
1: के खरंजा सोउ अपने पूरे गांव में लगने
2: अच्छा ठीक है तो दद्दा का आ जान दो सो आज फिर मैं उनसे बतकाव करूं
1: हाओ का चटकन का चटका रहे
0: देखो देखो तो तुलसा जो मच्छरा कितनो बड़ो हुआ है आ रा रा ओ मोई मोई पे उधर भी मैं देखो देखा
2: अब का बताइए चटकन भैया भी मछरा तो ऐसे ही होत
0: कैसे?
2: कि जहाँ उनने गंदगी देखी सो तई जाधर बेड़
1: चटकन भैया चलो चलिए बहुत देर हो गई आज सरपंच साहब ने सो अपन खा बुलाओ हतु
0: अच्छा अच्छा
1: कछु काम पर गौ हुई है ना हाँ। चलो चलिए लो
0: हाँ हाँ चलो अटकन भैया चलो जाई थे तुलसा तो हम हो रहे हैं
2: हाँ।
0: अकेले एक काम करने दद्दा से कह के घूरो फेंकवा दियो जरूर ठीक है
2: हाँ,
0: हम फिर अभी
2: हाँ। कबो भूले बिसरे हो जाओ करे ऐसे ही
0: हाँ, अभी फिर अभी

0: सरपंच साहब, ओ सरपंच साहब।
1: को वागा, मैं तो ये भीख मांगे बारे से हैरानी हो गई। दिन भर आओ शरम लो नहीं आओ ठटरी बरन खो डारा बेटा तना मनक चून डारा
2: झटकन लगा के तो मत
3: भाई,
2: लगा के तो मत
3: भाई।
2: अरे आज काकी को पारा बहुत चढ़ो दिखा भगले, लगा के तो मत
0: काकी। अरे आज चून में काम नहीं चल रहे, हमारे ऐसे भिकमंगा हैं कि पूरा डिनर लेके जे भी डिनर।
1: अरे तुम्हारे आओ आओ आओ अटकन चटकन, मैंने जानी थी कि भीख मांगे बारे आए तुम्हारे हो।
2: अरे काकी हाँ। सरपंच साहब ने बुलावा तो हम दो जनन खन।
1: अच्छा
2: कहाँ गए?
1: बे नहीं आ गए, काय उन्हें कहाँ जाने, दिन भर घर ही में तो घुसे रात।
4: आओ आओ अटकन चटकन।
2: राम राम सरपंच साहब।
0: राम राम सरपंच साहब।
4: अरे अटकन चटकन, तुम्हें ई किला ने बुलाव हतु के ई साल बरसो पानी कम
0: हो,
4: सो पानी खा इकट्ठो करबो बहुत ही जरूरी है।
0: ठीक है अपन।
4: और हैंड पंपन के अंगर सोखता बनाने, घूरन की साफ सफाई तो हो रही संगे संगे, कदवा बाई नरवा पे बनने हैं स्टाफ डैम।
2: जो साजी कई सरपंच साहब अपन ने, अरे कम से कम अंगाओं की रबी की फसल तो साजी हो ही है, और जेठ मासन जोन पीवे के पानी की किल्लत होत सुबह किल्लत न रहे।
4: हाउ हाउ, सो चार छह रोज में आने हैं कलेक्टर साहब का।
2: अच्छा
4: स्टाफ डैम को शिलान्यास कर भी, खेतन की देख भी हजे हैं भैया, गांव की संगे संगे साफ सफाई देखें, तैयारी के लाले शहर से कछु अटकन चटकन सामान लेने सू जाने पड़े, सो तुम चले जाइयो।
2: हाउ
0: सरपंच साहब, अटकन भैया खाना पहुँचाइयो।
4: काय
0: एक बेर इनकी शहर में बड़ी तोहनी भई थी।
4: तोहनी? कैसी तोहनी भैया?
0: अपन पूछे सो मैं बताऊं, इनने शहर में बस स्टैंड के लाने करो रिक्शा, सो उनने पूछी के स्टैंड लो के कितने पैसे ले हो, वो रिक्शा वालो बोलो 4 रुपया।
4: हाँ।
0: जे बोले के 2 रुपया में ले चलो हो, सो वो बोलो के बिल्कुल चल सकत, अकेले हम बैठ भी रिक्शा पे और तुम चलाइयो, सो 2 रुपया में ले चल भी।
4: अरे कल्लू की भाई
1: का है?
4: सुनो तो हाँ। जे अटकन चटकन हाँ आए हैं, इनका कछु चाय नाश्ता नहीं दिया है कछु?
1: जा तो मैं पहली से जानती, मैं जब से पराठिया बनाऊत रही चाहे चाय, मैं तो पहली से जानती जे का बिना खाए पिए जा सकत खाते से।

0: से मैं चाय नाश्ता बनावे मैं लगी थी।
1: अरे कल्लूगी भाई
0: हाँ?
1: तुम हरा हरा समझदार सो होती जाती, तनक मनक पढ़ लिख लो सो और ही समझदार हो जाओ।
0: काय में काबे तक मूर्ख हती का है, काय अटकन चटकन
2: हाँ?
0: काय में बिना पढ़ी लिखी आऊ का
2: हाँ?
0: देखो तो मैं रामान खटाखट नोई बाचन लगी है के नहीं, कहो तो मैं अभी पढ़ के सुना दो।
1: अरे हमें नहीं सुनना तुम्हारी रामायण, हम तो तुम्हारी रामायण रोज ही सुनाते हैं। शांत हो जाओ शांत।
3: अरे चटकन भैया
2: हाँ कर
3: एक देना कावा बड़ी मजा आई।
2: कैसी
3: काकी पहुंच गई रामायण बांचवे बिहारी जी के मंदिर में। और जो तो अपन का पतो ही है कि काकी के गिर गए थे दांत, सो उनने लगवा ली थी बत्ती सी। सो उदना का अभाव बिहारी जी के मंदिर में खूब आती भीड़।
2: अच्छा अच्छा हाँ।
3: अब काकी बैठी माइक के सामू रामान बांच बे,
2: ठीक
3: रामान खुल गई, काकी को चश्मा लग गयो। अब जे जैसा ही इनने शुरू करी सो बत्ती सी बाने गिर पड़ी।
2: अच्छा
3: इन उठा के फिर लगा ली, अब फिर शुरू करी सुबह फिर गिर गई।
2: अच्छा
3: ऐसो चार छह आठ बीर दस बीर भाव। अब का भाव को होते बैठो तो एक लड़का हल्को सो सूखा पड़ी जिद चढ़ी झल्ला के बोलो काकी अपने मुँह को टेप चालू कराओ कि ऐसे ही हर बे कैस्ट ही बदलत रहे हो।
0: देख हटकन देख हटकन मोरी हंसी नौड़ा में काट जा, पराठे खा और घर की रास्ता नाप नोट
3: गुस्सा ना हो गुस्सा। अरे अब के आई अब ना कहो रामधई चटकन काकी बहुत सुधरी है रामधई, गैया घाई है गैया घाई।
2: हाँ बिल्कुल सुधरी
0: काकी, मैं तो एक गैया दिखात हूँ, मैं ढो रहा हूँ नास के परे हरो मुँह से गैया आए का मोरे घरे ना बैठे होते तो मैं ऐसी हलालिया सुनाऊती कि भैया ना मिलती।
1: अरे भगवान गुस्सा ना हो गुस्सा, अरे तुम सुनती तो हो नहीं है, अटकन चटकन तो जो अकात है के काकी तो देवता है देवता।
0: काकी देवता देवता रास सड़क में सुमो सरगिया पठेरे चटकन चटकन सरगे जाए तोरो।
2: अरे काकी जो वाकई कि काकी घाई तो गांव भरे में नहीं है, बड़ी सादी है हमारी काकी हीरा घाई।
0: सुन रहे कल्लू के दद्दा?
1: सुन रहे
0: सुन रहे चटकन का कह रहो काय में आदमी घाई नहीं है का। अरे मैं तो भूतन घाई लग रही का जो गांव भर में मोरो जैसो कौन नहीं है। तुम्हारी बड़े ठटरी भगत हो जैसे कि मैं लगाऊ ये पीछे से।
2: अरे काय अटकन भैया तुम्हें जो पसीना काय आ रहा हो।
3: अरे चटकन जानदार की बात है, लगा गदमा
2: लगा
3: लगा गदमा
2: भगलो।

0: देखो भैया रो, अबे सुन रहे थे अपन धारावाहिक अटकन चटकन को भाग दो और अब कार्यक्रम का आगे बढ़ा ई के पहले थोड़ी रुकत है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निःशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।

0: ओर एक और कदम बढ़ाए।
1: पंच बाजारों आप सुनवा रहे हैं अपन का काव्य पाठ रघुवीर यादव की आवाज में। तो अपन सुने जो काव्य पाठ,
2: पहली रचना है पर्यावरण पर। अरे पेड़ लगा लो बरसे जल, पेड़ लगा लो बरसे जल, ओ जल से जीवन बने सफल। पेड़ लगा लो बरसे जल, जल से जीवन बने सफल। गिर मेड़ पे पेड़ लगा लो अपनो सोया भाग जगा लो, अपनो सोया भाग जगा लो। तो देखा देखूं लगाओ अकल, देखा देखूं लगाओ अकल।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की

पर शीतल छाया मिलते हवा है, जड़ पत्तों से बनत दवा है, जड़ पत्तों से बनत दवा है, और रसीले देवे फल, और रसीले देवे फल, जल से जीवन बने सुपल, खेतन को रोकत है कटाव, खेतन को रोकत है कटाव, यादव रघुबीर पेड़ लगाओ, यादव रघुबीर पेड़ लगाओ, पेड़ों बिना न गुजरे पल, पेड़ों बिना न गुजरे पल, जल से जीवन बने सुपल। और ये दूसरी रचना है, अरे बिटिया भेजो पढ़न इस स्कूल में, ए बिटिया भेजो पढ़न इस स्कूल में, डार

फिर के ओई घरे जाऊने जो जीवन है रेन बसेरा जाने इते उठा के डेरा क्यों करता तू मेरा मेरा। और जैसी करनी सुफल उसी पाऊने फिर के ओई घरे जाऊने ये जग

जिद ना आए तन था संग में, अब तो जीवे अकेलो तंग में, जर जाने तन अग्नि अंग में, जर जाने तन अग्नि अंग में। ओ अमर नाम है सो अम

तुकरियो ना भैया आतंक, नहीं उठा बिच्छू सो डंक, राने अमर ना राजा रंक, यादव

0: बन के रने पाउने फिर के ओई घरे जाउने। और ये हमारी चौथी रचना है अपने बुंदेलखंड की तीरथ धाम कवि की लाने। अरे चलो चलो चले बुंदेलखंड के, चलो चले बुंदेलखंड के, सुकर भी तीरथ धाम काम रत जीवन में। चलो चले बुंदेलखंड के, सुकर भी तीरथ धाम काम रत जीवन में। खजुराहो के मातंगेश्वर ग्राम गड़ा धाम बागेश्वर, खजुराहो के मातंगेश्वर ग्राम गड़ा धाम बागेश्वर, जटाशंकर तहसील बिजावर, पन्ना में विश्राम, पन्ना में विश्राम, जुगल किशोर के दर्शन करके, सो हो जे पूरण काम काम रत जीवन में। चलो चले बुंदेलखंड की, करवे तीरथ धाम काम रत जीवन में। टीकमगढ़ में है कुंडेश्वर, टीकमगढ़ में है कुंडेश्वर, मजखीरा देवी को मंदिर। टीकमगढ़ में है कुंडेश्वर मच्छीरा देवी को मंदिर, अछरू माता मंदिर सुंदर, ऊर्छ राजा राम, ऊर्छ राजा राम, देव तुल्य हर दौल के देखो, जिते जन्म भूमि मुकाम काम रत जीवन में। चलो चले बुंदेलखंड की, करवे तीरथ धाम काम रत जीवन में। दूबे देई माँ बिंद बासनी, देरी काल का दुख नासनी, दूब देई माँ बिंद बासनी, देरी काल का दुख नासनी, कूड़न ताल बजरंग की आसनी, चित्तकूट निज धाम, चित्तकूट निज धाम, बेरई धार हनुमान हरि पे, सो हनुमान धारा नाम काम रत जीवन में। चलो चले बुंदेलखंड की, करवे तीरथ धाम काम रत जीवन में। भीम कुंड धाम बांदकपुर, शारद मैया ब्राजी मैहर, सो भीम कुंड धाम बांदकपुर, शारद मैया ब्राजी मैहर, यादव रघुवी हाथ जोड़ कर करता है प्रणाम, करता है प्रणाम। जीवन जन्म सुपल कर बेखा, नहीं करो आराम काम रत जीवन में। चलो चले बुंदेलखंड की, करवे तीरथ धाम काम रत जीवन में।
1: तो पंचगजरों अब अपन सुन रहे थे जो काव्य पाठ रघुवीर यादव से, और अब आज की नसीहत को विषय है छाती फटना। भैया छाती फटवे को अर्थ है बहुत अधिक दुखी होना और गहरो सतम लगो, असहनीय वेदना हो। भैया ऐसा होता है कि जब हम जिन्हें अपनों मानते हैं और जब भी हमारे सामने विश्वास घरत करते हैं तो जो ही कहूँ कि भैया छाती फट गई। और देखो अब कार्यक्रम के आखिरी में सुनवा रहे हैं शकुंतला शुक्ला और सखियन की आवाज में जो पर्यावरण गीत, तो पंचों ने जो पर्यावरण लोकगीत।

देखो पंचभाई राव, अब सुन रहे थे जो पर्यावरण लोकगीत शकुंतला शुक्ला और सकीन की आवाज में, और अभूरी चलवी की बीरा पंचन का बता दे जाए कल के कार्यक्रम। कल पंचों ने रामलूला कार्यक्रम प्रस्तुति हुए रविंद्र कुमार प्रजापति जी की, और साथ में पंच भैया सुने आज की सीख में छाती में बार नहीं है, और हुई पंचन से बतकाओ तो अभूरी चलवी की बीरा पंचन से लाई जाए विदा, तो पंचो राम राम।

0: अभी ग्रामीण श्रोताओं के कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण हो रहा था। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। कार्यक्रम सुर्खियों में कुछ ही पलों में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से होगा।
1: नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं जया भारती। आज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर्नाटक और तेलंगाना दौरे तथा विभिन्न विकास परियोजनाओं पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने हैदराबाद, वारंगल, संगारेड्डी और बेंगलुरू में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी कई अहम परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया तथा बेंगलुरू में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ समारोह में भी हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे की शुरुआत कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरू में द आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होने के साथ की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने ध्यान, मानसिक स्वास्थ्य, प्रकृति संरक्षण और सामाजिक सेवा से जुड़े विभिन्न राष्ट्रीय अभियानों की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने संस्था के नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया, जिसे आंतरिक शांति और समग्र कल्याण के केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की कई उपलब्धियों के पीछे युवाओं की बड़ी भूमिका है। उन्होंने खुशी व्यक्त की कि आर्ट ऑफ लिविंग जैसी संस्थाएं युवाओं को आधुनिक दौर की चुनौतियों का सामना करने और उनके समाधान खोजने में मदद कर रही है।
2: साथियों, बहुत तेजी से बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। हर दिन नए नए इनोवेशन पूरे की पूरी इकोनॉमी को बदल रहे हैं। भारत इस बदलाव में केवल भागीदारी नहीं कर रहा, वो कई क्षेत्रों में नेतृत्व भी कर रहा है। भारत को डिजिटल पेमेंट में ग्लोबल लीडर बनाया है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभूतपूर्व गति

0: आगे बढ़ रहा है और फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। स्टार्टअप में भारत बहुत तेजी से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बना है। हमारी युवा आज स्पेस में अपनी सैटेलाइट भेज रहे हैं। देश की ऐसी सभी उपलब्धियों का सबसे बड़ा कारण है हमारे युवा है और आर्ट ऑफ लिविंग है।
1: द आर्ट ऑफ लिविंग के वर्षगांठ समारोह में भाग लेने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक अन्य कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया, जहां उन्होंने आज के दिन यानी 10 मई के ऐतिहासिक महत्व की चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसी दिन वर्ष 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी भड़की थी, जो आगे चलकर एक बड़े आंदोलन में बदल गई और गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया। प्रधानमंत्री ने साहस और वीरता की इसी विरासत को देश की सबसे बड़ी ताकत बताया।
0: 10 मई की ऐतिहासिक तारीख है। 1857 में आज के ही दिन स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी फूटी थी। समय के साथ ये चिंगारी एक बड़ी ज्वाला में बदल गई, जिसने गुलामी की बेड़ियों को जलाकर भस्म कर दिया। शौर्य और सामर्थ्य की विरासत ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। इसी प्रेरणा से हमने 3 दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मनाई है। 11 तारीख को मैं गुजरात के सोमनाथ में रहूंगा। वहां सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्षों का उत्सव मनाया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए ऐसे ऐतिहासिक अवसर हमें नई ऊर्जा से भरते हैं।
1: साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच देश के हितों की रक्षा के लिए संसाधनों का संरक्षण भी बेहद जरूरी है। उन्होंने इस संबंध में लोगों से विशेष अपील करते हुए जिम्मेदारी और जागरूकता के साथ संसाधनों के उपयोग पर जोर दिया।
0: देश का हित, देश के लोगों का हित, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। आप देख रहे हैं कि इस समय वैश्विक स्तर पर किस तरह की चुनौतियां हैं। वेस्ट एशिया में संकट की स्थितियां लगातार बनी हुई है। युद्ध के इस माहौल का बहुत नकारात्मक असर पूरे विश्व पर पड़ा है और भारत भी इससे प्रभावित हो रहा है। हमारे नार प्रभु केम्पेगौड़ा जी कर्तव्य पालन की मिसाल रहे हैं। उनकी धरती से मैं देश के लोगों से भी एक आग्रह करना चाहता हूं, देश के बढ़ते हुए सामर्थ्य में हमें अपना संयम भी बढ़ाना होगा। हमें मिलकर संसाधनों को बचाना होगा, देश के हितों की रक्षा करनी होगी। जिस तरह कोरोना काल में हमने संकटों का मिलकर सामना किया था, वैसे ही देशभक्ति की भावना से हमें फिर एक बार भारत को इन वैश्विक संकटों से निकालने के लिए एक साथ खड़ा होना ही होगा।
1: बंगलुरु के कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद पहुंचे, जहां उन्होंने लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे के अंतर्गत गुडबल्लूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 को 4 लेन करने की परियोजना की आधारशिला रखी। करीब 3,175 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से यात्रा समय में लगभग 1.5 घंटे की कमी आएगी, साथ ही ईंधन की बचत और लॉजिस्टिक्स दक्षता में भी सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र की नींव रखी। यह क्षेत्र हैदराबाद नागपुर औद्योगिक गलियारे के तहत विकसित किया जा रहा है। करीब 3,245 एकड़ में बनने वाली इस परियोजना पर 2,350 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 65 के पास स्थित यह औद्योगिक क्षेत्र सड़क, रेल और हवाई संपर्क से जुड़ा हुआ है। यहां ऑटोमोबाइल, फूड प्रोसेसिंग, मशीनरी और इलेक्ट्रिकल उपकरण जैसे उद्योग स्थापित किए जाने हैं। इस परियोजना से लगभग 10,000 करोड़ रुपए के निवेश और बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन किया। ये पार्क काकतीय

0: मेगा टेक्सटाइल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ये देश का पहला पूरी तरह से तैयार पीएम मित्र पार्क है, जो लगभग 1700 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है।
1: अतीत में जब भारत दुनिया की बहुत बड़ी इकोनॉमी था, तब हमारे वस्त्र उद्योग की बहुत बड़ी भूमिका थी। अब हम अपने उस विरासत को फिर से सशक्त कर रहे हैं। वारंगल का पीएम मित्र पार्क देश में टेक्सटाइल क्रांति को गति देगा। पीएम मित्र पार्क में लगने वाली यूनिट्स को केंद्र सरकार की योजनाओं का भी पूरा लाभ मिलेगा। उन्हें केंद्र सरकार की पीएलआई स्कीम से भी मदद मिलेगी, यानी इस टेक्सटाइल पार्क से बड़ी संख्या में रोजगार का निर्माण होगा। खासतौर पर जो हमारी बहनें बेटियां हैं, उनके लिए अनेक अवसर बनने वाले हैं।
0: ये पार्क किसानों से लेकर कपड़ा उद्योग और निर्यात तक पूरी प्रक्रिया को एक ही जगह जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पार्क में सड़क, बिजली और पानी जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष जल शोधन व्यवस्था भी तैयार की गई है। प्रधानमंत्री ने लगभग 1535 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित की। इसके तहत गाजीपेट विजयवाड़ा रेल लाइन के कई हिस्सों में नई लाइन और अतिरिक्त ट्रैक तैयार किए गए। इससे ट्रेनों की आवाजाही तेज होने, भीड़ कम होने और माल ढुलाई में सुविधा मिलने की उम्मीद है। हैदराबाद में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले अविभाजित आंध्र प्रदेश के लिए रेलवे बजट 1000 करोड़ रुपए से भी कम हुआ करता था, जबकि आज अकेले तेलंगाना के लिए रेलवे बजट करीब 5500 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। साथ ही राज्य में इस समय लगभग 50000 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
1: साथियों, साल 2014 से पहले अविभाजित आंध्र प्रदेश के लिए 1000 करोड़ रुपए से भी कम का रेलवे बजट होता था। रेवंता जी सुन रहे हैं ना, संयुक्त आंध्र के समय रेलवे का बजट 1000 करोड़ रुपए से भी कम था। आज सिर्फ संयुक्त आंध्र की बात नहीं कर रहा, आज सिर्फ तेलंगाना का रेलवे बजट ही लगभग 5500 करोड़ रुपए का है। वर्तमान में करीब 50000 करोड़ रुपए के रेल प्रोजेक्ट्स पर यहाँ काम चल रहा है।
0: इसके अलावा काजीपेट रेल अंडर रेल बाईपास का भी लोकार्पण हुआ। इससे रेलवे जंक्शन पर ट्रेनों की भीड़ कम होगी और ट्रेनों के संचालन में भी तेजी आएगी। प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में इंजन ऑयल के मलकापुर टर्मिनल का भी लोकार्पण किया। 600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार इस परियोजना को क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति मजबूत करने और बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण किया। ये अस्पताल कैंसर के इलाज के लिए बनाया गया एक बड़ा मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है। 18 मंजिला यह अस्पताल करीब 21 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है। अस्पताल में 1500 बिस्तरों की सुविधा है। यहाँ 150 से अधिक डॉक्टर परामर्श कक्ष और 29 आधुनिक ऑपरेशन थिएटर बनाए गए हैं। अस्पताल में कैंसर से जुड़ी कई तरह के इलाज की भी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इनमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, कैंसर सर्जरी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसी सेवाएं भी शामिल हैं। इसके साथ ही आधुनिक जांच लैब और ब्लड सेंटर की सुविधा भी दी गई है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में तेलंगाना की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि साइबराबाद आज देश और दुनिया में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है और ये तेलंगाना तथा देश के तेज विकास का बड़ा केंद्र बन रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को देश का प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के उद्देश्य से कई बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। उन्होंने इन विकास परियोजनाओं के लिए तेलंगाना के लोगों को भी बधाई दी।
1: साइबराबाद का सामर्थ्य नेशनल भी है और ग्लोबल भी है। ये तेलंगाना के और देश के तेज विकास का प्रमुख केंद्र है। इसलिए आज साइबराबाद से तेलंगाना को देश का एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाने के लिए अनेक बड़े प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं। आज जिन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, इससे यहां हजारों हजार नए रोजगार बनेंगे और

0: तेलंगाना की कनेक्टिविटी भी सशक्त होगी। मैं तेलंगाना की जनता को इन प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: आज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि तेलंगाना का युवा नए सपने देख रहा है, किसान नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और राज्य के उद्योग एमएसएमई तथा स्टार्टअप विकसित तेलंगाना के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि तेलंगाना का विकास विकसित भारत के लक्ष्य को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री ने ये आश्वासन भी दिया कि केंद्र सरकार राज्य के लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए तेज गति से काम करती रहेगी।
0: आज तेलंगाना का युवा नए सपने देख रहा है, यहाँ का किसान नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ना चाहता है, यहाँ के उद्योग, यहाँ के एमएसएमई, यहाँ के स्टार्टअप सब एक विकसित तेलंगाना के निर्माण में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं, क्योंकि तेलंगाना विकसित होगा तो भारत विकसित होगा। मैं तेलंगाना के हर परिवारजनों को भरोसा दिलाता हूँ कि आपके सपने पूरे करने के लिए केंद्र सरकार ही इससे भी और तेज गति से काम करती ही रहेगी।
1: कर्नाटक और तेलंगाना की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुनियादी ढांचे, उद्योग, स्वास्थ्य, ऊर्जा और सामाजिक विकास से जुड़ी अनेक परियोजनाओं की सौगात दी है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना, विकास को गति देना और देश में बेहतर संपर्क सुविधाओं का विस्तार करना है। ये सभी परियोजनाएं विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करती है। इन परियोजनाओं से न केवल दक्षिण भारत में संपर्क और निवेश को बढ़ावा मिलेगा बल्कि रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाओं और औद्योगिक विकास को भी नई दिशा मिलेगी। इसी के साथ आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही, जिसे लिखा है हमारे सहयोगी अनिकेत ने। इस कार्यक्रम को आप हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। नमस्कार।
2: सुर्खियों में
3: अभी आपने ये कार्यक्रम सुना। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। मुझे सुनिए कार्यक्रम डगर विकास की। विषय है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, योगदान हमारे छिंदवाड़ा केंद्र का।

स्वागत है आप सभी श्रोता मित्रों का कार्यक्रम डगर विकास की में। श्रोता दोस्तों, कोविड 19 के दुष्प्रभावों से हुई अपार जनधन की हानि से हम सभी भली भांति परिचित हैं। कोरोना महामारी के दौरान शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उसके दुष्प्रभावों से अछूता रहा हो। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम सभी किसी न किसी तरह से इस महामारी से प्रभावित हुए हैं। रोज कमाने खाने वाले व्यवसायियों और व्यापारियों पर कोविड काल में हुए लॉकडाउन का बहुत बुरा असर पड़ा था। एक तरह से उनके सामने रोजी रोटी का, जीविकोपार्जन का गंभीर संकट खड़ा हो गया था। इस संकट से उन्हें बचाने के लिए, उन्हें पुनः जीविकोपार्जन हेतु सक्षम बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा 1 जून सन 2020 को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को, या कहें कि सड़क पर रेहड़ी पटरी लगाकर छोटे व्यवसायों से जीवन यापन करने वाले लोगों को गारंटी मुक्त ऋण उपलब्ध करवाकर

एक निर्धारित राशि उन्हें उपलब्ध करवाकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करना है, जिससे इन पथ विक्रेताओं का व्यापार व्यवसाय बढ़े और वो आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें।

0: आशा भोसले और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में अभी आप सुन रहे थे जावेद अख्तर का लिखा गीत। संगीत दिया था आरडी बर्मन ने। फिल्म का नाम था गर्दिश।
1: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
2: ब्रो, ये फटा है। सुन, फटे फटे पुराने नोट को
1: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
2: वाओ, नया नोट मिलेगा?
3: हाँ,
2: जिससे तू हमें पैसा पार्टी देगा।
1: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
0: आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाज में समीर का लिखा गीत। संगीतबद्ध किया है दिलीप सेन समीर सेन ने। फिल्म का नाम है ये है दिल लगी।

फिल्म संगीत में आइए अब सुनते हैं कुमार सानू की आवाज में फिल्म जान तेरे नाम का एक गीत, संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। समाचार संध्या कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क को मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का नियमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
2: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने गुटेबेल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में सिंधु अस्पताल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया है कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है।
2: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है

0: उसका उत्साह यहाँ तेलंगाना में भी दिख रहा है। आज देश के कोने कोने में बीजेपी पर जनता का आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बंगलुरु में आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
0: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
1: गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। सोमनाथ मंदिर चिरस्थायी गौरव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रभास पाटन में कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर आज प्रभास पाटन में धर्म भक्ति देशभक्ति और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो रिहर्सल किया गया, जिसमें पायलटों ने अपने साहसिक कर्तव्यों से लोगों का दिल जीत लिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रिहर्सल भी विशेष बंगाली प्रस्तुति तथा गुजरात की लोक संस्कृति की झलक देखने को मिली। इसके अलावा मुख्य मार्ग पर स्थित हमीरजी गोहिल की प्रतिमा को भी विशेष पुष्प सज्जा से अलंकृत किया गया है। दूसरी ओर श्रद्धालु और पर्यटकों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश और सिक्किम में स्थित अधिक जोखिम वाली 30 झीलों के लिए विकसित की जाने वाली पूर्व चेतावनी प्रणाली में कम से कम 60 झीलों को शामिल किया जाना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि लू के कारण कृषि को होने वाले नुकसान को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के बदलते स्वरूप और उनसे उत्पन्न होने वाली आपदा संबंधी बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दे दिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में आज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और

0: को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य, अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, निल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्टइंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। डॉक्टर जयशंकर की कल कैरिबियाई देशों की 2 दिवसीय यात्रा संपन्न हुई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू हो गई। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर भी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में संविधान और न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री शाह ने आज शाम नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की 2 पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर कहा कि आम आदमी का विश्वास, समाज का संचालन और राष्ट्र का चरित्र एक मजबूत न्याय व्यवस्था में झलकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक समाज के रूप में अपनी संस्थाओं में जनता का विश्वास सफलतापूर्वक बनाए रखा है।
2: हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने निश्चित रूप से मजबूत किया है और 1947 से लेकर आज तक इस देश में पार्लियामेंट के माध्यम से और विधानसभाओं के माध्यम से जितने भी परिवर्तन हुए, खून का एक कतरा बहाए बगैर इसको स्वीकार कर लिया गया और बहुत अच्छे तरीके से हमने परिवर्तन किए हैं। यही बताता है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी गई और इसमें हमारे संविधान और हमारी न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज मातृ दिवस के अवसर पर मुंबई में मातृ पोषण किट वितरित किए। इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि विशेष रूप से तैयार किए गए ये किट गर्भावस्था के अंतिम चरण में महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतों और नवजात शिशुओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य राष्ट्र के भविष्य से सीधा जुड़ा है। श्री गोयल ने यह भी कहा कि इस पहल का विस्तार उत्तर मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के उर्विल पटेल ने 23 गेंद में 65 रन की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। कजाकिस्तान के अल्माटी में ISSF निशानेबाजी शॉटगन विश्व कप में नीरू ढांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में पहले 30 में से 24 निशाने लगाए। चीनी ताइपे पहले और इटली की

0: टीम दूसरे स्थान पर रही। वहीं शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षा कर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana, stresses on judicious use of imported petroleum products to reduce adverse impact of the West Asia conflict. Union Home Minister Amit Shah holds review meeting on country's preparedness to deal with possible floods and heatwave conditions. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath expands cabinet, inducts 2 cabinet ministers and 4 state ministers. India and Trinidad and Tobago sign 8 agreements, including in tourism, healthcare and Ayurveda sectors. In Pakistan, 15 security personnel killed in suicide attack in Khyber Pakhtunkhwa province. And in IPL cricket, Chennai Super Kings beat Lucknow Super Giants by 5 wickets. Another fixture between Royal Challengers Bengaluru and Mumbai Indians underway in Raipur. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid the foundation stone of multiple infrastructure and industrial projects worth around 9,400 crore rupees at Hyderabad in Telangana. These projects collectively aim to establish the state as a major manufacturing hub while also strengthening connectivity, generating employment, improving logistics efficiency, enhancing safety and providing a better travel experience for people. Addressing the gathering, Prime Minister Modi said India is effectively managing the energy crisis arising from the West Asia conflict due to the steps taken by the centre, adding that the restrained use of fuel is the need of the hour. He said imported petroleum products should be used judiciously in accordance with genuine necessity, which will help save foreign exchange and reduce the adverse impact of the ongoing conflict.
2: एनर्जी सिक्योरिटी का क्या महत्व है, ये आज दुनिया का हर व्यक्ति महसूस कर रहा है। इसलिए भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर हमारी केंद्र सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। मलकापुर में इंडियन ऑयल के नए टर्मिनल का उद्घाटन इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच गया है। सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है, पेट्रोल, डीजल, गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें।
1: Mr. Modi said today India is advancing on reforms express and also building modern infrastructure. Mr. Modi said he will like to assure every family in Telangana that centre will continue to work with greater speed to realise your dreams.
2: आज भारत रिफॉर्म्स एक्सप्रेस पर चल रहा है, साथ ही आज का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहा है। जहीराबाद इंडस्ट्रियल एरिया के निर्माण के पीछे

0: the collective effort seen during the COVID-19 pandemic. Furthermore, the Prime Minister also attended the 45th anniversary celebrations of The Art of Living at the organization's International Center on the outskirts of the city. The event brought together spiritual leaders, yoga practitioners, volunteers and visitors from different parts of India and abroad. During the program, the Prime Minister inaugurated the newly built Dhyan Mandir, a meditation and wellness complex designed to host yoga sessions, spiritual gatherings and community programs. Prime Minister Narendra Modi also emphasized that the core element connecting India's diverse traditions is the spirit of seva or service, and also highlighted that any mission succeeds when it gains the strength of the society. He commended the Art of Living for its grassroots efforts in tree plantation, rural development, women empowerment and mental health programs for inmates.
1: हमारे यहाँ कहा गया है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराः पुण्याय पापाय परपीडनम्, अर्थात दूसरों की सेवा करना पुण्य है और पीड़ा देना पाप है। सेवा परमो धर्म है, ये हमारे समाज का स्वाभाविक चरित्र है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये संस्कार सरिता हम सबको संस्कारित करती है, प्रेरित करती है, ऊर्जावान बनाती है।
0: The Prime Minister noted that India's growth, particularly in the fields of technology, innovation and startups, is driven by its youth. He stressed the importance of helping youth find mental peace, staying connected with to their roots and develop a sense of social responsibility.
1: आज की दुनिया में बहुत तेजी से बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। हर दिन साइंस नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है, नए नए इनोवेशन पूरे की पूरी इकोनॉमी को बदल रहे हैं। भारत इस बदलाव में केवल भागीदारी नहीं कर रहा, वो कई क्षेत्रों में नेतृत्व भी कर रहा है। हमारी डिजिटल क्रांति ने भारत को डिजिटल पेमेंट में ग्लोबल लीडर बनाया है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा है और फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। स्टार्टअप में भारत बहुत तेजी से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बना है। हमारी युवा आज स्पेस में अपनी सैटेलाइट भेज रहे हैं। देश की ऐसी सभी उपलब्धियों का सबसे बड़ा कारण है हमारे युवा है।
0: The Prime Minister also called for collective efforts in natural farming, water conservation and environmental stewardship. He linked these efforts to the government's broader Mission Life initiative, which promotes a lifestyle in balance with nature.
1: भारत के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए कई स्तरों पर सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। इनमें आर्ट ऑफ लिविंग जैसे संगठन महत्वपूर्ण भूमिका और ज्यादा शक्ति से इस परिवर्तन के प्रहरी बन सकते हैं। आप में से बहुत से लोग किसानों और ग्रामीण समुदायों के साथ जुड़कर काम करते हैं।
0: द प्राइम मिनिस्टर इन रिसेंट ईयर्स हैज रिपीटेडली लिंक्ड वेलनेस एंड प्रिवेंटेटिव हेल्थ केयर विद नेशनल प्रोडक्टिविटी, मेंटल हेल्थ एंड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। Officials say institutions promoting meditation, yoga and stress management are now being viewed as complementary to formal healthcare systems. Bengaluru itself has become an important center for this wellness ecosystem, blending technology, education and spiritual tourism. Over the past several years, India's healthcare strategy has increasingly focused on strengthening district hospitals, expanding medical education, and improving access to affordable treatment through schemes such as Ayushman Bharat. Telangana has emerged as one of India's healthcare and pharmaceutical hubs, attracting patients not only from neighboring states but also from abroad. The Prime Minister laid the foundation stone for the four-laning of National Highway 167 between Gudebellur and Mehboobnagar. The highway forms part of the larger Hyderabad-Panaji economic corridor and is expected to improve connectivity between Telangana, Karnataka and Goa. road infrastructure has been one of the central themes of India's development.

0: developmental push over the past decade. Under programs such as Bharatmala and PM Gati Shakti, the government has sought to integrate highways, ports, rail corridors, logistics parks and industrial clusters into a unified transport network. The Prime Minister noted that over the past 12 years, the government has invested nearly 1.75 lakh crores in national highways, doubling the network in Telangana. Let's listen to what he said.
1: बीते 12 वर्षों में भारत सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता आधुनिक कनेक्टिविटी भी रही है. रोड्स हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, कनेक्टिविटी के हर मोड़ पर अभूतपूर्व निवेश किया जा रहा है. करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ नेशनल हाईवे पर की गई है और इसका बहुत बड़ा लाभ तेलंगाना को भी हो रहा है.
0: The Prime Minister also highlighted the development of the Zahirabad Industrial Area as part of the national initiative to build industrial corridors, aiming to transform the region into a manufacturing powerhouse with world-class infrastructure and advanced ICT networks. Let's listen to what he said.
1: Zahirabad Industrial Corridor विकसित करने के भारत सरकार के राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है. यह एक प्रकार से इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है. यहाँ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बेहतरीन पावर सप्लाई होगी, एडवांस आईसीटी नेटवर्क होगा, यानी दुनिया भर के निवेशकों के लिए यहाँ हर वो सुविधा होगी जो इंडस्ट्री के लिए उन्हें जरूरी है.
0: Another major announcement during the Hyderabad program was the foundation stone for the Zahirabad Industrial Area in Sangareddy district. The Zahirabad Industrial Area will include plug and play facilities, logistics support and infrastructure for export-oriented industries. Telangana has steadily positioned itself as an investment destination in sectors such as electronics, pharmaceuticals, defense, manufacturing and data services. Industry representatives believe the corridor could further strengthen Hyderabad's role as a logistics and manufacturing hub in southern India. The Prime Minister also discussed the importance of energy for 21st century progress, mentioning the inauguration of the Indian Oil Terminal in Malkapur as a step to strengthen supply chains. He also advocated for the restrained and efficient use of energy resources such as petrol and gas to reduce reliance on imports. Let's listen to what he said.
1: हमारी केंद्र सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही. मलकापुर में इंडियन ऑयल के नए टर्मिनल का उद्घाटन इसी दिशा में एक बड़ा कदम है. यह टर्मिनल तेलंगाना की बढ़ती एनर्जी नीड्स को पूरा करेगा, सप्लाई चेन को मजबूत करेगा. साथियों, बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है. पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है. पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं. ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है. लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है कि पेट्रोल, डीजल, गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें.
0: The final major project of the day focused on one of India's oldest employment sectors, textiles. The Prime Minister also inaugurated the PM Mitra Textile Park in Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park. PM Mitra or the Pradhan Mantri Mega Integrated Textile Region and Apparel Scheme is part of government's effort to modernize India's textile sector and improve export competitiveness. Telangana has a long history of cotton cultivation, weaving traditions and textile activity. The Warangal project aims to connect this traditional strength with modern industrial infrastructure and global supply chains. Let's listen to what the Prime Minister said about this.
1: Warangal ka PM Mitra Park desh mein textile kranti ko gati dega. PM Mitra Park mein lagne wali units ko केंद्र सरकार की योजनाओं का भी पूरा लाभ मिलेगा, उन्हें केंद्र सरकार की पीएलआई स्कीम से भी मदद मिलेगी। यानी इस टैक्स

0: In the National Program of Features, you just heard a feature titled Of Memories and Milestones. Thank you for joining us on this journey through 90 years of sound, stories and milestones. Script, Bushida Banerjee. Narrator, Rini Khanna. Additional voicing, Manoj Mainkar. Produced by Nitish Arora for the Central English Features Unit. This broadcast came to you from Akashvani, Delhi.
1: भारतीय संगीत सभा के आज रात के प्रसारण में आपके लिए प्रस्तुत है विद्वान डी श्रीनिवास का वीणा वादन। आपके साथ मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पीहोली एवं घटम पर श्री एम चंद्रकांत संगत दे रहे हैं।
2: दिस इज आकाशवाणी इंटरनेट ब्रॉडकास्ट ऑफ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। वी ब्रिंग यू अ वीणा रिसाइटल बाय विद्वान डी श्रीनिवास। Accompanying him on Yudhangam is Shri Yashwant Hampiholi and on Ghatam Shri Yam Chandrakant.
1: Vidwan D. Srinivas Telangana ke ek agrini Karnatak sangeetkar hai. Ek sangeet parampara wale parivar mein janme, Srinivas ne 7 saal ki umr mein apni maa Srimati D.L. Tulsi ke margdarshan mein veena shiksha ka Shri Ganesh kiya. 9 saal ki umr tak ve ek baal pratibha ban chuke the. इसके बाद उन्होंने विद्वान श्री एन एस श्रीनिवासन के द्वारा उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त किया। 4 दशकों से अधिक समय से संगीत की सेवा के कारण वे अब एक टॉप ग्रेड वीणा कलाकार हैं और उन्हें उगादि विशिष्ट पुरस्कारों तथा डॉक्टर इमली शंकर शास्त्री पुरस्कार और वेणिका रत्न वेणिका चक्रवर्ती जैसे उपाधियों से भी सम्मानित किया गया था। एक वैश्विक कलाकार के रूप में श्रीनिवास ने संयुक्त राष्ट्र और लंदन की क्वीन एलिजाबेथ हॉल में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने गिटार शैली में वीणा बजाने जैसी नई तकनीकों का आविष्कार किया है जिससे वीणा संगीत की सीमाओं का विस्तार हुआ है। एक शिक्षक के तौर पर उन्होंने 350 से अधिक विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक सच्चे राजदूत के रूप में विद्वान डी श्रीनिवास आज भी आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित कर रहे हैं।
2: विद्वान डी श्रीनिवास ए ट्रायल ब्लेजिंग कर्नाटिक म्यूजिशियन फ्रॉम तेलंगाना वॉज बॉर्न इनटू अ म्यूजिकल लीनियज। ही बिगन द आर्ट ऑफ वीणा एट द एज ऑफ 7 अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज मदर श्रीमती डी एन तुलसी। बाय द एज ऑफ 9 ही वॉज अ चाइल्ड प्रोडिजी। The advanced training followed under Vidwan Sri N. S. Srinivasan. With over 4 decades of dedication, he is a top grade veena artist with Akashvani and recipient of awards like Ugadi Vishishta Puraskaram and Dr. E. Mani Shankar Shastri Award and the titles like Vainika Ratna and Vainika Chakravarti. A global performer, Srinivas has represented India at the United Nations and also performed at Queen Elizabeth Hall in London. His innovative techniques like guitar style plucking pushed the boundaries of veena music. As an educator, he has trained more than 350 students. A true ambassador of Indian classical music, Vidwan D. Srinivas continues to inspire generations.
1: Aaj raat ke prasaran mein विद्वान डी श्रीनिवास के साथ मृदंगम पर संगत कर रहे हैं श्री यशवंत हम्पीहोली और घटम पर श्री यम चंद्रकांत।
2: इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट विद्वान डी श्रीनिवास इज अकंपनीड इन मृदंगम बाय श्री यशवंत हम्पीहोली एंड ऑन घटम बाय श्री यम चंद्रकांत।
1: विद्वान डी श्रीनिवास ने अपने वीणा वादन की शुरुआत राग गोला में मैसूर वासुदेवाचार की एक रचना से कर रहे हैं

0: आदि काल में निबद्ध है।
1: विद्वान डी श्रीनिवास बिगिंस हिज वीणा रिसाइटल विद अ कंपोजिशन ऑफ मैसूर वासुदेवाचार इन द राग गौला सेट टू आनताल।

0: अब आप राम स्वामी शिवम की एक रचना सुनेंगे जो राग सरसांगी तथा खंड चापू ताल में निबद्ध है।
1: Now you will listen to a composition of Ramaswamy Sivam in the rag Sarasangi set to Khanda Chapu Tal.

0: रचना वीणा वादन जारी रखते हुए विद्वान डी श्रीनिवास अब त्यागराज की एक रचना प्रस्तुत करेंगे जो राग नासिका भूषणी तथा आदि ताल त्रिस्र गति में निबद्ध है।
1: कंटिन्यूइंग हिज वीणा रिसाइटल विद्वान डी श्रीनिवास विल नाउ प्रेजेंट अ कंपोजिशन ऑफ त्यागराज इन द राग नासिका भूषणी सेट टू आदि ताल त्रिस्र गति।

0: ये था कन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर श्री यशवंत हंपीहोली और घटम पर श्री यम चंद्रकांत ने प्रस्तुत किया।
1: That was कन्यावर्तनम played on मृदंगम by श्री यशवंत हंपीहोली and on घटम by श्री यम चंद्रकांत।
0: विद्वान डी श्रीनिवास अपने वीणा वादन का समापन सदाशिव ब्रह्मेन्द्र की एक रचना से कर रहे हैं, जो राग अहिर भैरवी तथा आदि काल में निबद्ध है।
1: विद्वान डी श्रीनिवास कंक्लूड्स हिज वीणा रिसाइटल विद द कंपोजिशन ऑफ

0: श्री एम चंद्रकांत।
1: विद्वान डी श्रीनिवास अपने वीणा वादन का समापन सदाशिव ब्रह्मेन्द्र की एक रचना से कर रहे हैं जो राग अहिर भैरवी तथा आदि काल में निबद्ध है।
0: विद्वान डी श्रीनिवास कंक्लूड्स हिज वीणा रिसाइटल विद अ कंपोजिशन ऑफ सदाशिव ब्रह्मेन्द्र इन द राग आहिर भैरवी सेट टू आदिताल।

0: your Ravi Vasariya Akhila Bharatiya Sangeeta Sabha. I was brought to you from the Delhi station of Akashvani.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंटरप्रेस चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर. अब से कुछ ही क्षण बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार. कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए.
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है. प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है. उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है.
3: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें. इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा.
2: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है.
3: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है. पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है. पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं. ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है.
2: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं. उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है. प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है. इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे. गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है. गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की. नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की. इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी. उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एम के स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की. भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं. विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए. पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए. पुलिस के अनुसार ये हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी. इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की सब खबर है. आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 167 रन का लक्ष्य दिया है. ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16वें ओवर

0: इसके साथ ही आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में विद्वान डी श्रीनिवास का वीणा वादन अब संपन्न होता है। आपके साथ संगत कर रहे थे मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पीहोली और घटम पर श्री यम चंद्रकांत। ये संगीत कार्यक्रम रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियोज में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हुआ।
1: With that, we conclude the Veena recital by Vidwan D. Srinivas in the broadcast of Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeet Sabha. He was accompanied on mridangam by Sri Yashwant Hampiholi and on ghatam by Sri M. Chandrakant. This concert was recorded at the studios of Akashwani.